मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम

0: बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए समूह स्वर में मातृ वंदना।

वंदना में आप लीजिए सुनिए नरेंद्र चंचल के स्वर में ये भजन।

0: अभी आपने नरेंद्र चंचल के स्वर में ये भजन सुना, अब लीजिए सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।
1: भक्त बंधुओ, रसिक बंधुओ, आप सबके हृदय में भव भक्ति जागे, नव शक्ति जागे। आपको भगवान कृष्ण और भगवान राम का आशीष मिले। आज के इस युग में भक्ति मार्ग ही एक ऐसा दिव्य पथ है जो हमें न केवल आध्यात्मिक बल देता है बल्कि हमारे जीवन को पुण्यता और पावनता भी प्रदान करता है। हम अपने आत्मिक स्तर को दिव्यता तक ला पाए। सहज, सरल, उद्देश्यपूर्ण, रसमय और सत्चित आनंद की प्राप्ति हमें हो, इस प्रयास में हमने ये प्रयत्न किया है। ये अनुष्ठान है एक नई भजन संध्या। 25 वर्षों के उपरांत पहली बार वृंदावन में ये सजीव भक्तिमय उत्सव आयोजित है।

गंगा जी की आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी। 6:40 पर होगा श्री रामचरित मानस गान। 6:50 पर आप सुनेंगे आज का चिंतन। 7:20 पर होगा हिंदी महक। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे विक्रम नामदेव से काव्य पाठ। 7:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 8:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम बच्चों में सामान्य बीमारियां और बचाव विषय पर डॉक्टर हृदेश खरे से बातचीत। 9:00 लोकरंग में सुनिए मुस्कान प्रजापति से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर होगा फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम। 10:05 पर सुनिए गांधी चर्चा। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। 10:20 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी भजन। 10:30 पर होगा श्रोताओं के सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30

0: 20 मिनट पर संग्रहालय से ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे। 1 बजे महिलाओं के कार्यक्रम महिला सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे सौम्या श्रीवास्तव से काव्य पाठ। 1:30 पर आकाशवाणी छतरपुर प्रस्तुत करेंगे लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 2 बजे फिल्म संगीत। 2:30 पर आपकी फरमाइश हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। हमारी सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे युववाणी कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे अदिति शुक्ला से वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा। 5:30 पर होगा फिल्म संगीत। 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6:30 पर लोकधारा में आप सुनिए शकुंतला शुक्ला से बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर हम प्रसारित करेंगे ग्राम सभा। इसमें सुनिएगा देवनाथ पाठक से मानस प्रवचन। प्रसंग होगा मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा। पंकज सिंह पटेल से वार्ता फसल विविधीकरण, टिकाऊ खेती और समृद्ध किसान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इसके अलावा आज की सीख का विषय होगा जितने के भगत नहीं उतने का मंजीरा फूटे। 8 बजे रसावतर में सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं शिवा सक्सेना, रूपनारायण पाठक, रविशंकर बिलगैया, राम बिहारी सक्सेना और संजू सूर्यम ठाकुर। 9:15 पर स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 9:30 पर एक बार फिर रसावतरण में सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं उपेंद्र सोनी, दीपक पटेल, रामबाई अहिरवार और डॉ सुधा गगन कनौजे। 10 बजे सुनिएगा बुंदेली नाटक तुम्हारी ज्ञानवती। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे पंडित निखिल बनर्जी से सितार पर बजाया राग हेम बिहाग। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती किसानी।
1: हाँ भैया, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं कि ग्रह वाटिका लगा के सोई अपन फल और सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। अकेले भैया जब भी अपन ग्रह वाटिका लगाए तो उसमें थोड़ा सा अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोई अपनाने पर है। इसे भैया कहा हुआ कि अपने जो परिणाम है वे भी अच्छे लगे और अपनी जो ग्रह वाटिका है वह अपन का देखने में सोई अच्छी लगे और उत्पादन सोई भी अपन का अच्छा मिले। अब जो ग्रह वाटिका अपन लगा रहे हैं उके लाने अपन देखने हैं कि अपने मकान के आसपास की अपनी जो जांगा है वो जांगा खा अपन पहला तो चारों प्रकार से ऐसा देखें कि सुरक्षित हो गए, जिसे कि कोनो भी जानवर या कोनो भी प्रकार से अपनी लगी हुई फसल का नुकसान ना हो गए। अब उकी जो रूपरेखा है वह पहला अपन का अपने कागज में अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। उके लाने अपन देखने कि कौन सी क्यारी कौन सी फसल के लाने उपयोग करी जाए। तो जोन फसल अपन उमें लगाओ चाहू थे, जैसे मान लो सब्जी लगा रहे तो जोन सी सब्जी अपन लगाने हैं उके लाने उ प्रकार से क्यारी की जो माटी है उकी तैयारी करने उमें वही प्रकार के खाद उ प्रकार से। अगर जैसे अपन पौधा लगा रहे पपीता है केला है तो ऊखा जो है उकी मेड़ पे जहां के उकी छाया और अपनी सब्जियन वाली क्यारियन पे ना पहुंचे ई को भी ध्यान अपन का देने हैं। तो ऐसी जो छोटी मोटी बातें हैं उनको ध्यान भी अपन का रखने। एक बात और अपन देखने हैं कि जो अपनी ग्रह वाटिका है उते अपन पानी कैसे ले जाओ उके लाने पर्याप्त नाली जल निकास की सुविधा और जहां फल वाले पौधा है उते उनको स्थान अपन का निश्चित कर लेने हैं। वही में भैया हरियाली सोई अपन का रखने, उतनी अपन का गमला सोई रखने। तो ऐसी सब चीजन को ध्यान, जो अपन खाद बना रहे हैं

0: तो कंपोस्ट खाद को जो गड्ढा है और उके अगल बगल किनारे पे अपन बढ़िया फूल वाली क्यारी, जिसे कि अपनी प्रत्येक क्यारी अच्छी सुंदर भी लगे, जो सोई देखने हैं। तो इन सब बातन को अपन का ध्यान एक संग रखने जब अपन अपनी ग्रह वाटिका की लाने तैयारी करें और उमे तमाम प्रकार की जो हरी सब्जियां हैं या फल हैं उनका निश्चित स्थान पर रोपित करें, जिसे कि अपनी वाटिका जो है वह ऊट पटांग न लगे, यानी देखने में भी सुंदर लगे, फल फूल भी हो, पौधा भी हो, उनकी अपन जो बाड़ी टाइप की लगा रहे हैं वह भी अच्छी सुंदर पत्ती इनकी हो, जिसे कब अपन खा अच्छी दिखे। अभी मैं पुनः प्राथमिकता देने अपने फलन के लाने, जैसे पपीता है, केला है, ई के लाने भैया संतरा है, अनार है, सीताफल है, कछु आम भी, आम्रपाली वगैरह अच्छी किस्म के आउत हैं जिनको विकास ज्यादा नहीं हो तो और फल देन लगत हैं, तो इनका अपन उन्हें लगा सकते हैं। ई के अलावा गृह वाटिका में भैया साल भर जो सब्जी लगाई जाती है उनको भी अपन का निर्धारण कर लेने हैं कि कौन महीना में कौन सी सब्जी अपन लगाएं जो उनके बाजार में अपन खा महंगी लगे और अपन अपनी गृह वाटिका में अच्छी तरह से उनकी पैदावार ले सकें। तो गृह वाटिका में जो सब्जी लगाई जा सकती हैं, जैसे भैया कद्दू वर्ग की सब्जी है, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, मूली है कि नहीं, तो इन सब चीजों से भैया का हुए कि अपन खा समय समय पर मौसमी जो सब्जियां हैं वे भी प्राप्त हो जाए और अपनो जो बजट है घर को वो भी संतुलित रहे, के दुकाए आर्थिक रूप से बाजार में जो ऐसी सब्जी हैं जो उनके बहुत महंगी उस समय पे मिल रही हैं वे अपन अपने गृह वाटिका में पैदा करके अपने घर को आर्थिक बजट भी संभाल सकते हैं। तो अपनी जो माताएं बहने हैं वे ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कैसे कि घर को जो बजट है, घरेलू जो खर्चा है उनमें कटौती करके और अपन जो है अच्छी फसल बीज खाद को ध्यान देखें, अच्छी गृह वाटिका लगा सकते हैं जो उनके देखने में अच्छी सुंदर लगे, आकर्षक लगे और लोग बाग जब होते घूमे जाएं, देखे जाएं, तो उनको हम भी आपकी गृह वाटिका से सीख लेके अपने घर जाके दूसरी गृह वाटिका जरूर लगाएं।
1: अभी खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव पर, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया।

0: अभी श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। स्वर अनुराधा पौडवाल का था और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: ये एक जटिल प्रश्न है कि आखिर पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति है क्या, और इसका उत्तर आज तक नहीं मिल पाया। ईश्वर ने मां बनने का गौरव ये कहें कि जीवन उत्पन्न करने का सम्मान तो स्त्री को दिया है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, लेकिन इतने बड़े सम्मान के बाद भी वही स्त्री आज उपेक्षित क्यों है? एक स्त्री ही वंश को बढ़ाती है। जीवोत्पत्ति के लिए पुरुष और स्त्री दोनों ही आवश्यक हैं। फिर स्त्री इतनी उपेक्षित क्यों है? इन सब बातों से भी अधिक दुखदायक बात तो ये है, जो माँ बाप बच्ची को जन्म देते हैं वो कहते हैं कि ये पराई अमानत है, पराया धन है, पराए घर जाना है। विवाह के पश्चात बेटी अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, ये उपदेश देते हैं। ससुराल में ससुराली जन कहते हैं कि पराई लड़की है। फिर इस परिस्थिति में ये समझ में नहीं आता कि जब माँ बाप के लिए लड़की पराया धन है, ससुराली जनों के लिए पराई लड़की है, तो फिर लड़की किसकी अपनी है एवं लड़की का अपना कौन है? यहां तक कि विवाह में भी सामाजिक ढांचा देखिए कि कन्या पक्ष के लिए दबते रिश्तेदार एवं वर पक्ष के लिए चढ़ते रिश्तेदार जैसे संबोधन भी समाज में स्त्रियों की दशा का बोध कराते हैं। हम कितना भी कहें कि हम स्त्री को देवी मानते हैं, लेकिन खुद से पूछें कि अगर ऐसा होता तो स्त्री के साथ अन्याय नहीं होता? वर्तमान परिवेश में तो स्त्रियों के साथ बलात्कार की नित्य बढ़ती घटनाएं हमारे स्त्रियों के प्रति झूठे सम्मान के दिखावे की कलई खोल रही हैं। सारे नियम, सारी मर्यादाएं इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को दबाने के लिए बनाए गए हैं। जो मर्यादाएं स्त्री के लिए हैं वो पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? विडंबना यह है कि हम स्त्री सम्मान के जुमले तो बहुत बोल पढ़ एवं लिख लेते हैं, लेकिन क्या नारी को वास्तव में वो सम्मान मिला है जिसकी वो हकदार है? कई तथ्य हैं जो समाज की सोच को दर्शाते हैं, जैसे कि वंश बढ़ाने के लिए बहू तो चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। जब बेटी न होगी तो बहू किधर से लाओगी? भ्रूण हत्या केवल स्त्री भ्रूण की होती है, पुरुष भ्रूण की नहीं, केवल वंश के नाम पर ऐसा होता है। जबकि स्वयं को 3 या 4 पीढ़ियों से ज्यादा की जानकारी नहीं होती कि किसका वंश चला रहे हैं, फिर भी वंश चलाने के नाम पर कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध भी हंसते हंसते

0: बिना किसी गिलानी के लोग करते हैं। करते रहे गुनाह हम बेटों के शौक में, कितने मोती मार दिए भीतर ही कोख में। समाज की एक कैसी रीति है, समय की कैसी विडंबना है कि जीवन को अस्तित्व प्रदान करने वाली नारी जाति को खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी लिखी गई लेकिन सही अर्थों में उन बातों का ही अर्थ नहीं समझा गया, क्योंकि यदि समझा गया होता तो सामाजिक परिवेश में दिखाई भी देता। कहा गया है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन इसको समाज मानता कहाँ है, और अगर मानता है तो ये व्यवहारिकता में दिखाई क्यों नहीं देता। इस पुरुष प्रधान समाज में हमेशा स्त्री के प्रति गलत मानसिकता ही प्रदर्शित होती रही है। जहां एक ओर स्त्री की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, स्त्री देवी है जैसी बातें कही गई हैं। तो इन बातों को सार्थक भी बनाना चाहिए और स्त्री को पूर्ण सम्मान प्रदान करते हुए उसे उसका स्थान उसका हक दिलाना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ. भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वालोचितवन्तौ. उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ.
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं. एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है. क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है. इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ. आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानां च आधारेण वर्तते. उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति. अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इण्डो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति. लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति. अस्य कार्यक्रमस्य

0: उद्देश्यम् नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणम् संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनाम् संसदीय विधायी कार्याणाम् विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानम् वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.8 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें

0: वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामने के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said, "The economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined." It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar initiative provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Both sides will strengthen bilateral cooperation in 5 key sectors: semiconductor, critical minerals, information and communication technology, clean energy and pharmaceuticals. Election Commission of India ECI has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress AITC regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. In a statement, the commission said it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritubrata Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The commission said both sides have been directed to submit the responses by 5:30 p.m. on Monday. Ministry of Panchayati Raj will organize a national workshop of state Panchayati Raj ministers in New Delhi today to deliberate on the recommendations of the 16th Finance Commission. The workshop will be chaired by Union Minister of Panchayati Raj Rajiv Ranjan Singh Lallan Singh in the presence of Union Minister of State Professor S.P. Singh Baghel. During the workshop, the discussions will focus on the operational guidelines for implementation of the 16th Finance Commission Rural Local Body Grants issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. The annual Sri Amarnath Yatra began this morning from both the Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. Pilgrims travel to the holy Amarnath Cave, located at an altitude of nearly 3,888 meters, to seek the blessings of Lord Shiva and witness the naturally forced ice shivling. The yatra will culminate on August 28th, coinciding with the festival.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक सपनों को, दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में कहा, भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। स्कूल चले अभियान के दौरान ही संदीप ने विद्यालय भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होगा। श्री अमरनाथ यात्रा आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटन मार्गों से शुरू। और प्रदेश में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, आज हरदा नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आज साझेदारी को और भी गतिशील तथा प्रगाढ़ बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस

0: इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: वहीं जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से हरियाणा के खरखोदे में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश में इन दिनों स्कूल चले अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल अलग अलग विभागों की हुई समीक्षा बैठक में इस पर जोर दिया। डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनी विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है। स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों में धर्मशाला, सराय, अन्य क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। यह प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विभागों की प्रगति और आगामी कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को शासन द्वारा दी गई जमीन की भेल के लिए वर्तमान में अनुपयोगी भूमि उनसे वापस लेने के प्रयास किए जाएं। प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नर्मदा समग्र की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मां नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। मुख्यमंत्री ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन संस्थान और नर्मदा कोष पोर्टल भी बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देश पर चर्चा होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो चुकी है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन होकर नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई होगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की छटनी और 16 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल समेत 11 जिलों में कल से रुक रुक कर तेज बारिश हुई। सतना और झाबुआ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सतना में बालिका स्कूल परिसर में पेड़ गिरने से 2 युवतियां घायल हो गई हैं। दमोह में लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इंदौर में भी रात से कई क्षेत्रों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना, बालाघाट समेत 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका है। इंग्लैंड आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के केनिंगटन ओवल में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए।

बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सका। रविवार को लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के बमन गांव आखई में कल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। आगर मालवा जिला पुलिस को ई विवेचना प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के सभी थाना क्षेत्रों के 153 विवेचकों को टैबलेट दिए गए। अशोकनगर जिले में सभी शासकीय विभाग और संस्थाएं अपने अपने स्तर पर नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता अभियान और गतिविधियां संचालित करेंगी। ये निर्देश कल कलेक्टर ने एक बैठक में दिए। भोपाल ने नगर निगम और फायर विभाग ने कल एमपी नगर स्थित 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की। धार जिले में तेजी से विकसित हो रहे देश के महत्वाकांक्षी पीएम मित्रा पार्क का इंदौर संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल दौरा किया। इंदौर संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल झाबुआ के विभिन्न गांवों का सघन भ्रमण कर कृषि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदी महक, इसमें सुनिए विक्रम नामदेव से काव्य पाठ।
2: कुछ गजलें पेश कर रहा हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तुक

0: जाने कहां कहां हूं मैं, हर शख्स कह रहा यही, टूटा हुआ मकान हूं मैं।
1: एक और गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं जो वक्त के बारे में है। वक्त

अभी आपने हिंदी महक में विक्रम नामदेव से काव्य पाठ सुना। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत है फिल्म दोस्त से। आवाज अमित कुमार, आशा भोसले और साथी की है। गीत इंदिवर का, संगीत आरडी वर्मन का है।

अभी आपने दोस्त फिल्म का ये गीत सुना, अब लीजिए सुनिए अगला गीत है अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म घर संसार का ये गीत। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
4: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
3: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
4: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
5: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और साथी की आवाज में फिल्म अपने बेगाने का ये गीत। गीत राजेश जौहरी का है और संगीत प्रेम गुप्ता का।

अभी आपने फिल्म अपने बेगाने से ये गीत सुना। अब लीजिए सुनिए अगला गीत है फिल्म 20 साल बाद से। आवाज़ मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आपने मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म 20 साल बाद का ये गीत सुना। अब लीजिए सुनिए अगला गीत है अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म प्यासी ममता का ये गीत। गीत वली फिरोजावादी का है, संगीत सुरेंद्र कोहली का।

0: फिल्म प्यासी ममता के गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है।

इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार वर्ष से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए

0: इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बच्चों में सामान्य बीमारियां और बचाव विषय पर डॉक्टर हृदयेश खरे से बातचीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिशु रोग विशेषज्ञ कैप्टन डॉक्टर हृदयेश खरे। बच्चों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के परामर्श एवं इलाज हेतु संपर्क करें
2: कैप्टन डॉक्टर हृदयेश खरे, बसारी दरवाजा, संकट मोचन के पास, डॉक्टर हृदयेश खरे क्लिनिक, छतरपुर, मध्य प्रदेश।
1: मोबाइल नंबर है 9425363807।
2: 9425-36-38-07।
3: हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, समय समय पर हमारे बीच होते हैं विषय विशेषज्ञ और इनसे हम महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही साथ आप जागरूक रहें और स्वस्थ रहें और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। और आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारियों पर, साथ ही साथ ये जो मौसमी बीमारियां हैं अभी वर्तमान में, ये जो मौसम बदल रहा है, कैसे बच्चों में और आम नागरिक में जो बीमारियां हो सकती हैं उनके बचाव के संबंध में विभिन्न बीमारियों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच हैं जाने माने पूर्व शिशु रोग विशेषज्ञ, पूर्व सिविल सर्जन, साथ ही हमारे जिले के पूर्व CMHO छतरपुर कैप्टन डॉक्टर हृदयेश खरे। आप सभी जानते हैं बसारी दरवाजा पर इनकी क्लिनिक है, बहुत पुरानी क्लिनिक है, डॉक्टर हृदयेश खरे क्लिनिक। तो आज डॉक्टर साहब से आप रूबरू होंगे, पहले भी आकाशवाणी के स्टूडियो में हम आपको बुला चुके हैं, बहुत पहले आए थे और आप रूबरू होंगे उनसे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार राजेंद्र भाई, बहुत हमको प्रसन्नता हुई कि आज आपने हमें दर्शकों के को सामान्य ज्ञान देने के लिए आमंत्रित किया।
3: बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपके बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे। आपने जो 5 वर्ष तक सन 71 की लड़ाई में सेवा की है, आप सेना में डॉक्टर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, ताकि वो भी जान पाएं कि ऐसे हम महान हस्ती से मिल रहे हैं जो हमें आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहे हैं।
4: देखिए राजेंद्र जी, मैं छतरीपुर का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा छतरपुर में हुई, मेडिकल कॉलेज की शिक्षा मेरी मेडिकल कॉलेज रीवा में हुई। शिक्षा के दौरान ही मेरा NCC से बहुत ज्यादा लगाव था
3: जी।
4: और बचपन से मेरा एक शौक था या एक मेरी इच्छा थी कि मैं भारतीय फौज में अपनी सेवाएं दूं। उसी के नाते मैंने NCC में भाग लिया। मैंने B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट उस जमाने जी में पास किए। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मेरा सिलेक्शन आर्मी के लिए हो गया। सन 70 में जैसे ही मैंने MBBS पास किया
3: जी,
4: मैं आर्मी ज्वाइन करने पहुंच गया। और मेरी किस्मत कहिए या मेरी इच्छा कहिए कि ज्वाइन करने के एक साल के ही अंदर भारत पाक युद्ध भी हो गया। भारत पाक युद्ध के दौरान मैं पश्चिमी सीमा पर एक यूनिट है 6 कुमाऊं।

0: जी
1: जो जंगी सिक्स के नाम से जानी जाती है, उसके आरएमओ के तौर पर मैंने अपनी सेवाएं दी। 17 दिसंबर तक मैंने लड़ाई में काफी भाग लिया, मेरे को भी छोटी मोटी चोटें लगी और मैंने देखा कि आज आधुनिक लड़ाई कैसी होती है। अब तो खैर लड़ाई के स्वरूप बदल गए।
0: जी जी।
1: उसके बाद मैं आर्मी से 75 में मैं सिविल सेवा में मध्य प्रदेश सरकार की में आ गया और मैंने अपनी शुरुआती पोस्टिंग बैड़न में की, फिर रीवा में की, फिर सतना में की और उसके बाद मैं छतरपुर में सन 85 से कार्यरत हूँ। छतरपुर में विभिन्न पदों पर रहा
0: जी
1: और 2010 में मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ।
0: अब डॉक्टर साहब, आपके जो लंबे अनुभव रहे, आपने कई पदों पर काम किया, आप सिविल सर्जन रहे, सीएमएचओ रहे, तो क्या चुनौतियां उस समय रही हैं?
1: राजेंद्र जी, देखिए, भारतीय फौज से लौटने के बाद मैं ऐसा कहूं कि मैंने अपना अधिकांश जीवन बीमारियों के उन्मूलन में ही खर्च किया। जैसे जब मैं सन 75 में फौज से लौट के आया और बैड़न मेरी पहली पोस्टिंग हुई, ये बहुत इंटीरियर पीएससी मानी जाती थी, अब तो जिला भी हो गया है।
0: ये सिंगरौली में है?
1: जी हाँ, सिंगरौली जो कहलाता है।
0: जी जी।
1: सिंगरौली नाम की कोई जगह नहीं है, सिंगरौली जैसा अपना बुंदेलखंड कहलाता है वैसे ही सिंगरौली है। सिंगरौली का हेडक्वार्टर बैड़न है।
0: जी जी।
1: उस समय स्मॉल पॉक्स जिसको बड़ी माता कहते हैं वो बहुतायत से अपने देश में दुनिया में होती थी और उस समय इसके उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा
0: जी,
1: था।
0: जी।
1: मैंने बड़ी माता के उन्मूलन में भी बहुत हिस्सा लिया, जगह जगह अपनी पीएससी में टूर किए और बहुत अच्छी बात ये हुई कि ये बीमारी टीकाकरण के द्वारा ही 100% भारतवर्ष से और दुनिया से अलविदा हो गई। उसके बाद जैसे आपने पोलियो की चर्चा की,
0: जी, जी।
1: एक ये बहुत खतरनाक बीमारी थी और इसमें क्या होता था कि एक पट्टी शरीर के किसी हिस्से में लकवा बच्चों को लग जाता था।
0: जी,
1: बच्चों में होने वाली बीमारी है। ज्यादातर जितने भी विकलांगता आपने बच्चों में, पुराने बच्चों में देखी हो, वो पोलियो की वजह से ही होती थी। इस बीमारी की खराबी ये थी कि अगर एक बार आप किसी भी बच्चे को पोलियो हो गया तो वो 100% क्योर नहीं हो सकता। इसमें यूनिसेफ ने, भारत सरकार ने इसके उन्मूलन का बीड़ा उठाया और पल्स पोलियो कार्यक्रम अपने भारतवर्ष में शुरू किया गया। अपने मध्य प्रदेश में और संपूर्ण भारत में सन 95 में पल्स उन्मूलन का कार्यक्रम चालू हुआ, जो अपन नारा देते हैं एक बूंद जिंदगी की।
0: जी जी।
1: अभी भी आपने देखा होगा कि बीते इतवार को पल्स पोलियो के अंतर्गत बच्चों को
0: जी
1: दो बूंद दवाई पिलाई गई है।
0: जी, अभी भी ये सप्ताह चल रहा है।
1: जी हाँ, अभी भी 3 दिन ये हफ्ते में चलता है। पहले दिन बूथ पे जाके दवाई पीना पड़ती है और फिर अगले 2 दिन घर घर जाके स्वास्थ्य कार्यकर्ता दवाई पिलाता है और उसी का नतीजा है कि अपने भारतवर्ष में सन 2011 में पोलियो नाम की बीमारी का खात्मा हो गया। आखिरी केस अपना बंगाल में हुआ था 2011 में। और इस सब को देखते हुए यूनिसेफ ने सन 2014 में
0: जी
1: भारतवर्ष को पल्स पोलियो से उन्मूलित देश डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान व अफगानिस्तान में कुछ केस बीच बीच में होते रहते हैं। क्योंकि ये दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इससे खतरा बराबर बना हुआ
0: जी जी।
1: है, इसलिए अपने देश में ना हो जाए इसीलिए ये पल्स पोलियो का कार्यक्रम लगातार चल रहा।
2: बच्चों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के परामर्श एवं इलाज हेतु संपर्क करें
3: कैप्टन डॉक्टर हृदेश खरे, मसारी दरवाजा, संकट मोचन के पास, डॉक्टर हृदेश खरे क्लिनिक, छतरपुर मध्य प्रदेश।
2: मोबाइल नंबर है 9425363807।
3: 9425 36 38 07।
0: डॉक्टर साहब, इसमें हम बीच में आपसे पूछना चाहेंगे, आम आदमी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे सरकार द्वारा अभियान में हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, हमारे एनएसएस के कुछ कार्यकर्ता एनसीसी के भी लगे रहते हैं और हमारी नर्सेज हैं और पीएससी जो सेंटर्स हैं वहां से भी डॉक्टर्स लगे रहते हैं, टीम लगी रहती है, नर्सेज हैं या आशा कार्यकर्ती लगी हैं, तो आम आदमी कैसे अपनी भूमिका निभाए जो

0: शून्य से लेके माने जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है, वो स्वयं आगे आए, बूथ पर ले जाए, कोई भी बच्चा अभी भी ना छूट जाए, ताकि ये जो उन्मूलन का कार्यक्रम है सफल हो और हम अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा पाए। तो इस संदर्भ में आपके हम कुछ विचार जानेंगे और लोगों तक जो मैसेज आपके हैं क्या कुछ कहेंगे आप?
1: देखिए, ये बीमारी जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर विकलांगता हो गई तो वो ठीक नहीं होना, इसलिए इसमें जागरूकता लाना ही परम उद्देश्य है। आपने जगह जगह पोस्टर देखे होंगे, दीवालों पे लेखन देखा होगा, रेडियो में आपने इसके बारे में सुना होगा, मैगजीन्स में भी इसके बारे में निकलता है। कोई भी बीमारी का उन्मूलन, चाहे ये पोलियो हो या पिछले अनुभव से बड़ी माता स्मॉल पॉक्स रही हो, बिना पब्लिक की भागीदारी के कोई भी बीमारी दूर नहीं हो सकती। जब तक सब लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक ये बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। इसी तरह पोलियो में भी जो उन्मूलन चल रहा है, उन्मूलित तो है
0: जी जी,
1: लेकिन भविष्य में को देखते हुए जो दवाइयां पिलाई जा रही हैं, हमको प्रत्येक परिवार को खुद आगे बढ़ के दवाई अपने बच्चे को 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पिलाना पड़ेगा। साथ में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका प्रॉपर टीकाकरण कई बीमारियों का होता है, जिसमें पोलियो भी शामिल है, उसको भी हमें उसमें भी भागीदारी करना पड़ेगी।
0: डॉक्टर साहब, अभी वर्तमान को लेकर हम बात करें, ये जो मौसम है, बीच बीच में गर्मी हो रही, कहीं बूंदाबांदी हो रही है, तो ये लगातार बदल रहा है और तापमान भी खूब बढ़ रहा है, घट भी रहा है, तो ऐसे में बच्चों में उल्टी, दस्त या कई बार बाहर का खा लेते हैं तो भी उन्हें कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। माता पिता क्या भूमिका निभाएं, कैसे उनका खान पान बढ़िया हो, तो एक ऐसे शिशु रोग विशेषज्ञ के नाते क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे, इस वर्तमान मौसम में कैसे बच्चों की देखभाल करें और जो सामान्य बीमारियां हो सकती हैं उनके लक्षण और कुछ बीमारियों के बारे में जानेंगे?
1: देखिए राजेंद्र जी, आजकल जो बीमारियां हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन बच्चों की जहां तक बात आती है, सबसे ज्यादा बीमारियां बच्चों में श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं। अगर अपन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बच्चों में सबसे ज्यादा बीमारी श्वास की होती है। श्वास की मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया और उससे होने वाले अन्य रोग होते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये ज्यादा क्यों हो रही है?
0: जी हाँ।
1: इसके कारण है कि आज बच्चों में इम्यूनिटी की कमी हो, बच्चों का एक्सपोजर बहुत कम हो गया है।
0: इसका क्या कारण है जो इम्यूनिटी कम हो रही है? तो वर्तमान मौसम जिम्मेदार है या प्रदूषण जिम्मेदार है या माता पिता ही जिम्मेदार है?
1: देखिए, इसके लिए सब कोई जिम्मेदार है, हम, आप, माता पिता, हर कोई जिम्मेदार
0: जी।
1: सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो कोविड बीमारी आई थी 2020 और 2021 में
0: जी हाँ,
1: इसने भी बच्चों की या सबकी इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से श्वास संबंधी रोग ज्यादा होते हों। दूसरा क्या है कि देखिए, पॉपुलेशन बढ़ गई है
0: जी,
1: अब क्राउडिंग ज्यादा हो गई, उसकी वजह से जो ये इन्फेक्शन होते हैं श्वास के, वो ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कोई बीमार है, उसके छींकने से, खांसने से कीटाणु या विषाणु दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आजकल बच्चे प्ले स्कूल में जाने लगते हैं, उससे भी बच्चों का एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से ये बीमारी होती है। एक जो आपने राजेंद्र जी बोला पॉल्यूशन,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सही बोला है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। पॉल्यूशन की वजह से जो तापक्रम है, मौसम का बदलाव है, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि कभी भी किस सीजन में क्या हो जाए कह नहीं सकते। जैसे पहले श्वास संबंधी बीमारियां केवल ठंड के मौसम में
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन आज के जमाने में गर्मी, ठंडी, बरसात, इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एलर्जी हो गई है। एलर्जी की वजह से ये बीमारियां ज्यादा होती, इसमें बच्चों को खांसी आती है, ये समान समस्या होती है, लेकिन कभी कभी जब श्वास ज्यादा चले और बच्चे को निमोनिया हो जाए तो इलाज करवाना जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: वायरल इन्फेक्शन जो विषाणुओं से होते हैं,
0: बिल्कुल आमतौर पर बहुत देखा जा रहा
1: है, बहुत ज्यादा हो गए
0: जी।
1: पहले ये वायरल इन्फेक्शन इतने नहीं होते थे, इस मौसम की वजह से अब ज्यादा हो गए, तो वायरल निमोनिया ज्यादा होता है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है।

0: उससे बैक्टीरिया भी शरीर में आ जाते हैं और उसमें ये समस्या आ जाती है।
1: किन कारणों से डॉक्टर साहब ये बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं? क्या खान पान हो गया है या फास्ट फूड का ये जो चलन है, ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोस, ये तो बच्चों की पहली पसंद अब हो गए हैं,
0: बहुत
1: तो क्या इनके असर लंबे समय तक रहेंगे, इनकी बॉडी पर इफेक्ट्स बने रहेंगे या इम्यूनिटी ऐसे ही घटती रहेगी? तो कुछ आपके सुझाव और आपके जो शोध रहे हैं वो हम जानेंगे।
0: बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, पेट संबंधी बीमारियों में

0: सन, दूसरा आदमी का आलसीपन और तीसरा अपन का है ये पापी जीभ। जीभ का स्वाद हर आदमी को अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से और देखा देखी बच्चे जब दूसरे को कुछ खाते हुए देखते हैं तो उनको भी इच्छा हो जाती है, और ये चाउमीन, उसके बाद पिज्जा, बर्गर और जाने क्या क्या चीजें हैं। अब हम तो पुराने जमाने के हैं तो हमको इतना अंदाज नहीं रहता, ये भी सब कारण।
1: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। ये कि गाना हम आपकी पसंद का सुनवाएंगे, उस जमाने में जब पढ़ा करते थे आप या आप उस समय फौज में थी तो दोस्तों के साथ कोई गाना गुनगुनाते हो,
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
1: गाना अगर हमारे श्रोताओं के लिए हो
0: जरूर सुनाइए। सन 62 की लड़ाई का हमको ध्यान आता है, लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी। ये हम फौजियों को शुरू से बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इस गाने को बार बार सुनना पसंद करता हूँ।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये गाना हम आप तक पहुंचाते हैं, श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। देखिए श्रोताओं, सबसे पहले देश है उसके बाद हम हैं, इसलिए आइए हम अपने देश की माटी को नमन करें और ऐसे ही देशभक्तिपूर्ण तराने गाते रहें और देश के काम आते रहें। आप जहां हैं वहीं देश की सेवा कर सकते हैं, सच्चाई पर चलें और खूब बढ़िया से बढ़िया काम करते रहें तो ये भी देशभक्ति होगी। तो डॉक्टर साहब की पसंद पर ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं बच्चों में पहले की अपेक्षा, पहले हम देखते थे बच्चे धूल मिट्टी में खेल के बड़े होते थे हम आप सब लोग, लेकिन अब हाइजीन की समस्या बढ़ गई है। कुछ भी थोड़ा सा वो धूल में जाते हैं तो उन्हें एलर्जी होने लगती है या उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो लंबे समय तक रहता है, तो क्या कारण आप देखते हैं ये भी कोई समस्या हो सकती है या बीमारी हो सकती है?
1: देखिए ऐसा है, बीच में मैंने कहा था कि ओवर क्राउडिंग हो रही है, उसकी वजह से अनहाइजीनिक कंडीशंस बढ़ रही हैं। पानी का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा और ज्यादातर बीमारियां जो होती हैं पेट की पानी की गड़बड़ी की वजह से होती है।
0: जी हाँ।
1: उसके अलावा आपने देखा हो एक फैशन में नाखून बढ़ाने का फैशन है, नाखून बड़े होने से पेट में गंदगी जाती है, उसकी वजह से भी होता है। बच्चों को अक्सर दस्त लगते हैं, हांव पड़ती है, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। और एक और बात मैं कहूं, बच्चे आजकल हाथ नहीं धोते।
0: जी हाँ।
1: खाना खाने के पहले अगर बच्चे कुछ भी खाने के पहले हाथ धो लें तो आधी बीमारियों से उनको निजात मिल सकती है।
0: डॉक्टर साहब, बीच में ये कोल्ड ड्रिंक का भी एक लंबा सफर अब हो गया है, बच्चे बाहर जाते हैं तो कभी भी आइसक्रीम खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो इसका भी कुछ असर हो सकता है उनकी बॉडी पर? या मान लीजिए रोगों से लड़ने की क्षमता अगर रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा लंबे समय तक, तो इसके कुछ कारण आप देखते हैं?
1: देखिए जैसा कि मैंने कहा, ये कोल्ड ड्रिंक्स है या फास्ट फूड है, ये सब बॉडी इम्यूनिटी कम कर, आर्टिफिशियल चीजें हैं।
0: जी
1: हाँ। नई रिसर्च के हिसाब से बच्चों को शुगर की मात्रा ना के बराबर देना चाहिए, एक लिमिट है कि किस एज में कितने ग्राम शुगर मिलना चाहिए। लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक्स में देखें तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में करीब 25-30 ग्राम शुगर रहती है, जो बच्चों को मोटापा भी लाती है।
0: जी हाँ।
1: बच्चों की इम्यूनिटी भी कम करती है, बच्चों की आंतें भी खराब करती है, और भी कई कारण है कि उनकी वजह से हो सकती है।
2: बच्चों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के परामर्श एवं इलाज हेतु संपर्क करें
3: कैप्टन डॉक्टर हृदेश खरे, बसारी दरवाजा, संकट मोचन के पास, डॉक्टर हृदेश खरे क्लिनिक, छतरपुर, मध्य प्रदेश।
2: मोबाइल नंबर है 9425363807।
3: 9425-36-38-07।
0: डॉक्टर साहब, बच्चे हैं, कई बार मानसिक व्यवहार भी उनका कमजोर होने लगता है, चिड़चिड़े होने लगते हैं या वो डिप्रेशन में रहते हैं कम उम्र में, तो इनके क्या कारण आप देखते हैं?
1: बहुत सही समय पे सही सवाल आपने पूछा। ये बच्चों का मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य आज के जमाने में बहुत गड़बड़ हो गया, जो इसका मुख्य कारण है बच्चों का स्क्रीन टाइम।
0: जी हाँ।
1: स्क्रीन टाइम से मतलब है बच्चों को मोबाइल और टीवी, जरूरत से ज्यादा समय इसमें बच्चे दे रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को, बच्चा जब खाना नहीं खाता उसको मोबाइल पकड़ा देती है और उसको कार्टून या कुछ दिखाने,
0: ताकि वो उसमें व्यस्त रहे
1: और बच्चे को वो खिलाते। ये सबसे खराब आदत है, इसकी वजह से बच्चे की आदतें खराब होती है।
0: जी हाँ।
1: बच्चा खाते जब थोड़े बड़े हुए खाना खाने बैठेंगे टीवी के सामने बैठ जाएंगे, नजर टीवी पे है, हाथ खाने की प्लेट पे।
0: जी बिल्कुल,
1: वो भी एक गड़बड़ बात हो रही है, उससे भी काफी नुकसान हो।
0: बिना मोबाइल के बच्चे खाते ही नहीं है,
1: बहुत ही गलत है, उसकी वजह से आंख पे भी असर हो रहा।
0: जी हाँ।
1: आपके बैठने की स्टाइल पे भी
0: बिल्कुल
1: असर कर रहा। दूसरा, इस सब को देख के आपका मूड भी तो गड़बड़ हो रहा, आप किस मूड में कौन सी चीज देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, वो आपको नुकसान करने वाली है। आपने बीच में चर्चा की एंग्जायटी, उसका कारण भी यही है, बच्चे जब ये सब चीजें देखते हैं तो उनको ये लगने लगता है ये क्या हो रहा है।
0: जी।
1: हमारे इधर ऐसा क्या है, ये सीरियल्स जो हैं या ये जो कार्टून है।
0: जी जी।
1: ये प्रैक्टिकल नहीं है।
0: जी जी जी।
1: ये सब काल्पनिक है।

0: लेकिन अपने आप को बच्चा उसमें
1: या ढालने लगता
0: कोई भी है ढालता है, उसकी वजह से नुकसान हो जाता।
1: डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले चर्म रोग या और रोगों की, जो बच्चों में कई तरह के कई बार हम देखते हैं चर्म रोग हो गए या उनमें खाज खुजली हो जाती है या चकत्ते पड़ जाते हैं उनकी त्वचा पर, तो इस संबंध में भी हम जानना चाहेंगे क्या कारण होते हैं।
0: देखिए, चर्म रोग एक दूसरे से ज्यादातर लगते हैं या तो एलर्जी से होते हैं या छुआछूत से होते हैं।
1: जी जी।
0: सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आपने बहुत सामयिक प्रश्न पूछा, बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात में हम गीले ना रहें। अगर हम घूम के आते हैं और हमारे मोजे या जूते गीले हो गए हैं तो तत्काल हम उनको उतार दें। उनकी वजह से क्या होता है कि पांव में फंगस हो जाता है या जो बगल में है या जो स्किन फोल्ड होती है, पसीना जमा होता है और अपन बुंदेलखंडी में क्रूरू बोलते हैं,
1: जी जी,
0: वो हो जाते हैं, गमोनिया हो जाता है। अगर उनका सही वो ना करें अपन तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने लग। तो इसके लिए हमको अपनी व्यक्तिगत हाइजीन में वो करना पड़ेगा, उसकी वजह से सब चीजें ठीक हो जाएंगी।
1: डॉक्टर साहब, बच्चों में कुछ वैक्सीन भी होती हैं क्या, उनके टीकाकरण भी विशेष रूप से लगाए जाते हैं ताकि उनमें बीमारियां कम हों और वो स्वस्थ रह सकें, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे।
0: देखिए, टीकाकरण तो एक ऐसी चीज है कि इस अभियान ने असंभव को भी संभव बना दी। बाल मृत्यु दर जो पहले हिंदुस्तान में
1: जी
0: बहुत ज्यादा थी और आज अगर नवजात की मृत्यु दर की बात करें तो केवल 1,000 पे 17 रह गए, हिंदुस्तान में 1,000 पे 20 और मध्य प्रदेश में 1,000 पे 26। इसी तरह शिशु मृत्यु दर अपने मध्य प्रदेश में 40 प्रति 1,000 जबकि इंडिया में 26 प्रति 1,000 है। और इसका कारण, ये जो घट गई, इसका मुख्य कारण है टीकाकरण। पहले टीकाकरण इतना नहीं होता था। अगर 23-24 के सर्वे के अनुसार अपन देखें तो अपना प्रतिशत टीकाकरण का 87% हो, जबकि 15-16 में ये केवल 62%। रोटा वायरस जिससे दस्त की रोकथाम करते हैं 36 से 85% हो, तो टीकाकरण से बहुत ज्यादा बीमारियों में कंट्रोल हुआ है। भारत सरकार 12 बीमारियों के लिए मुफ्त टीके लगवाती है, उनके मैं नाम लूं, BCG
1: जी,
0: पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस आते हैं, रोटा वायरस, PCV, MRI, MMR, जापानी इंसेफ्लाइटिस, टिटनेस टॉक्साइड, HPV और टिटनेस और डिप्थीरिया। अब HPV एक नाम आपको शायद अजीब सा लगेगा
1: जी,
0: लेकिन भारत सरकार ने ये जो बच्चेदानी में कैंसर होता है औरतों में उसकी रोकथाम के लिए ये HPV टीकाकरण चालू किया। ये अगर 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियों को लगवा दिया जाए तो भविष्य में कैंसर जो बच्चादानी का होता है वो नहीं होगा। इसलिए इस टीका को जरूर से लगवाएं। अगर आप पहले प्राइवेट में लगता था और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 3 से 4 हजार में एक टीका पड़ता था, आज के जमाने में ये केवल फ्री में भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए आप टीकाकरण जरूर से करो। मैं अब अंत में यही कहूंगा कि आप बचाव के जरूर करें, बीमारियों से बचाव के मुख्य कारण है। मुख्य सलाह मेरी है, परिवार के साथ भोजन करें, एक हरी सब्जी, एक फल, ये सब जरूर से लें, स्क्रीन टाइम कम से कम करें, समय पर बच्चों को टीकाकरण करवाएं, समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको समझाते रहें।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, हम उम्मीद करेंगे आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जरूर इनका पालन करेंगे ताकि हमारे देश के नौनिहाल हैं जिनके हाथ में देश का भविष्य होगा वो स्वस्थ रहें और विश्व में वो अपना नाम करें। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण बातें, बच्चों में होने वाले प्रमुख रोग, उनकी बीमारियां, खासकर वो स्वस्थ कैसे रहें, इन विशेष जानकारियों पर, इन विशेष बातों पर हमें जानकारी दे रहे थे पूर्व शिशु रोग विशेषज्ञ, पूर्व सिविल सर्जन, पूर्व CMHO कैप्टन डॉक्टर हृदेश खरे। आपका क्लिनिक है डॉक्टर हृदेश खरे बसारी दरवाजा छतरपुर में। आप जरूर डॉक्टर साहब से परामर्श लें और आप भी स्वस्थ रहें और आप अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखें। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आकर डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है हमारे सभी श्रोता लाभ लेंगे और एक स्वस्थ समाज की कल्पना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी में।

0: के लिए।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें श्रोताओं के बीच में उपस्थित कर दिया। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जय हिंद।
0: जय हिंद।
2: बच्चों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के परामर्श एवं इलाज हेतु संपर्क करें
3: कैप्टन डॉक्टर हृदेश खरे, बसारी दरवाजा, संकट मोचन के पास, डॉक्टर हृदेश खरे क्लिनिक, छतरपुर, मध्य प्रदेश।
2: मोबाइल नंबर है 9425363807।
3: 9425-36-38-07।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिशु रोग विशेषज्ञ कैप्टन डॉक्टर हृदेश खरे।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बच्चों में सामान्य बीमारियां और बचाव विषय पर डॉक्टर हृदेश खरे से बातचीत। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इसमें आप सुनेंगे मुस्कान प्रजापति को। आइए इनसे सुनते हैं लेट।

बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में अब लीजिए सुनिए विवाह गारी मुस्कान प्रजापति की आवाज में।

लोकरंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए मुस्कान प्रजापति की आवाज में ये लोक शैलीबद्ध लोकगीत।

अभी आपने सुना सोहर। इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी कव्वालियां। पहली कव्वाली है फिल्म भूला भटका से, आवाज आशा भोसले, अजीज नाजा और साथी की है, कलाम आनंद बख्शी का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

फिल्मी कव्वालियों के कार्यक्रम में आप लीजिए सुनिए सिक्का फिल्म की ये कव्वाली। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में कलाम है कफील आजर का, संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

अब लीजिए सुनिए फिल्म यारी जिंदाबाद की ये कव्वाली। आवाज है आशा भोसले, उषा मंगेशकर और साथी की। कलाम है एमजी हशमत का, संगीत्य है सोनिक ओमी ने।

खम सब तोड़ दूंगी, नखरानी तोड़ दूंगी, सर तेरा फोड़ दूंगी, गर्दन मरोड़ दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर छोड़ूंगी। अरे लेके टक

0: टक्कर टक्कर टक्कर।
1: अब लीजिए सुनिए फिल्म मस्तान दादा की ये कव्वाली। आवाज है आशा भोसले, महेंद्र कपूर, जानी बाबू और साथी की, कलाम है मजरू सुल्तान।

अब लीजिए सुनिए फिल्म अली बाबा की ये कव्वाली। आवाज है आशा भोसले, अजीज नाजा और साथी की। कलाम कफील आजर का है, संगीत हंसराज बहल का है।

0: इसी के साथ फिल्मी कव्वालियों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: हमारा अगला कार्य

0: ये आकाशवाणी है। लीजिए प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भोपाल जिले में कल झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही मौसम खुशनुमा होने से शहरवासी खुश नजर आए। आपको बता दें कि इस बार मॉनसून ने 24 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था। इसके बाद करीब 9 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में मॉनसून फैल गया। हालांकि इसकी एंट्री सामान्य समय से करीब 9 दिन देरी से हुई है। देरी की वजह से किसान समय पर फसल की बुआई नहीं कर पाए। हालांकि अब निरंतर बारिश होने के चलते किसान फसल की बुआई में लग गए हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम एक बार फिर जर्जर भवनों को लेकर सक्रिय हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी भवन मालिकों और सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम के सर्वे के मुताबिक भोपाल में 3,435 भवन जर्जर हैं। इनमें 2,464 सरकारी और 971 निजी भवन शामिल हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 740 सरकारी और 17 निजी भवन अति जर्जर श्रेणी में हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। रेलवे प्रशासन ने रानी कमलापति अगरतला स्पेशल ट्रेन में LHB कोच लगाने का निर्णय लिया है। भोपाल के रानी कमलापति से ये ट्रेन 9 जुलाई और अगरतला से 12 जुलाई से LHB रैक के साथ चलेगी। वहीं 23 जुलाई और 26 जुलाई से संशोधित LHB कोच संरचना लागू होगी। इसके अलावा इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस का सीहोर स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव देने और पुणे दानापुर दैनिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 2,548 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ जमीनी स्तर पर पोषण और बाल विकास सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है। भर्ती के तहत 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों के सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डीन डॉक्टर भानु दुबे रहे। शुभारंभ डॉक्टर तृप्ति सक्सेना के स्वागत उद्बोधन सर्वधर्म प्रार्थना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। 5 दिवसीय मॉनसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन की

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं महेश शर्मा।

बापूजी की आत्मकथा से आज का प्रसंग है खुराक के प्रयोग। जैसे जैसे मैं जीवन की गहराई में उतरता गया, वैसे वैसे मुझे बाहर और भीतर के आचरण में फेरफार करने की जरूरत मालूम होती गई। जिस गति से रहन सहन और खर्च में फेरफार हुए, उसी गति से अथवा उससे भी अधिक वेग से मैंने खुराक में फेरफार करना शुरू किया। मैंने देखा कि अन्नहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों में लेखकों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया था। उन्होंने धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक और वैद्यक दृष्टि से अन्नहार की छानबीन की थी। नैतिक दृष्टि से उन्होंने यह सोचा था कि मनुष्य को पशु पक्षियों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ है, वह उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए है। अथवा जिस प्रकार मनुष्य एक दूसरे का प्रयोग करते हैं पर एक दूसरे को खाते नहीं, उसी प्रकार पशु पक्षी भी प्रयोग के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। और उन्होंने देखा कि खाना भोग के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए ही है। इस कारण कईयों ने आहार में मांस का ही नहीं बल्कि अंडों और दूध का भी त्याग सुझाया और किया। विज्ञान की दृष्टि से और मनुष्य की शरीर रचना को देखकर कई लोग इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य को भोजन पकाने की आवश्यकता ही नहीं है। वह वन पक्व यानी झाड़ पर कुदरती तौर पर पके हुए फल ही खाने के लिए पैदा किया गया है। दूध उसे केवल माता का ही पीना चाहिए। दांत निकलने के बाद उसको चबा सकने योग्य खुराक ही लेनी चाहिए। वैद्यक दृष्टि से उन्होंने मिर्च मसाले का त्याग सुझाया और व्यावहारिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उन्होंने बताया कि कम से कम खर्च वाली खुराक अन्नहार ही हो सकती है। मुझ पर इन चारों दृष्टियों का प्रभाव पड़ा और अन्नहार देने वाले भोजन गृह में चारों दृष्टि वाले व्यक्तियों से मिलने लगा। विलायत में इनका एक मंडल था और एक साप्ताहिक भी निकलता था। मैं साप्ताहिक का ग्राहक बना और मंडल का सदस्य। कुछ ही समय में मुझे उसकी कमेटी में ले लिया गया। मैं प्रयोगों में व्यस्त हो गया। घर से मिठाई मसाले वगैरह जो मंगाए थे सो लेने बंद कर दिए और मन ने दूसरा मुंह पकड़ा। इस कारण मसालों का प्रेम कम पड़ गया और जो सब्जी रिचमंड में मसाले के अभाव में बेस्वाद मालूम होती थी, वह अब सिर्फ उबाली हुई स्वादिष्ट लगने लगी। ऐसे अनेक अनुभवों से मैंने यह सीखा कि स्वाद का सच्चा स्थान जीभ नहीं पर मन है। आर्थिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही। उन दिनों एक पंथ ऐसा था जो चाय कॉफी को हानिकारक मानता था और कोको का समर्थन करता था। मैं यह समझ चुका था कि केवल उन्हीं वस्तुओं का सेवन करना योग्य है जो शरीर व्यापार के लिए आवश्यक हैं। इस कारण मुख्यतः मैंने चाय और कॉफी का त्याग किया और कोको को अपनाया। भोजन गृह के दो

विभाग थे। एक में जितने पदार्थ खाओ उतने पैसे देने होते थे। इसमें एक बार में शिलिंग दो शिलिंग का खर्च भी हो जाता था। इस विभाग में अच्छी स्थिति के लोग जाते थे। दूसरे विभाग में 6 पैनी में 3 पदार्थ और डबल रोटी का एक टुकड़ा मिलता था। जिन दिनों मैंने खूब किफायती शारी शुरू की थी उन दिनों में अक्सर 6 पैनी वाले विभाग में जाता था। ऊपर के प्रयोगों के साथ उपप्रयोग तो बहुत हुए। कभी स्टार्च वाला आहार छोड़ा, कभी सिर्फ डबल रोटी फल पर ही रहा और कभी पनीर। यह एक सूक्ष्म रहस्य है और ध्यान में रखने योग्य है। विलायत में मैंने मास की 3 व्याख्याएं पढ़ी थीं। मेरी प्रतिज्ञा माता के सम्मुख किया हुआ एक करार था। दुनिया में बहुत से झगड़े केवल करार के अर्थ के कारण उत्पन्न होते हैं। इकरार नामा कितनी ही स्पष्ट भाषा में क्यों न लिखा जाए तो भी भाषा शास्त्री राय का पर्वत कर देंगे। इसमें सभ्य असभ्य का भेद नहीं रहता। स्वार्थ सबको अंधा बना देता है। राजा से लेकर रंग तक सभी लोग करारों के खुद को अच्छे लगने वाले अर्थ करके दुनिया को, खुद को और भगवान को धोखा देते हैं। इस प्रकार पक्षकार लोग जिस शब्द अथवा वाक्य का अपने अनुकूल पढ़ने वाला अर्थ करते हैं, न्याय शास्त्र में उसे द्विअर्थी मध्यम पद कहा गया है। सुवर्ण न्याय तो यह है कि विपक्ष ने हमारी बात का जो अर्थ माना हो वही सच माना जाए। हमारे मन में जो हो वह खोटा अथवा अधूरा है। और ऐसा ही दूसरा सुवर्ण न्याय यह है कि जहां 2 अर्थ हो सकते हों वहां दुर्बल पक्ष जो अर्थ करे वही सच माना जाना चाहिए। इन 2 सुवर्ण मार्गों का त्याग होने से ही अक्सर झगड़े होते हैं और अधर्म चलता है। जिसे सत्य के ही मार्ग पर जाना है उसे सुवर्ण मार्ग सहज भाव से मिल जाता है। उसे शास्त्र नहीं खोजने पड़ते। माता ने मास शब्द का जो अर्थ माना और जिसे मैं उस समय समझा वही मेरे लिए सच्चा था। वह अर्थ नहीं जिसे मैं अपने अधिक अनुभव से या अपनी विद्वता के मद में सीखा समझा था। इस समय तक के मेरे प्रयोग आर्थिक और आरोग्य की दृष्टि से होते थे। विलायत में उन्होंने धार्मिक स्वरूप ग्रहण नहीं किया था। धार्मिक दृष्टि से मेरे कठिन प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुए, जिनकी छानबीन आगे करनी होगी। पर कहा जा सकता है कि उनका बीज विलायत में बोया गया था। जो आदमी नया धर्म स्वीकार करता है उसमें उस धर्म के प्रसार का जोश, उस धर्म में जन्मे हुए लोगों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। विलायत में तो अन्नाहार एक नया धर्म ही था और मेरे लिए भी वह वैसा ही माना जाएगा, क्योंकि बुद्धि से तो मैं मांसाहार का हिमायती बनने के बाद ही विलायत गया था। अन्नाहार की नीति को ज्ञानपूर्वक तो मैंने विलायत में ही अपनाया था। अतएव मेरी स्थिति नए धर्म में प्रवेश करने जैसी बन गई थी और मुझ में नवधर्मी का जोश आ गया था। इस कारण उस समय मैं जिस बस्ती में रहता था उसमें मैंने अन्नाहारी मंडली की स्थापना करने का निश्चय किया। उस बस्ती का नाम वेज वाटर था। इसमें सर एडविन ऑर्नोल्ड रहते थे। मैंने उन्हें उपसभापति बनने को निमंत्रित किया। वे बने। डॉक्टर ओल्ड फील्ड सभापति बने। मैं मंत्री बना। यह संस्था कुछ समय तक तो अच्छी चली पर कुछ महीनों के बाद इसका अंत हो गया, क्योंकि मैंने अमुक मुद्दत के बाद अपने रिवाज के अनुसार वह बस्ती छोड़ दी। पर इस छोटे और अल्प अवधि के अनुभव से मुझे संस्थाओं का निर्माण करने और उन्हें चलाने का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। अभी आप बापूजी की आत्मकथा से आज का प्रसंग सुन रहे थे, खुराक के प्रयोग। और अब बापूजी के प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे महेश शर्मा। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी भजन। गैर फिल्मी भजन में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति से रामधुन।

आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त दर्शना गोस्वामी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म आराधना से, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, गीत आनंद बख्शी का, संगीत सचिन देव वर्मन का है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिन्होंने फेसबुक पर अपने कमेंट किए हैं। नरकोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। लखन पडरिया छत्तीसगढ़ से पसंद किया है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सौरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ग्राम पीपर लोट सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो आइए सुनते हैं फिल्म आराधना का ये गीत।

इसी भजन के साथ गैरफिल्मी भजन का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है श्रोताओं के सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म चरस से। आवाज आनंद बख्शी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। हमको संदेश भेजा है सोशल मीडिया पर पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से हैं। रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कंबोज। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू ने मालवा रेडियो श्रोता संघ। ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से ये संदेश आया है। जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ का। गांधीनगर गुजरात से हैं जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल। एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी। मुजफ्फरपुर बिहार से इन्होंने भेजा है संदेश। आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ग्राम खकल विकास खंड नदी गांव जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर एवं समस्त परिवार। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये संदेश भेजा है। रामशरण विश्वकर्मा ने, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना

वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से ये संदेश भेजा है। दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और आलोकिक चंसोलिया। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म चरस का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म अजनबी से। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव बर्मन का है। हमारे श्रोता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश भेजे हैं। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर, यहीं से हैं जयपाल यादव। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। भेलसी खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं सत्येंद्र चंसोलिया, पंजोनिया से हैं आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नहवार, विशाल नहवार। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुहरेकर। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से हैं कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता। ग्राम व पोस्ट हरपुर मटकली जिला बरेली से संदेश भेजा है शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मुइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। ग्राम गरौली जतारा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं चतुर्भुज अहिरवार, विनोद रानू, ब्रजेश संध्या, पूजा और अनिकेत। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पंचार पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन पवार। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: अरे क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: अरे फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात।
2: अच्छा।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म आनंद से, आवाज मुकेश की है, गीत गुलजार का, संगीत सलील चौधरी का है। सोशल मीडिया पर संदेश भेजा है हमारे श्रोताओं ने, नेपाल पहले सागर सिंह, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। राजमाता नगर बुलढाणा से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। रिंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं भाई अहमद बागवान, दुखना सदफ आरजू, इमरान अहमद फूलवाले और जूही इकबाल फूलवाले। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं भेरूलाल वाकतरिया, धाकड़ भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राव।

राहुल शर्मा। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु। आइए सबकी पसंद पर सुनते हैं आनंद फिल्म का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगले कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी।

0: कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें आपके फोन कॉल्स का है बेसब्री से इंतजार, तो कीजिए कॉल और सुनिए अपनी पसंद के गीत। जी
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: शेख हैदर खान रतलाम से?
1: हाँ, सुराना जिला रतलाम।
0: रतलाम से तो कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है मैडम।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
1: मौसम तो मैडम आज 5:30 बजे से करीबन 2 घंटा मतलब अच्छी बारिश हो गई है।
0: हाँ हाँ,
1: और पानी की जरूरत भी थी। सोयाबीन की बोनी भी हो चुकी है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो कई जगह पर हमने सुना है कि लोगों ने अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं कर पाए हैं कि पानी बार बार गिर रहा है।
1: हाँ, मैं कई जगह तो मैडम पानी अभी तक गिरा भी नहीं है।
0: सही कह रहे हैं।
1: हाँ, हमारे आसपास भी मतलब ये जावरा तहसील है, इसमें भी पानी नहीं है फिलहाल।
0: हाँ चलिए, तो शेख साहब आज कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है
0: हाँ
1: नदिया के पार।
0: अरे वाह, नदिया के पार के तो सभी गीत बड़े प्यारे
1: हैं। हाँ, सचिन और साधना की फिल्म थी ये।
0: हाँ जी,
1: तो उसका गीत है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया।
0: बिल्कुल, ये गीत आप बिल्कुल सुन पाएंगे, लेकिन कल सुबह 11 बजे से जो प्रोग्राम आएगा उसमें।
1: हाँ हाँ,
0: है ना। चलिए, अच्छा कॉल आपने कब किया? एक हफ्ते तो हो चुके होंगे ना आपके कॉल को?
1: नहीं, मैं तो ज्यादा दिन हो गए मैडम, 15-20 दिन हो गए। मैं तो बोनी में लगा हुआ था।
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: 2-4 दिन से।
0: बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कॉलर्स है ना, जैसे कल लगाया आज फिर लगा दिया, तो हम उनसे बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपना रजिस्टर चेक करते हैं तो पता पड़ता है उन्होंने तो कल ही बात की थी, तो हमें उनका प्रोग्राम में फिर उनका कॉल नहीं ले पाते।
1: नहीं, वो सही है ना, मतलब 15-20 दिन की गैप भी देनी चाहिए हर।
0: बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से हम लोगों ने ये सिस्टम किया है कि हर श्रोता को मौका मिल सके।
1: सही है,
0: है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच शेख साहब।
1: ओके ओके, थैंक यू, है ना मैडम
0: जी। नमस्ते,
1: शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो,
0: परमालिनी दीदी, सादर सा प्रेम प्यार से नमस्कार।
1: नमस्कार। इतने जोश से कौन साहब बोल रहे हैं?
0: जी दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप लोग कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं। मथुरा में तो भयंकर गर्मी पड़ रही है शारदा जी।
0: जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बारिश नहीं हुई है अभी तक मानसून ने,
1: हाँ
0: और मानसून पहले भी वर्षा नहीं हुई थी। हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं तो चमचमाती हुई धूप है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं,
1: हाँ
0: लेकिन उमस भरी गर्मी बरकरार है।
1: बहुत तेज, क्योंकि अभी जस्ट हम मथुरा से होकर ही आए हैं 2-3 दिन पहले, और सब बीमार पड़ गए हैं। इतनी भयंकर गर्मी है वहां पर।
0: जी, गर्मी बहुत है दीदी, और उमस वाली गर्मी अब परेशान कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में कुछ कुछ वर्षा हो जाती है, बूंदाबांदी
1: हाँ
0: होती है, जिसके कारण से उमस काफी बढ़ गई है, और उमस जो है बहुत गर्मी के साथ साथ में बेचैनी उत्पन्न करती है।
1: बेचैनी, बिल्कुल। चलिए शारदा जी, बताइए अपनी पसंद का गीत।
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है संगीत।
1: संगीत।
0: जी, इसका शीर्षक गीत है
1: हाँ जी,
0: संगीत जहाँ है गीत वहाँ है, गीत जहाँ है प्रीत वहाँ। बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत है,
1: हाँ अनुराधा
0: इसको
1: पौडवाल
0: गाने के
1: और
0: साथ में
1: सुरेश,
0: लता जी जा रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजें हैं ये।
0: सॉरी दीदी, आपने हमारी गलती को सही कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको।
1: कोई बात नहीं, तो ठीक है शारदा जी, कल के प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का गीत जरूर सुन पाएंगे। ठीक है, कॉल
0: जी
1: करने
0: दीदी,
1: के लिए
0: हृदय से
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: आज मैं ग्राम बालू का लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: जी कन्हैया लाल जी, कैसे
1: हाँ जी
0: हैं?
1: मैडम। हाँ मैडम, भाई बढ़िया आनंद मंगा।
0: कॉल आपने एक हफ्ते बाद ही किया है ना?
1: हाँ
0: हाँ जी, चलिए और सुनाइए, क्या हाल है आपके?
1: हाँ बढ़िया है, आनंद मंगल है। सफर कर रहे हैं अब।
0: आज कहाँ जा रहे हैं?
1: हम वहां से आए हैं, शीतला मंदिर से वापस नर्मदा के पास जा रहे हैं, बालोदा लखा।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: कन्हैयालाल जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दिल में वो बरखा रानी जरा जिनका बड़े सबक फिल्म का है ना।
0: सबक।
1: हाँ सबक बरखा रानी जरा
0: हाँ
1: जिनके बरसों मेरा दिल जरा
0: हाँ
1: जिनके
0: जी,
1: बरसों।
0: बहुत अच्छा गाना है ये, मुकेश की
1: हाँ
0: आवाज में।
1: हाँ सबक फिल्म का बहुत
0: हाँ
1: पुराना
0: हाँ बिल्कुल, आपका प्रोग्राम में, ये कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत सुन पाएंगे,
1: है।
0: ठीक है? कल
1: कितने बजे आप?
0: 11 बजे से प्रोग्राम आएगा, तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का गीत, और हमारे बीच जो बातचीत हो रही है वो भी आप सुन सकेंगे।
1: आपका कैसा हाल चाल है?
0: आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, इसलिए मैं आप माफी चाहूंगी
1: बढ़िया है, आनंद मंगल है। और
0: जी।
1: क्या?

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी शुभ नाम।
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: जी अरविंद जी, क्या हाल है आपके?
1: जी एकदम बढ़िया है। आप भी अच्छी होंगी ऐसी आशा करते हैं।
0: बिल्कुल आपकी
1: जी
0: आशाओं पे।
1: कविता जी से बात हो रही है आज? कविता रावत जी से बात।

0: जी थैंक यू वेरी मच आवाज पहचानने के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं अरविंद जी?
1: श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
0: बहुत बढ़िया। कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में बारिश का?
1: कल तो हुई थी थोड़ी बारिश,
0: अभी वो लगकर जो मानसून आना चाहिए ना, लगातार बारिश होती है और ठंडक हो जाती, वो मौसम नहीं आ पा रहा ना। हाँ, लेकिन अभी लगातार बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से हर जगह उमस के कारण सभी लोग परेशान है ना। और परिवार में सब कुशल मंगल?
1: सब आशीर्वाद है आपका, भगवान की कृपा है।
0: चलिए हमेशा बनी रहे। और बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा घाट।
0: घाट
1: जी।
0: उसका कौन सा गीत?
1: झुमका चांदी का।
0: अच्छा हाँ बिल्कुल, मिल गया हमें ये गाना तो।
1: जी मिल तो जाएगा ही।
0: हाँ बड़ी अनोखी चॉइस है आपकी।
1: जी थोड़ी लग हट के सुना हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: संगीत थोड़ी
0: बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, और हर टाइप का संगीत हमको सुनना ही चाहिए है ना, तभी तो हम अपने बच्चों को भी ये सिखा पाएंगे कि ये इसमें क्या है, इसमें कौन सा राग है, क्या है, ये सारी बातें है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी कॉल करने के लिए।
1: जी आपका भी धन्यवाद कॉल लेने के लिए।
0: जी नमस्कार,
1: आपका दिन शुभ हो।
0: आपका भी दिन शुभ हो। हेलो हेलो हेलो हेलो,

0: हेलो।
1: नमस्कार दीदी,
0: नमस्ते जी।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। जी
0: बाबू यादव,
1: जी
0: सारनाथ वाराणसी। पहली बार बात हो रही है ना बाबूनाथ जी आपसे?
1: नहीं दीदी, ये बहुत ही रहती है।
0: होती रहती, मतलब मेरे से नहीं हुई है।
1: आपका परिचय जानना चाहूँगा।
0: कविता रावत।
1: ओ हाँ दीदी, ठीक कह रहे, पहली बार हो रही
0: है ना? अपनी पहली बार बात हो रही है। सोचिए, इतने सालों में पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: दीदी, आपकी वो जो गीत सागर में आप जो कार्यक्रम देती थी,
0: हाँ जी,
1: उसमें आपका गीत सागर में मतलब सुनता था, अच्छा लगता था।
0: अच्छा अच्छा
1: और मैं पत्र भी भेजता था।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: चलिए, थैंक यू वेरी मच।
1: तो वहाँ आपका नाम सुन।
0: जी जी।
1: और हम पत्र भी भेजते थे, अच्छा लिखते थे आपकी। और क्या थी, सिंह थी, सरिता सिंह थी, क्या थी?
0: सुनीता सिंह।
1: हाँ सुनीता सिंह जी।
0: तो
1: आप लोगों के विचार जो है बहुत अच्छे लगते थे गीत सागर में।
0: अभी भी प्रोग्राम आता है लेकिन शिफ्ट ड्यूटी रहती है तो किसी कारण से अभी नहीं कर पा रहे हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: बस आप सबका स्नेह ऐसे ही हम लोगों के साथ बना रहे।
1: जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोग प्रस्तुत करती हैं, अच्छा लगता है, सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है।
0: ये बात सही है। और आपस में बातचीत करके ना अपने बहुत सारे समस्याओं का हल भी निकलता है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: है ना? बस यही तो उद्देश्य है हमारे रेडियो का। चलिए बताइए बाबूजी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी देखिए, मेरे यहाँ कल से बारिश हो रही है।
0: हाँ जी।
1: तो बनारस का मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
0: हाँ हाँ।
1: तो इस अवसर पर हमको एक गाना सुना रहे, फिल्म जुर्माना का है।
0: हाँ हाँ।
1: और वो आपकी सजन सावन में।
0: अच्छा, जुर्माना का
1: हुआ है।
0: तो
1: वही सुनाइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दो लाइने कहना चाहूंगा, इजाजत देंगी तो।
0: हाँ।
1: कि कहते हैं कि अशकों की जुबान नहीं होती और लफ्जों में मोहब्बत बयान नहीं होती और मिले जो प्यार से तो कद्र करना यारू, मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सही बात। अच्छा बाबू यादव जी, एक बात बताइए, ये जो गीत के बोल है ना, ये है सावन के झूले
1: जी,
0: है ना? चलिए ठीक है।
1: जी जी जी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहुत खूबसूरत मौसम के अनुरूप है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ, मेरा मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
0: हाँ हाँ
1: हाँ।
0: चलिए ठीक है, चलिए।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते
1: जी। मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: जी। जीनत जी, कैसी हैं आप?
1: जी। अच्छी हूँ,
0: क्या चल रहा था अभी?
1: बस हाउस वाइफ हूँ।
0: हाउस
1: घर
0: वाइफ
1: के
0: को भी
1: काम
0: ढेर सारे काम होते हैं भाई।
1: जी, घर के काम निपटा है। मम्मी के वहां से कल आई हूँ, मंदसौर से घर का काम संभालू।
0: हाँ सही बात है, और बहुत काम होते हैं, और कहीं बाहर से आओ तो काम और दुगने हो जाते हैं।
1: जेंट्स तो करते ही नहीं है, वो फिर आके अपनों को ही सफाई करनी पड़ती है पूरी।
0: सही बात है, सबके है ना डिपार्टमेंट अलग अलग
1: जी
0: है। अच्छा जीनत जी, बताइए कौन से गीत सुनेंगी आप?
1: जी मैं सुनूंगी 1942 एंड लव स्टोरी का, है ना।
0: अच्छा,
1: रिम झिम रिम झिम।
0: सबके मन में आजकल यही चल रहा है ना। तो बारिश मतलब रिमझिम रिमझिम शुरू हो गई है।
1: जी हो गई ना, इंदौर में भी आ गया पानी।
0: हाँ, आ तो गया लेकिन अभी उतना फुर्ती से नहीं आया।
1: जी उतना तो नहीं हुआ, मगर थोड़ी ठंडक रात
0: हल्की
1: हो गई
0: फुल्की, हल्की
1: गर्मी।
0: फुल्की कह सकते हैं।
1: जी
0: हाँ ठीक है, चलिए धीरे धीरे ही सही आएगा, तो आ ही रहा है।

0: चलिए जीनत जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए धन्यवाद, और कल 11 बजे अपना प्रोग्राम आप सुन सकती हैं।
1: जी शुक्रिया मैम
0: जी, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम जी,
0: शुभ नाम बताइए अपना।
1: जी मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है।
1: हाँ पहले बात हुई होगी, एक या डेढ़ महीने पहले।
0: हाँ और क्या हाल है आपके?
1: एकदम बढ़िया, और काम वाम भी अच्छे से चल रहा है, और मौसम भी अब थोड़ा बहुत अच्छे से हो गया, मतलब ठंडा मौसम हो गया, बारिश भी हो गई है।
0: चलिए राम बाबू जी, आपको हमारी आवाज पसंद नहीं है क्या?
1: जी जी बिल्कुल है ना पसंद।
0: तो आपने हमारे सारे सवालों के जवाब लगातार दे दिए, हम तो कोई सवाल ही नहीं कर पाए आपसे। चलिए कोई बात नहीं, और बताइए कौन से गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुछ सब बढ़िया है। हाँ। और मौसम मौसम सब अपना भोपाल का तो सब ठीक ठाक है, अभी तो नॉर्मल है, ज्यादा बारिश ना कुछ भी नहीं, अभी शुरुआत हुई है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और आपकी आवाज की भी बात, तो आपकी आवाज बहुत बढ़िया है, और आपकी जो प्रस्तुति है प्रोग्राम की,
0: जी जी
1: अच्छी सी है, कोई बात की दिक्कत नहीं, हमको बहुत पसंद है, सभी श्रोताओं को पसंद है।
0: जी थैंक यू वेरी मच। जी बताइए कौन से गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है आज की आवाज।
0: आज की आवाज,
1: हाँ उसमें एक गाना बहुत प्यारा गाना है, दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानियां की, ये वाला गाना है।
0: बिल्कुल सही बात है, ये बहुत प्यारा गाना है और ये मिल भी गया मुझे।
1: हाँ जी जी।
0: तो कल 11 बजे
1: अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश में जरूर बिल्कुल बराबर मिलता है, ये हर एक गाने मिल जाते हैं।
0: हाँ हर गाना,
1: हाँ वो कभी कभी सर्चिंग में हो जाता है, कभी भी आप आते, लेकिन रहते जरूर है बराबर।
0: सही बात है ये।
1: जी जी।
0: तो बिल्कुल कल 11 बजे से प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का गीत।
1: जी जी।
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: फोन करें जी। सुनो जी,
0: जी हाँ
1: लगता है कि कविता जी बोल रही। क्या
0: हाँ जी
1: बात है।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते कविता जी। अब आप भी बताइए कि मैं कौन बोल रहा हूँ।
0: मैं बहुत अच्छे से पहचान रही हूँ, लेकिन माफी चाहती हूँ, नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी।
1: चलो थोड़ी सी ऑप्शन दे रहा हूँ। फूल,

0: हाँ जी फूल सिंह जी खजुराहो से देखिए हमें एकदम आवाज सुनते ही लगा कि ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी है, लेकिन नाम क्लिक नहीं हो रहा था
1: क्या बात है कोई बात, बहुत सारे श्रोता हैं,
0: बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे हैं।
1: हमारे जितने उद्घोषक हैं बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी।
0: थैंक यू वेरी मच हम सभी की तारीफ के लिए। और बताइए क्या हाल है आपके, और खजुराहो का मौसम कैसा है?
1: खजुराहो का मौसम तो अब तो खजुराहो का मौसम दिलदार है, बिल्कुल झूमता हुआ, कितना प्यारा मौसम के बढ़िया। अब पानी गिर गया है, दो एक दो पानी गिर गया अभी, कल भी पानी बहुत बरसा हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में।
0: हाँ हाँ।
1: और अब तो खजुराहो का मौसम बहुत दीवाना है।
0: अरे वाह क्या बात है। मतलब अब तो घूमने लायक मौसम बन गया।
1: जी बिल्कुल, गर्मियों का छोड़ के जो है बरसात हाँ। में और ठंडियों में तो घूमने का खजुराहो का आनंद कुछ और ही हो जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत जल्दी
1: पार्किंग है जो वहाँ की, खजुराहो की जो पार्किंग है, वहाँ की जो पेड़ पौधे जो छटाएं हैं वो इतनी मनोहर इतनी मनमोहक लगती हैं कि लगता है कि देखते ही रहे।
0: आपकी शब्दावली बहुत अच्छी है। चलिए फूल सिंह जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: मैं श्रोताओं को बता दूं कि मैं श्रोताओं में फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूं। और देखिए कविता जी क्या है कि अभी ऐसा मधुर मौसम, इतना प्यारा मौसम हो हमारे यहाँ तो क्या पूरा मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही होगी शायद।
0: हाँ आज तो नहीं हुई है लेकिन रात को थोड़ा बहुत पानी गिरा है।
1: जी हमारे यहाँ तो मनकारी में खजुराहो में बहुत पानी गिरा है रात में, अभी भी पानी बादल है और रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में बार बार मन कह रहा है कि एक गीत है, फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा
1: हेलो।
0: हाँ जी आवाज आ रही है मुझे।
1: हाँ खड़खड़ की आवाज आई।
0: हाँ वो अब थोड़ा डिस्टरबेंस तो होगा, मौसम चेंज हो रहा है ना तो थोड़ा सा तो होगा।
1: जी जी फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी।
0: हाँ जी।
1: और गीत की बोले है कि तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई जी बरसातों में।
0: हाँ मिल गया हमको ये गाना, और बहुत अच्छा गाना है।
1: अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज।
0: मोहम्मद अजीज जी, तो बिल्कुल कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत जरूर सुनिएगा।
1: कविता जी ये गीत आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी है, बेटा सिंह यादव जी हैं, मणिराम पाल जीतन पाल जी हैं, और दिनकर सिंह चित्रकूट धाम से है, मांगीलाल चंदेल जी है।
0: बिल्कुल जी धन्यवाद।
1: पूनम सिंह कानपुर से, उनको भी डेडिकेट, सभी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: चलिए बहुत बहुत आभार,
1: बहुत बहुत कविता जी आइए, स्वागत है, बार बार स्वागत है।
0: बिल्कुल
1: स्वागत है, आइए स्वागत,
0: बिल्कुल आएंगे। धन्यवाद
1: धन्यवाद, बहुत बहुत।

0: हेलो,
1: पांडे। हाँ,
0: शिवा देश पांडे कहाँ से?
1: मैं इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, इंदौर से बोल रहे हैं। कौन सा गीत
1: हाँ,
0: सुनना चाहते हैं आप?
1: आपकी परछाइयाँ।
0: ठीक है, आपकी परछाइयों का मिल जाएगा, हम जरूर सुनवाएंगे।
1: मुंडे मोहब्बत
0: आपकी परछाइयाँ मैं देख के बताती हूँ कौन सा गीत
1: है।
0: है। कौन सा?
1: मुंडे मोहब्बत
0: अच्छा, अगर मुझसे मोहब्बत है, बिल्कुल ये गीत आप बिल्कुल सुन पाएंगे कल के प्रोग्राम में। ठीक है, मैं कविता रावत बोल रही हूँ और कल।
1: मैं बीमार हुआ था।
0: हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी आवाज से मुझे लग रहा है, लेकिन आप अपनी बिल्कुल
1: आपको कभी आसमान
0: अब वो मिलेगा तो मैं कभी फिर सुनवाऊंगी, लेकिन आज आपकी परछाई फिल्म का ये गीत आप जरूर सुन सकेंगे कल 11 बजे, सुनिएगा।
1: मिला मालूम है।
0: जी, चलिए, धन्यवाद।
1: हाँ, ओके।
0: ओके।

0: बस बढ़िया हूँ दीदी, आपकी दुआ से बढ़िया हूँ, भगवान की कृपा से। और मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हो।
1: हाँ, हम बहुत बढ़िया हैं, आप सभी का प्यार हम सभी के साथ है
0: जी।
1: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा चित्रलेखा।
1: अच्छा,
0: और गाने के बोल रहेंगे, छा गए बादल नील गगन पे, घुल गया कजरा शान डाले।
1: वाह, बहुत ही प्यारा गीत है ये, मतलब बहुत कम लोगों ने इसको सुना होगा।
0: हाँ हाँ,
1: है ना
0: जी।
1: ठीक है, तो ये गीत जरूर मिल हमको मिल भी चुका है, और कल के प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।
0: जी बहन जी, कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
1: बिल्कुल कर लीजिए।
0: फूलचंद पाल जी है मनकारी से, दिनकर सिंह है चित्रकूट धाम से, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेमदास पावा जी हैं, और गोपाल ओझा जी हैं ककवासा मध्य प्रदेश से, और इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, नमस्कार
1: जी, नमस्ते, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते बहन जी, नमस्ते।
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: अच्छा मांगीलाल जी, कैसे हैं आप?

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। देर आए दुरुस्त आए, लास्ट कॉलर हो तुम। नंदनी
1: कॉलर हूँ मैं।
0: जी
1: ओ
0: हाँ।
1: माय गॉड, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ बताएं।
0: हाँ हो जाता है कभी कभी। और क्या
1: हाँ
0: हाल है तुम्हारे? बहुत टाइम बाद तुमसे बात हो रही है।
1: हाँ मैम, मैंने ना 6 महीने बाद कॉल किया है
0: ओ
1: आज, क्योंकि
0: बाप रे, 6 महीने तक इतना लंबा इंतजार। और बताओ और क्या हाल है?
1: ठीक है मैम। और आप कैसी हैं
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी? तो आज तो मैं सॉन्ग सुनूंगी। मूवी का नाम है भूतनाथ रिटर्न।
0: अच्छा भूतनाथ रिटर्न।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: और सॉन्ग उसमें है ना, पार्टी तो बनती है।
0: हाँ।
1: ये वाला सॉन्ग सुनेंगे और डेडिकेट आपको रानी दीदी को रहेगा।
0: हाँ जी ठीक
1: और मैं
0: है।
1: एक बात और कहना चाहती हूँ।
0: हाँ
1: एक दीदी थी वंदना उपाध्याय है ना, वो हमें याद कर रही थी, उनके लिए थैंक
0: अच्छा वंदना उपाध्याय,
1: यू जी। वो हमको एक दिन याद कर रही थी, तो उनके लिए थैंक यू।
0: लेकिन वो अनाउंसर पैनल में तो नहीं है?
1: नहीं, वो वहाँ की है, जबलपुर की। अनाउंसर
0: अच्छा अच्छा चलो
1: नहीं है, वो कॉलर है।
0: कॉलर।

0: है ना। चलो ठीक है ठीक है, तुम्हारे ये इन बातों के जरिए उन तक ये मैसेज पहुंच ही जाएगा, ठीक है नंदनी
1: जी।
0: चलो ओके बाय बाय
1: बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटल के बेस कैंप से श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों पर विकास के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में दिया जा सकता है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा की हैं। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। निज प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। विरासत फिल्म का गाना है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें हैं। संगीत है अनु मलिक का और गाने को लिखा है जावेद अख्तर ने। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने इस गाने को पसंद किया है।

ये फरमाइश हम तक आई है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा की। और आप सभी ने पसंद किया है फिल्म हद कर दी आपने का ये गाना, जिसमें आवाज है जसपिंदर नरूला और साथियों की। आनंद राज आनंद का संगीत है और गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये फरमाइश हम तक आई है खंडवा से संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म सोनी महवाल का ये गाना। आशा भोसले, शब्बीर कुमार की आवाज है, आनंद पक्षी के बोल है और संगीत है अनु मलिक का।

अब सुनिए फिल्म हिना का गाना आवाज लता मंगेशकर और साथियों की। रविंद्र जैन का संगीत है और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन ने इस गाने को पसंद किया है और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू ने इस गाने को पसंद किया है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजनीति का गाना, कविता सेठ और साथियों की आवाज है, समीर ने गाने को लिखा है और आदेश श्रीवास्तव का संगीत है। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बड़े और फिरन यादव, मुन्ना

राजनीति फिल्म का गाना था आदेश श्रीवास्तव की आवाज थी, संगीत भी था आदेश श्रीवास्तव का और गाने को लिखा था समीर ने और उसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की दूसरी कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक लड़का था गरीब, उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। भगवान को किस पते पे चिट्ठी लिखता? लिख दी, भगवान जी स्वर्ग लोक। बस उस चिट्ठी में लिखा, भगवान जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे को अपनी स्कूल की फीस देना है और किताब कापी खरीदना है, मेहरबानी करके 100 रुपए भेज दें। अब चिट्ठी साहब पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल दी। वो डब्बे से निकल के मुख्य डाकघर पहुंची। वहां पे जो जितने भी पोस्टमैन थे उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और बड़ा कुछ हंसी का माहौल बन गया। वो चिट्ठी जो थी वो सबसे बड़े जो पोस्ट

0: मास्टर थे उन तक पहुंच गई। उन्होंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था भगवान जी स्वर्ग लोक, मैं बहुत गरीब बच्चा हूं और मेरे को फलाना ये सब स्कूल के पैसे देना है और ये वो सब 100 रुपए व्यवस्था भेज दें करके। अब वो पोस्ट मास्टर विचार कर रहे हैं, सभी पोस्टमैन विचार कर रहे हैं कि देखो कितना प्यारा बच्चा है ये, इसने भगवान से 100 रुपए मांगे, अब कहां भगवान आएंगे, कहां उसको 100 रुपए देंगे। तो सभी डाक कर्मियों ने एक विचार किया, चलो भाई चंदा किया जाए। किसी के पास 5 रुपए थे, किसी के पास 2 रुपए थे, किसी के पास 10 रुपए थे, ऐसा करके चंदा किया गया। 75 रुपए चंदा हुआ। उस कार्ड में, पोस्ट कार्ड में उस बच्चे ने अपना पता जरूर लिखा था, भाई पैसे कहां पहुंचाए भगवान, तो पता जरूर लिखा था। तो सभी लोगों ने क्या किया, वो जब 75 रुपए जुड़ गए तो एक मनी ऑर्डर उस बच्चे को कर दिया। बच्चे को 75 रुपए का मनी ऑर्डर मिल गया, बच्चा खुश। उसने फौरन एक चिट्ठी लिखी भगवान को, पता वही, भगवान जी स्वर्गलोक, समाचार ये था, भगवान जी आपका भेजा हुआ 75 रुपए में 75 रुपए मुझको मिल गया है, मुझे विश्वास है भगवान जी कि आपने 100 रुपए भेजे होंगे लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वालों ने 25 रुपए खा लिए। मैं अपने कुत्ते के साथ एक दिन सुबह सुबह घूमने निकला, बाग बगीचे गया, यहां गया वहां गया, बड़ा अच्छा लग रहा था, कुत्ते को चैन में बड़ा अच्छा लग रहा था। अचानक एक सज्जन मिले मुझे रस्ते में, वो कहने लगे क्यों इस गधे को कहां ले जा रहे। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा देखो इतना बढ़िया कुत्ता है ये मेरे पास और ये आदमी उस कुत्ते को देख के गधा बोलता है। मैंने फौरन बोला भाई साहब ये कुत्ता है गधा नहीं है। तो भाई साहब मुझसे बोलते हैं मैं आपसे नहीं आपके कुत्ते से पूछ रहा हूं। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, उसके पिता ने उससे पूछा बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे क्या बनोगे। लड़का बोलता है बाबूजी
1: हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे।
0: तो उनके पिताजी बोलते वेरी गुड बेटे वेरी गुड, अच्छा जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम क्या करोगे।
1: हम जब डॉक्टर बन जाएंगे ना पापा तो हम लोगों का इलाज करेंगे, गरीबों का खूब खूब इलाज करेंगे, उनका सब गरीबों का हम फ्री में इलाज करेंगे।
0: तो उनके पिताजी बड़े चिंतित हो गए, उन्होंने जब वो लड़का बड़ा हुआ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। मेरे घर के सामने अचानक एक गधा मर गया, मैंने देखा गधा मर गया वो मेरे घर के सामने। तो संबंधित विभाग को मैंने टेलीफोन किया कि भैया ये यहां हमारे घर के सामने है वो गधा मर गया है, आप लोग मेहरबानी करके आके उसको उठाओ ले जाओ। तो संबंधित विभाग वाले टेलीफोन पे मेरे को क्या जवाब देते हैं, कहले भाई ऐसा है आपके घर के सामने मरा है तो क्रियाक्रम अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा, कोई धर्म की भी बात है, आपके सामने गधा मरा है आपके घर के सामने तो क्रियाक्रम आप कराओ। मेरा दिमाग खराब, मैंने टेलीफोन पे उसी समय उनको जवाब दिया, खैर वो क्या है कि क्रियाक्रम तो मैं गधे का कर लूंगा लेकिन मैंने ये सोचा कि उनके सभी रिश्तेदारों को पहले बता दूं, है ना। क्यों भीखू भिखारी यहां आओ, ये लो 1 रुपए मेरी तरफ से। और एक बात बताओ तुम आज यहां रेलवे स्टेशन के आसपास क्यों भीख मांग रहे हो, पहले तो तुम मांगते थे सब्जी मंडी में वहां सब्जी बाजार के आसपास। तो भीखू भिखारी मुझसे बोलता हाँ बाबू जी हम पहले वहां सब्जी बाजार में ही भीख मांगते थे, वो रेलवे स्टेशन के पास हम इसलिए आज भीख मांग रहे हैं कि परसों नरसों हमारी लड़की की शादी हुई तो दहेज में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा दामाद को, तो मैंने सब्जी बाजार वाला एरिया उसको दहेज में दे दिया।
2: और अब एक और हंसोड़, विनय जैन।
3: एक साहब अपने किसी निजी काम से बंबई पहुंचते हैं और अपने बंबई में रह रहे मित्र के घर पहुंच जाते हैं। सारा काम कार्यालय का निपटाने के बाद जैसे ही शाम को पहुंचे तो उनके दोस्त का घर और उनकी हालत देख के थोड़ा सा जो मेहमान है उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है कि साहब ये हमारा दोस्त है, इनका छोटा सा घर है, एक कमरे का फ्लैट और उसमें सोने के लिए एक ही पलंग, 4 बच्चों का घर, हस्बैंड वाइफ मिला के 6 लोग। तो जैसे ही शाम होती है सोने का समय आता है तो थोड़ा संकोच में मेहमान आ जाता है और मेजबान से बोलता है साहब हमें थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, आपका छोटा सा घर है और एक ही पलंग है, ऊपर से ये 4 बच्चे हैं। तो दोस्त तो फौरन जवाब देता है हाँ चिंता की कोई बात नहीं सब इंतजाम हो जाएगा। साहब भी थोड़ा आश्चर्य में कि इंतजाम कैसे हो जाएगा, जैसे ही रात में सोने का समय आता है तो मेजबान पहले अपने इकलौते पलंग पर अपने दोनों बच्चों को लिटाता है, दस मिनट बाद वो बच्चे सो जाते हैं तो दोनों मियां बीबी दोनों बच्चों को एक एक कंबल में लपेट के दीवार से टिका के खड़ा कर देते हैं। उसके बाद दूसरे दो बच्चों को पलंग में लिटाते थे, दस मिनट बाद वो दो बच्चे भी सो जाते हैं, उनको भी एक एक कंबल में लपेट के दीवार में टिका के खड़ा कर दिया जाता है। और मेहमान से मेजबान बोलता है,

0: अब आपके लिए पलंग तैयार है, आप सो जाए। तो मेहमान बोलता है कि और आप लोग? तो साहब बोलते हैं कि हम लोग की चिंता नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। भैया भी बहुत थके हारे रहते हैं, पलंग पर लेटते ही से सो जाते हैं। जैसे भैया की नींद खुलती है तो आप भी कंबल में लपटे दीवार से टेके खड़े रहते हैं और पति पत्नी दोनों सोते रहते हैं।
1: एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं। अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है।
0: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तकिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई। हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुंचते हैं तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर 2-3 लोगों के बाद आने वाला है। इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर 1, नमस्ते साहब, कहाँ से आए?
2: साहब इंडिया से आए हैं।
0: हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो?
2: साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, INDIA, मतलब इंडिया।
0: बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ।
2: दूसरे को बुलाया,
0: हाँ साहब कहाँ से?
2: फ्रॉम जापान।
0: जापान की स्पेलिंग जानते हो?
2: साहब JAPAN।
0: बोले शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया,
2: बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ।
0: अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाए, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहां भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने यह तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे, हाउ? इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए, कौवा काव काव,
2: कौवा काव काव।
0: बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए बिल्ली म्याऊं म्याऊं,
2: बिल्ली म्याऊं म्याऊं।
0: बोले शाबाश, बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए घोड़ा।
1: एक साहब स्कूटर में चले जा रहे थे, बड़े बढ़िया मजे से चले जा रहे थे, गाना वाना गाते हुए, हॉर्न बजाते हुए, अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका, ए स्कूटर वाले भाई गाड़ी रोको। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, किनारे किया अपने वाहन को और बातचीत चालू हो गई, किनकी? वाहन चालक की और ट्रैफिक पुलिसमैन की। ट्रैफिक पुलिसमैन बोलता है, हाँ ये गाड़ी ये स्कूटर आपका है? तो वो बोलते हैं, हाँ साहब हमारे स्कूटर है, साहब हमारे स्कूटर है, ये हम स्कूटर चलाता है। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आपके पास इस स्कूटर के चलाने का लाइसेंस होगा? तो वो सज्जन बोलते हैं, यस सर आई एम लाइसेंस होल्डर, हम लाइसेंस रखते हैं, अभी अभी आपको देता हूं अगर आप बोलते

0: तो ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है बिल्कुल दिखाइए, हमको चेक करना है। उन्होंने अपने दाहिने जेब में हाथ डाला, बाएं में डाला, आगे डाला, पीछे डाला जेब में हाथ, लेकिन लाइसेंस हो तो मिले ना, लाइसेंस तो था ही नहीं। तो वो सज्जन बोलते हैं साहब ऐसा ऐसा ट्रैफिक पुलिस मैन साहब है, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, वो क्या के लाइसेंस हम घर में छोड़ दिया साहब, हम घर में लाइसेंस छोड़ दिया है, अगर आप बोलता तो अभी ला के देता आपको और आपको दिखाता। तो ट्रैफिक पुलिस मैन समझदार था, उसने कहा नहीं गलत बात, आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, आपका चालान किया जाएगा। तो वो बोलते हैं सज्जन ऐसे छोड़ दो साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम हार्डली सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली आई एम विदाउट लाइसेंस दिस टाइम, अभी लेके आता सर देता। पुलिस वाला बोलता नहीं आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, आपका चालान किया जाएगा, आप अपना नाम बताइए। तो बोलते हैं साहब ऐसे हमारा नाम मत पूछो, आप घबरा जाएगा साहब, क्या क्या घबरा जाएगा, आप अपना नाम बताइए, आपका चालान किया जाएगा। वो फिर से बोलते हैं छोड़ दो साहब, हमारा नाम मत पूछो, आपको घबराहट होएगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों हार्ट अटैक हो जाएगा, आप अपना नाम बताइए, हम प्रेम से लिखेंगे उसको और तरीके से लिखेंगे। तो वो सज्जन स्कूटर वाले बोलते हैं अच्छा ट्रैफिक पुलिस मैन आप हमारा नाम लिखो, हाँ कह लेंगे बोलिए, हाँ लिखो, हाँ बोलिए, हाँ लिखो, हमारा नाम है श्री वेंकट मल्लिका रावर्जुन रावण राव वल्द सिंह सुन्नी चिन्नप्पा नागलिंगम वल्द मच्च कच्च वरा नरसिंह वामन पुरुष राम रामकृष्ण बुद्ध कलंक पिल्ले। तो पुलिस वाला क्या बोलता है, पुलिस वाला क्या बोलता है, ये तुम्हारा नाम है, अच्छा एक काम करो तुम जाओ यहाँ से।
1: साहब एक इंटरव्यू की तरफ लिए चल रहा हूँ, जहाँ दो लोग एक इंटरव्यू देने जाते हैं, जो एक इंटरव्यू देने में एक आदमी तो बहुत ज्यादा फटाफट जवाब दिया करता है, वो साहब की कुछ ऐसी कयामत कहिए कि जिस बात को आप उनसे पूछिए उसका जवाब तुरंत दे दिया करते हैं, और दूसरे जो साहब रहते हैं उनके साथ वो थोड़ा सा जवाब देने में घबराते हैं और कुछ डरपोक किस्म के, कुछ कम या मंद बुद्धि के रहते हैं तो वो बहुत घबराए हुए रहते हैं। तो जैसे घबराते हुए उनसे बोलते हैं
2: बोले भैया वो तो इंटरव्यू देने में बहुत डर लगता भैया, हम तो किनारे चुपचाप बैठ जाएंगे जाके।
3: तुम चिंता मत करो, तुम सबसे पहले हमारे साथ चलो, समझे, दिलेर वाला बोलता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और तुम जैसा हम तुमको बोल देंगे बैठा देंगे किनारे, तुम बैठे रहना, और जैसे ही मेरा नंबर आएगा इंटरव्यू का तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू दूंगा और तुम बिल्कुल वहीं बैठे रहना, और जैसे ही मैं इंटरव्यू दे के आऊंगा तो मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, तो उसके बाद तुम इंटरव्यू देना। डरपोक वाला भी थोड़ा सा तसल्ली में आ जाता है कि भैया इंटरव्यू देंगे तो हमको समझा देंगे कि हमको क्या बोलना है। सबसे पहले दिलेर जो हर बात का जवाब फटाफट दिया करता है, अंदर जाता है, उससे पहला सवाल किया जाता है, वो सवाल कुछ इस तरह रहता है
4: बोले साहब ये बताइए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, बोले साहब शाहजहां ने करवाया था, बोले साहब ये बताइए कि हिंदुस्तान कब आजाद हुआ, बोले साहब प्रयास तो 1857 से थे लेकिन 1947 में हो ही गया, बोले साहब ये बताइए कि मंगल ग्रह पर प्राणी बसते हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है, बोले साहब वैज्ञानिकों की भी यही राय है लेकिन क्या ऐसे आज तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। बोले ठीक है भैया, ये तो साहब फटाफट जवाब देते हैं, इनको बिल्कुल बाहर करो, बोले आप जाइए आपको बाद में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट जैसे डरपोंक वाला किनारे बैठा था तो उसको जाके इनके कान में पता नहीं क्या फूंक दिया, तो डरपोंक वाला भी सीना तान के अंदर इंटरव्यू देने के लिए तैयार। डरपोंक वाले से पहला सवाल किया गया, बोले हाँ साहब आपका नाम बताइए, बोले साहब शाहजहां। बोले आपका जन्म कब हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि, बोले साहब प्रयास तो 1857 से था, 1947 में हो ही गया। बोले भैया पागल आगल हो गए क्या, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, बोले साहब वैज्ञानिकों की भी यही राय है लेकिन इसे सिद्ध नहीं कर पाया।
5: दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, काहे भाई जे तो माँ मोड़ा समझो एक तो बड़ो होगा, अबे हम कितने साल पहले देखे थे तो कितने छोटो रहो नहीं, अब कितने बड़ो होगा। हाँ भाई का बताए जे मोड़ा हम आओ समझो कि बड़ो तो होगा है मल बिल्कुल ऐसो बिल्कुल भाई मोड़ा हम आओ सनक सो गाओ पगला सो होगा। काहे भाई का बात है तुम आओ तो मोड़ा पहले तो छोटो से दिखा तो अब इतो बड़ो होगा, का भाई बड़ो ना हुए तो बड़ो होगा नहीं तो जा संतोष कहाओ जो संतोष है तुम आओ। हाँ भाई संतोष ही तो है भाई भगवान का सामने इतो बड़ो होगा इतो से देखो तो हाँ इतो बड़ो कितो बड़ो होगा भाई इसकी उम्र कितनी।

कहला गई। अब जा समझ लो भाई कि इनकी उम्र तो हमें याद नहीं। नहीं भाई मतलब कौन से सन में पैदा हुआ जे पूछ रहे। नहीं भाई अब सनन तो हम नहीं जाने, अब भूल जाते हैं, इतनी उम्र हो गई। मैंने जे समझ लो कि जौन दिना हमारी सास मरी थी वो इतना जो संतोष भाव जा समझ लो कि उतने सास मरी है और इतने हमें संतोष भाव नहीं मगर ना वो हमने डेट

0: चोरी के सजा में इल्जाम में सजा भई थी तब ही हम आप संतोष भाव हमको संतोष भाव नहीं भाई तुझे समझोगी कौन से साल में कहलाओगी मैंने 74 में कहलाओगी 75 में कहलाओ नहीं भाई अब जो 75 और 78 तो हम नहीं जाने मगर जब समझ लो कि जो हमारे जेठ साहब के भी जेठ लगते ना तो वो जेठ को हमारे उनके घर में वो फांसी लगा के उनकी बड़ी बड़ी लड़कियां खत्म हो गई थी तब हमें संतोष बहुत हो मैंने जब जब जो घटनाएं घटी हैं हमारे घर में कि कौन को फांसी लगवा के मारो कि कौन जिस हमारे हथकड़ी में चलोगे अंदर तो ये जैसे जो काम भर थे हमें संतोष भाव
1: दो व्यापारी जो एक गुड़ और राशन का सामान बेचा करता था और दूसरा जो सिर में और हाथ पैर में लगाने वाले तरह तरह के तेलों का व्यापार किया करता था इन दो व्यापारियों की एक छोटी सी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दोनों अपनी अपनी दुकान में बैठे रहते हैं और ग्राहकों की कमी से परेशान रहते हैं ना तेल वाले के पास तेल का ग्राहक आ रहा है ना गुड़ वाले के पास गुड़ का ग्राहक आ रहा है अचानक दोनों एक ऐसा एक प्लान बनाते हैं कि गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है
2: देखो तेल वाले तुम भी अपनी दुकान में खाली बैठे रहते हो और मैं भी अपनी दुकान में खाली बैठा रहता हूँ तो क्यों ना एक काम किया करें हम तुम्हारी दुकान में आएंगे ग्राहक बनकर और तुम हमारी दुकान में आओगे ग्राहक बनकर उससे क्या होगा
3: अरे साहब उससे क्या होगा चार लोग देखेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि भैया की दुकान में ग्राहक आते ही आते रहते हैं
1: ये आइडिया दोनों को जम जाता है तो गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है कि पहले तुम हमारी दुकान में कुछ खरीदने के लिए आओ तेल वाला ऐसे ही उसकी दुकान में आता है और उससे सवाल करता है
2: क्यों भाई साहब ये गुड़ कैसे दिए ये साहब तरह तरह के गुड़ हैं ये गुड़ 40 रुपए किलो है ये गुड़ 30 रुपए किलो है और ये वाला गुड़ 35 रुपए किलो है
1: तो एक काम कीजिए साहब ये वाला गुड़ हमको दे दिए 2 किलो बोतल में
3: बोतल में अरे यार तेल वाले व्यापारी भाई तुम्हारी बुद्धि भी बोतल ही में है तुम तेल बेचते हो तो तुम्हें हमेशा बोतल याद रहती है गुड़ कभी बोतल में बेचा जाता है अरे गुड़ के लिए आदमी घर से थैला लाता है थैला थैला समझे तुमको ये बोलना चाहिए कि भाई हमको थैले में गुड़ चाहिए तो तुम बोल रहे हो कि बोतल में है तुम एक फिर से जाओ अब फिर से आना हमारी दुकान में हम बैठे अब सुधार के बोलना दोबारा तेल वाला आता है गुड़ की दुकान में फिर वही सवाल करता है
2: साहब वो गुड़ चाहिए था हाँ कितना चाहिए था कौन सा चाहिए था साहब ये वाला क्या भाव आइए 30 रुपए किलो है साहब ये वाला 2 किलो दे दो बोतल में
3: अरे यार फिर बोतल में बोल दिया तुम बोतल क्यों जोड़ते हो साथ में एक बात समझ में नहीं आती तुम व्यापारी हो तेल के हैं तो तुम अच्छा एक काम करो तुम हमारी सीट में आके बैठो हमारी दुकान में तुम बैठो और हम अपनी ही दुकान में तुम्हारे सामने आके ये जाके सवाल करते हैं देखो कैसे बोलते हैं देखो तुम ऐसे बैठ जा ऐसे हाँ अब देखो हम आते हैं हम बोतल बोलेंगे ही नहीं हम कैसे बोलेंगे देखो
2: हाँ भाई साहब ये गुड़ कैसे दिया
3: गुड़ साहब 20 रुपए किलो
2: हाँ तो 2 किलो बुड़ दो 2 किलो तौल दो बस
3: तो तेल वाला फौरन जवाब देता है बोतल लाए हो
4: हंसना मना है
5: हंसना मना है
4: ये हंसना मना है
5: हंसना मना है
4: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है चुटकुले सुनना सुनाना संजय गायकवाड़ की आदत में शुमार है मगर अंदाज बड़ा अलग सुनेंगे तो मजा आ जाएगा आइए सुनते हैं
6: अभी शादियों का सीजन चल रहा था साहब तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया श्रीवास्तव जी के यहाँ रिसेप्शन हमें अटेंड करना था मैं अपने दोस्त के यहाँ गया मैंने दरवाजे पे आवाज दी तिवारी जी तिवारी जी तो दरवाजा खोला तिवारी जी रात को 8:30 बजे सो के उठे अरे हमने ठीक से तो हो जाओ यार कहो भाई कैसे अरे हमने कहा यार श्रीवास्तव जी क्या रिसेप्शन में चलना नहीं है क्या तो तिवारी जी हमसे कहने लगे यार भैया हम ना चल सकेंगे यार हमें क्या है चश्मे के बगैर कुछ दिखता नहीं है हैं शाम के समय हमें रतौंधी आती है तो क्या है हमारा चश्मा हो गया फूट गया है तो इसलिए हम तो चल नहीं सकेंगे अरे हमने कहा हद कर रहे हैं तिवारी जी आप

0: या साथ में चलो, है कोई गिद्ध भोजन तो है नहीं, डाइनिंग टेबल पे भोजन लगा रहेगा, आप चलना बैठ जाना हमारे बाजू में और चल के भोजन शुरू कर देना। तो तिवारी जी हमसे बोले, लेकिन यार भैया ये कैसे पता चलेगा यार कि सबने शुरू कर दिया। हमने कहा हद करते हो आप, जब सब लोग शुरू कर देंगे तो धीरे से हम आपको कोहनी मार देंगे, आप समझ लेना मामला शुरू हो गया है, हाथ का इशारा हम आपको कर देंगे धीरे से। तो तिवारी जी बोले हाँ यार ये बहुत बढ़िया स्टाइल है। सभी लोग मेहमान आ चुके थे श्रीवास्तव जी के यहाँ, हम पहुंचे साथ में तिवारी जी पहुंचे, सभी की थालियों में मीठा मिष्ठान रखा जा चुका था। उसी वक्त मेरे गले पे यहाँ एक मच्छर बैठा, मैंने मच्छर को भगाया, बाजू में तिवारी जी बैठे थे, धोखे से कोहनी लग गई। भैया क्या समझे कि शुरू, हमें बड़ा अपमान लगा, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, तो ये क्या समझी कि लोग जल्दी जल्दी खा रहे, तो जो जल्दी जल्दी खाने लगे और ज्यादा अपमान। हमने मना करने के लिए इनको तीन कोहनी मारी, तो जो कहते कहा भैया गायकवाड़ का लूटा मारी बच गई का। अब साहब एक बहुत अच्छा व्यंग मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय चुनाव की सरगर्मी है, एक नेता जी अपने चार साथियों के साथ जनसंपर्क के लिए निकले और तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना और वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। भैया जी याद रखना 24 तारीख को भूलना नहीं, बहन जी हाँ आप भी याद रखना, भाई लालटेन याद रखना भूलना नहीं, माता जी 24 तारीख को भूलना नहीं। तो माता जी न जाने कौन से मूड में थी, अचानक कहने लगी,
1: अरे चारे तुम्हारे ऊपर से तो हमारा विश्वास ही उठ गया, 5 साल में एक बार तो सकल दिखाते हो और नेता बन जाने के बाद में सब बिल्कुल जनता का ध्यान ही भूल जाते हो, और हमें तो बिल्कुल तुम लोग को कोई को वोट नहीं देना, सबने अपना अपना घर भरा है और हम किसी को वोट नहीं देंगे, समझ गए ना, हमें तो भ्रष्टाचारियों से बिल्कुल सख्त नफरत है।
0: तो नेताजी को गुस्सा आ गया, लेकिन उनने अपनी नेता बुद्धि दौड़ाई और बहुत सहज तरीके से माता जी के सामने हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं माता जी आप ये कैसी बात कर रही हैं, हैं आप बताइए, देश में ये इतने सारे नेता हैं, ये 5 उंगलियां हैं मेरे हाथ की, सब एक समान है क्या, नहीं है, हैं देखो ऐसे देश में बहुत सारे नेता हैं, तो कोई लोग भ्रष्टाचारी है कुछ लोग नहीं है, और जो नहीं है वो ही तो हम है। आप तो 24 तारीख को हमारी को वोट दो। अब व्यंग्य पे आइए साहब, बिल्कुल मौलिक व्यंग दे रहा हूँ। माता जी नेताजी की बात सुन के कहने लगी,
1: बेटा मजबूरी महिला को बता रहे हो कि जे उंगलियां छोटी हैं कि बड़ी हैं, मैंने भी जे बाल धूप में सफेद नहीं करे, मैं भी जानती हूँ कि उंगलियां छोटी बड़ी हैं, लेकिन आज से तुम भी इतना जान लो कि जब खाती हैं तो सब खट्टी तो हो जाती हैं।
0: और साहब मिमिक्री का एक छोटा सा मौलिक आइटम मैं पेश कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में कुत्ता पाल के रखा है, हम लोग मराठी भाषा में बात करते हैं, हमारे घर का कुत्ता। हमारे हिंदुस्तान का संस्कार देखे कि हमारी भाषा को देख सुन के मराठी बोलने लगा। हमारे घर के थोड़ा सा आगे एक डेनियल परिवार रहता है, क्रिश्चियन फैमिली रहती है, उनके घर में थ्रू आउट अंग्रेजी का चलन है, उन लोग अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। उनके घर का कुत्ता जो है साहब, उनकी अंग्रेजी भाषा को देख सुन के अंग्रेजी बोलने लगा। सुबह का वक्त मैं अपने घर के कुत्ते को घुमाने के लिए निकला और डेनियल साहब अपने घर के कुत्ते को घुमाने के लिए निकले, हम और डेनियल साहब आपस में मिले तो बातें शुरू हो गई, लेकिन मेरे घर के कुत्ते को पहली बार डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने देखा तो उसने अंग्रेजी में प्रश्न किया और हमारे घर के कुत्ते ने मराठी में जवाब दिया। ये अंग्रेजी प्लस मराठी, ये मौलिक आइटम मिमिक्री का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए साहब। पहले सुबह का वक्त मेरे घर का कुत्ता डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने जैसे ही हमारे घर के कुत्ते को देखा तो अंग्रेजी में प्रश्न किया, कौन हो तुम? हमारे घर का कुत्ता तुरंत मराठी में बोला, भाऊ।
2: और दोस्तों

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण एवं स्कूलों का युक्तिकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की नामांकन भरने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ नतीजों की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थस्थलों पर विकास के लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटल के बेस कैंप से रवाना हुआ। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा और बीसीसीआई ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

गलतियों पर रोने से कुछ नहीं बदलता, उनसे मिली सीख जिंदगी बदल सकती है। अतीत से सबक लेकर वर्तमान को जीना ही एक बेहतर भविष्य की नींव है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का महिला सभा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी बहन मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बिल्कुल सही बात है, यदि हम अपने वर्तमान में जीना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम सुखी हो जाएंगे। ना तो आने वाले कल का सोच करें, ना ही बीते हुए कल का अफसोस, मात्र वर्तमान को सुधारने का प्रयास करें। और अगर वर्तमान सुधारना है तो निश्चित रूप से हमें एक स्टार्टअप की जरूरत होती है। और स्टार्टअप अगर छोटे से उद्योग से हो, अपने घर से हो, तो हम महिलाओं के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 16 जनवरी 2016 को देश में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरू किया गया था। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को

आती 3 वर्षों तक आयकर यानी इनकम टैक्स में छूट और एंजल टैक्स से छूट मिलती है। पर्यावरण और श्रम कानूनों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्वप्रमाणन की सुविधा भी दी जाती है। फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के जरिए वित्तीय और सीड फंडिंग का प्रावधान भी है। नैनो स्टार्टअप की पात्रता भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के रूप में स्थापित होना चाहिए। कंपनी के रजिस्ट्रेशन या स्थापना को 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। कंपनी नए उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं का विकास, विस्तार या व्यवसायीकरण की इस दिशा में काम कर रही हो। स्टार्टअप इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करना है। नए स्टार्टअप्स के आने से कई उद्योग स्थापित होंगे जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी कम होगी। ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा, सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में हर युवा को, हर महिला को लाभ मिलेगा जो काम करने का इच्छुक है। घरों से ही लघु कुटीर उद्योग संचालित करना चाहते हैं उन युवाओं को और उन महिलाओं को भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के लोन मिल पाए और अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच पाएंगे। जब भारत में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हस्त निर्मित वस्तुओं को ऑनलाइन बाजार में भेजा जाएगा तो इससे भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और सरकार की आय भी बढ़ेगी। स्टार्टअप इंडिया सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक है जिसने स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहनों, आज जरूरत है स्टार्टअप को विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्रोत्साहित करने की। आज व्यावसायिक शिक्षा को व्यवहार में उतारने की जरूरत है जिससे महिलाओं में और युवाओं में उद्यमशीलता का विकास हो। वे इसकी अहमियत को समझें और अवसरों का लाभ उठाएं। सरकार को आवश्यकता है कि स्टार्टअप से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर प्रसार हो, सरकारी निजी बैंकों का सशक्तिकरण हो जिससे ऋण प्राप्त करने में आसानी हो, हर ग्रामीण शहरी क्षेत्र के युवा, अशिक्षित महिला, पुरुष को इस योजना की बारीकियों के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वे भविष्य में रोजगार का निर्माण कर सकें। मैंने ये तो थी संक्षिप्त सी चर्चा और अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं फिल्म आशिकी 2 में अरिजीत सिंह की आवाज में ये सुरीला सा गीत। गीत और संगीत मिथुन का है।

0: बहनों, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, हमारा समाज को देखने का नजरिया, हमारी चारों ओर फैली हुई विरक्तियाँ, प्रकृति का मनोरम दृश्य जो आत्मा को छू जाता है, हमारी भावनाएं और हमारा मानसिक चित्रण जब कलम के सहारे कागज पर उतर आता है तो वह कविताओं का रूप ले लेता है। और ये कविताएं उस कवि की मनोदशा को व्यक्त करती हैं, उसकी सोच को निखारती हैं, उसकी भावनाओं को व्यक्त करती हैं जो उन्हें लिखता है। तो चलिए, ऐसी ही कुछ कविताओं का संग्रह लेकर आए हैं हम अपने कार्यक्रम काव्य पाठ के अंतर्गत। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कवित्री सौम्या श्रीवास्तव से उनके विचार उनकी कविताओं के रूप में।
1: नमस्कार, मैं सौम्य श्रीवास्तव आज आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से आपके बीच एक गीत लेकर आई हूँ। ये गीत युवाओं के उत्साहवर्धन का गीत है, प्रोत्साहन का गीत है। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा मन बहुत उदास होता है, मन में अवसाद होता है और तरह तरह के विचार मन में आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कभी आप उत्साहवर्धन का गीत गुनगुना लेते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं इस अवसाद से बाहर आ जाता है। लीजिए, मैं आपको गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ। जब क्षितिज

जब दिशाएं संशयों की गर्जनाएं गा रही हूँ, तब स्वयं दीपांकुरित हो ज्योति बन मन, तब स्वयं दीपांकुरित हो ज्योति बन मन, दीप्ति की संभा

हिमालय सा अचल बन धैर्य धर्मन, तब हिमालय सा अचल बन धैर्य धर्मन, होके अविचल साधना।

और निराशा मौन होकर चेतना संघारती हो, तब पुनः उठकर नई हुंकार भर मन, तब पुनः उठकर नई हुंकार भर मन, नव विजय नव आस था।

हर अंतिम सत्य ना है, पंथ का व्यवधान भर है, स्वेद पीड़ा और साहस ही विजय का मूल स्वर है। हर अंतिम सत्य ना है, पंथ का व्यवधान भर है, स्वेद पीड़ा और साहस ही विजय का मूल स्वर है। उठ स्वयं इतिहास के नव पृष्ठ रच मन, उठ स्वयं इतिहास के नव पृष्ठ रच मन, नव विजय की कामना के गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ। जब प्रलोभन स्वर्ण मृगवन मार्ग बाधित कर रहा हो, और अधर्मी पथ सरल कर मोह जागृत कर रहा हो, जब प्रलोभन स्वर्ण मृगवन मार्ग बाधित कर रहा हो, और अधर्मी पथ सरल कर मोह जागृत कर

कर शांत हो मन, धैर्य के सद्भावना के गीत गाओ, धैर्य के सद्भावना के गीत गाओ, गीत गाओ, गीत गाओ, गीत गाओ, मन प्रखर हो।

जब हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, लेकिन जीवन का नाम ही चलते रहना है, तो हमें उन चुनौतियों को, उन संघर्षों को पार करके बस आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। इसी पर केंद्रित मेरा एक गीत है, सुनिएगा। सैकड़ों तूफान होंगे, सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा, सैकड़ों तूफान होंगे, बन

छूट जाएंगे महल सब, सिर्फ मृग तृष्णा मिलेगी। छूट जाएंगे महल सब, सिर्फ मृग

बहनों, अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ सौम्या श्रीवास्तव से। बहनों, जितना जरूरी गीत संगीत और मनोरंजन है हमारे मन और मस्तिष्क के लिए, उतना ही जरूरी योग और व्यायाम है हमारे शरीर के लिए। जी हाँ, आज की इस आधुनिक दुनिया में अनगिनत महिलाओं को लगातार अपने करियर, पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच उलझना पड़ता है, जिससे उनके पास अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं बचता। महिलाओं के लिए योगासन तनाव कम करने, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करने, अच्छी नींद को बढ़ावा देने और सकारात्मक स्वास्थ्य आदतों को विकसित करने में मदद करते हैं। बहनों, नियमित रूप से योग करने से संतुलन और लचीलापन बेहतर होता है, हमारा पोस्चर सुधर जाता है। महिलाओं में किशोरावस्था से लेकर मातृत्व और मेनोपॉज वाली उम्र से लेकर बुढ़ापे तक कई दौर से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग जहां शारीरिक तौर पर संतुलन बनाए रखता है, तो वहीं इससे मानसिक तौर पर शांति भी मिलती है। मैंने योगासन प्राणायाम महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक करता है, बल्कि मानसिक परिवर्तन और शारीरिक असंतुलन जैसी आने वाली समस्याओं से निपटने में भी बेहद कारगर है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छे व्यायामों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग का संतुलित मिश्रण जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। योग जैसे त्रिकोणासन, वीरभद्रासन करके हम अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। मोटापा, थायराइड और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में भी योग और प्राणायाम अत्यंत लाभकारी हैं। बहनों, हम सभी को रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार 20 से 30 मिनट योगासन और प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। नियमित योगाभ्यास से मांसपेशियों का तनाव कम होता है, जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है और शारीरिक मुद्रा में सुधार होता है। योग ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की धड़कन को नियंत्रित कर हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में भी मददगार है। बहनों, ये शरीर की मांसपेशियों को टोन करता है, सहन शक्ति बढ़ाता है और पाचन में सुधार करके वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। ध्यान और श्वास नियंत्रण मस्तिष्क को शांत करते हैं, जिससे फोकस और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और गठिया, माइग्रेन जैसी पुरानी समस्याओं में भी योग बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो बहनों, योग करें, निरोग रहें, और जब आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगी तो निश्चित रूप से योग का जादू आपके सर चढ़कर बोलने लगेगा। आप खुद स्वतः इसके लिए समय को चुराने लगेंगी और योग में रंगीली हो जाएंगी।

हम सुन रहे थे फिल्म कुदरत में लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीत आरडी वर्मन का था। मेरे देखिए ना, हम सभी गर्मियों में अपने पूरे साल के लिए अनाज का भंडारण करते हैं, और यदि उसका भंडारण सही तरीके से ना करें तो उसमें घुन या कीड़े लग सकते हैं, और इसका विशेष ध्यान हमको रखना ही पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो बाद में हमारा अनाज घुन जाएगा। अनाज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नमी और तापमान को नियंत्रित रखना। अनाज में 10% से कम नमी होनी चाहिए। भंडारण के डिब्बों या कमरों को पूरी तरह एयर टाइट यानी हवा बंद रखें, और बोरियों को जमीन या दीवारों से सटाकर ना रखें। मैंने अनाज को 2 से 3 दिन धूप में सुखाएं ताकि उसकी नमी का जो स्तर है वो 10% से नीचे आ जाए। नमी होने पर फंगस और कीड़े जल्दी लगते हैं। नीम की पत्तियां या नीम के पाउडर का उपयोग भी हम कर सकते हैं जो कीड़ों को दूर भगाता है। आप अनाज में थोड़ा सा सरसों का तेल या सूखी लकड़ी की राख भी मिलाकर रख सकते हैं। यदि आप बड़ी मात्रा में भंडारण कर रहे हैं तो कीटनाशक गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि गोली रखने के बाद कंटेनर या कमरा पूरी तरह से एयर टाइट हो। गोदाम या भंडारण कक्ष के सभी संभावित रास्तों को जाली या सीमेंट से बंद कर दें। भंडार गृह में पर्याप्त हवा के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तापमान सामान रह सके। अगर आप बहनों इतनी सावधानी के साथ अनाज का भंडारण करेंगी तो निश्चित रूप से आपका अनाज पूरे साल सुरक्षित और पौष्टिक रहेगा। बहनों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं। चलते चलते आपके साथ 2 पंक्तियां। जल्दी जज करना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल। बस कोशिश इतनी हो कि लोगों को सुन सकें, सिर्फ देखकर कोई राय ना बनाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जयंत विश्वकर्मा के स्वर में साक्षरता बेटी पढ़ाओ गीत।

जयंत विश्वकर्मा के स्वर में अभी आपने सुना साक्षरता बेटी पढ़ाओ गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में साक्षरता गीत।

अभी आपने सुना किशन प्रसाद रैकवार के स्वर में साक्षरता गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए सत्यनारायण तिवारी के स्वर में ये भजन।

सत्यनारायण तिवारी के स्वर में अभी आपने सुना कृष्ण भजन। लीजिए अब सुनिए एक भजन, स्वर सत्यनारायण तिवारी का है।

0: रिफ्रेशिंग म्यूजिकल ब्रेक।
1: शाम सुहानी हो।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म त्रिशूल का गीत। गीत साहिर का है और संगीत है खयाम का।

जूली। इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद में 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पावन अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर समस्त शिवभक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की तरह यह यात्रा सभी के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया, जिसका अर्थ है कि जिन भगवान के स्वरूप को वाणी, बुद्धि और कठोर तपस्या से भी नहीं जाना जा सकता, वे केवल भक्ति भाव से प्राप्त होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा बर्फानी आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं। अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। 57 दिनों की ये पावन यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर सम्पन्न होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। कर्नाटक के बेंगलुरू के मदापट्टना इलाके की ग्रेनाइट खदान में कल हुए हादसे में प्रदेश के अनूपपुर जिले के 5 मजदूरों सहित कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जांच के निर्देश दिए हैं और खदान मालिक ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख तथा घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर सहमति जताई है। प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी घटना की जानकारी मांगी है और कर्नाटक प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सेहा क्षेत्र में बाघिन 30652 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ है। वन विभाग की विशेष टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मानसून कल उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज खंडवा और हरदा के लिए मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आज से भील चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की शलाका प्रदर्शनी शुरू हुई। शिवपुरी के नरवर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 6 स्थानों से 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की गई। बुरहानपुर के निर्माण रेंज के डीआईजी ने अपराध समीक्षा की बैठक ली और महिला अपराधों तथा साइबर क्राइम पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पन्ना जिले के अजगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चों सहित एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वो खूबी बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च कर

0: के स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए, रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की

0: 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट

0: टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म बेवफा से। आवाज अभिजीत की है, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। पसंद भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेवफा का ये गीत।

गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म खून भरी मांग का ये गीत, जिसे आवाज दी है साधना सरगम ने, बोल इंदिवर के हैं और संगीत है राजेश रोशन का। लीजिए सुनिए।

इस समय आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और कार्यक्रम में अब बारी है आपके पसंद के एक और गीत की। फिल्म खिलाड़ी का गीत सुनिए आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। गीत लिखा है महेंद्र दहलवी ने और इसे संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म खिलाड़ी का ये गीत।

रंजन, रितिका, सरोज, आरती और ऋषभ राजावत ने सुनना चाहा है फिल्म कसूर का गीत, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। नदीम श्रवण के संगीत से सजा ये गीत लिखा है समीर ने। लीजिए सुनिए।

राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, रिया स्वीटी चित्र

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पावन अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर समस्त शिवभक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की ये यात्रा सभी के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा बर्फानी आस्था भक्ति और सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के मदापट्टना इलाके की ग्रेनाइट खदान में कल हुए हादसे में प्रदेश के अनूपपुर जिले के 5 मजदूरों सहित कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। मौसम विभाग ने आज खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक की बारिश हो सकती है। और भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीत और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में। रात 9:30 पर कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत आज सुनिएगा ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं, इस विषय पर आलोक मिश्रा से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है मनीष गजभिये। और क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00 से। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए न्यूज हेडलाइंस जिन्हें हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: भेज दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। इस्पात मंत्रालय इस माह की 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां और संगठन इस दिन इस्पात आयात से संबंधित अपनी समस्याओं की चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय इस क्विज में भाग लेने के लिए विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 1 जुलाई से 25 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। जी आप सुनते हैं युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

साथियों स्वागत है आप सभी का हमारी युववाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवन शैली अपना कर हम लंबे समय तक निरोगी और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में कि संतुलित आहार किस प्रकार हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। साथियों संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इससे उनकी सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। साथियों संतुलित आहार मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। ये स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। हरी सब्जियाँ, फल, दालें और दूध शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। ये शरीर के सभी अंगों के लिए लाभकारी होते हैं। साथियों पर्याप्त मात्रा में पानी और रेशेदार भोजन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। साथियों संतुलित आहार त्वचा, बाल और आंखों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, इससे व्यक्ति अधिक स्वस्थ और आकर्षक दिखाई देता है। साथियों संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है। संतुलित आहार अपनाकर हम स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य की सबसे सरल और प्रभावी आदत है। साथियों ये तो थी एक छोटी सी जानकारी स्वास्थ्य सुझाव से संबंधित। कार्यक्रम श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। साथियों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून सन 2020 को की गई। ये योजना शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए शुरू की गई थी। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराना है, इससे वे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकें। साथियों ये योजना रेहड़ी पटरी वाले, फल सब्जी विक्रेता, चाय नाश्ता विक्रेता और अन्य छोटे व्यापारियों के लिए है। इससे लाखों लोगों को लाभ

मिलता है। साथियों, इस योजना के तहत पहली बार 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। समय पर भुगतान करने पर अधिक राशि का ऋण भी मिलता है। साथियों, समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7% तक ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इससे उनकी आर्थिक बचत होती है। साथियों, ये योजना डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करती है। डिजिटल लेन देन करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। साथियों, ये योजना छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करती है। इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। साथियों, ये योजना छोटे व्यापारियों को साहूकारों के ऊंचे ब्याज से बचाती है, उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इस योजना से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। साथियों, ये योजना गरीब और छोटे व्यापारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करती है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे सड़क विक्रेताओं के लिए एक प्रभावी और लाभकारी योजना है। ये उन्हें आर्थिक सहायता, सम्मानजनक आजीविका और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे से ये गीत, जिसमें आवाज थी अरमान मलिक और पलक मुछाल की, गीतकार थे मनोज यादव और संगीत से सजाया था अमाल मलिक ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम सुनवा देते हैं आपको वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अदिति शुक्ला।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा तो बहुत कम होती है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। हमारा आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य और युवा। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में शारीरिक स्वास्थ्य का विचार आता है। हम संतुलित भोजन, व्यायाम,

और बीमारी से बचाव की बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारा मन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा शरीर। यदि शरीर स्वस्थ हो और मन परेशान हो तो जीवन में खुश रहना कठिन हो जाता है। आज का युवा पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, अधिक जागरूक और तकनीक से अधिक जुड़ा हुआ है। उसके पास अवसर भी अधिक हैं और सपने भी बड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां और दबाव भी बढ़ गए हैं। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, कंपटीशन, पारिवारिक अपेक्षाएं, आर्थिक समस्याएं और सोशल मीडिया का प्रभाव, ये सभी बातें युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल मानसिक बीमारी का ना होना नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हम तनाव से कैसे निपटते हैं, दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं और जीवन के फैसले कैसे लेते हैं, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। दोस्तों, युवा अवस्था जीवन का एक ऐसा चरण है जहां व्यक्ति कई बदलावों से गुजरता है। ये वह समय है जब सपने आकार लेते हैं, पहचान बनती है और भविष्य की दिशा तय होती है। लेकिन यही समय कई बार भ्रम, असुरक्षा और तनाव का कारण भी बन जाता है। आज का युवा सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता की दौड़ इतनी तेज हो चुकी है कि कई बार वह स्वयं को ही भूल जाता है। हर जगह प्रतियोगिता है, स्कूल और कॉलेज में अच्छे अंक लाने की, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता लाने की और भविष्य को लेकर अनिश्चितता युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। कई युवा ये महसूस करते हैं कि उन्हें हर हाल में सफल होना है। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो निराशा और आत्मविश्वास की कमी पैदा होने लगती है। धीरे धीरे ये तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का भी रूप ले सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में से एक शामिल हो गया है। इसने पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों की पहुंच में ला दिया है और इसके अनेक सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जब युवा लगातार सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां, खुशहाल पल और सफल जीवन शैली देखते हैं, तो अनजाने में वे अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि बाकी लोग उनसे अधिक सफल, ज्यादा खुश और बेहतर जीवन जी रहे हैं। जबकि सच ये है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें और वीडियो किसी व्यक्ति के जीवन का केवल एक हिस्सा होती हैं, पूरी कहानी नहीं। हर चमकती तस्वीर के पीछे संघर्ष की एक लंबी यात्रा होती है। हर उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और कई चुनौतियां छिपी होती हैं। किसी के जीवन में सब कुछ हमेशा खुशहाल नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर पल को अपनी वास्तविकता का पैमाना बनाना या उसके आधार पर अपने जीवन का आकलन करना उचित नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और वास्तविक जीवन सोशल मीडिया की दुनिया से कई अधिक अलग होता है। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाने में संकोच नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद महसूस करे तो वो अक्सर इसे छुपाने की कोशिश ही करता है। हमारे समाज में अब भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सच ये है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। कभी कभी युवा अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं करते। वो सोचते हैं कि लोग उन्हें नहीं समझेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। परिणाम स्वरूप वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ये अकेलापन धीरे धीरे मानसिक तनाव को

0: और बढ़ा सकता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कठिन दौर से गुजरता है। उदासी, निराशा या चिंता महसूस करना सामान्य बात है, लेकिन यदि ये भावनाएं लंबे समय तक बनी रहें और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगें, तो हमें सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बात साझा करें जिस पर आप विश्वास करते हों। कई बार केवल अपनी बातें कह देने से भी मन का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, पर्याप्त नींद लें। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। नींद की कमी मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। सुबह की सैर, योग, खेल कूद या कोई भी शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने में मदद करती है। तीसरा, संतुलित भोजन करें। हमारा खान पान भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और मन को भी स्वस्थ रखने में सहायता करता है। चौथा, सोशल मीडिया और मोबाइल के उपयोग पर नियंत्रण रखें। दिन का कुछ समय डिजिटल उपकरणों से दूर बिताइए। परिवार के साथ समय बिताइए, किताबें पढ़िए, संगीत सुनिए या प्रकृति के बीच कुछ समय गुजारिए। अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं को पहचानिए। हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति की यात्रा भी अलग है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। श्रोताओं, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता तो बढ़ रही है। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों में इस विषय पर चर्चा अब होने लगी है। ये एक सकारात्मक बदलाव है। जितना अधिक हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, उतना ही अधिक लोग सहायता के लिए आगे आएंगे। युवाओं को ये समझना होगा कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन में असफलताएं भी आती हैं, चुनौतियां भी हैं और कठिन परिस्थितियां भी आती हैं। लेकिन इन सब के बीच स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक शांति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बाहरी उपलब्धियां भी हमें सच्ची खुशियां नहीं दे पाएंगी। दोस्तों, याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। यदि कभी आपको लगे कि जीवन कठिन हो रहा है, तो सहायता मांगने में संकोच न करें। अपने मन की बात कहिए, अपने भावनाओं को स्वीकार कीजिए और स्वयं को समय दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ समाज और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखता है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अदिति शुक्ला। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपका करवा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खामोशियां से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अरिजीत सिंह की, गीतकार थी रश्मि सिंह और संगीत से सजाया था जीत गांगुली ने। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी ताजमहल ऐतिहासिक स्थल विषय पर। साथियों, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ये सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। साथियों, ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। इसकी सुंदर नक्काशी और कलाकारी दुनिया भर के लोगों को

को आकर्षित करती है। इस स्मारक का निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें हजारों कारीगरों और कलाकारों ने योगदान दिया। साथ ही ताजमहल की वास्तुकला मुगल, फारसी और भारतीय शैलियों का सुंदर संगम है। इसकी भव्यता देखने योग्य है। साथ ही वर्ष 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, हर वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साथियों, सूर्योदय और चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य और भी मनमोहक दिखाई देता है। इसकी चमक सभी को आकर्षित करती है। ताजमहल भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास की समृद्ध पहचान है। ये विश्व में भारत की गौरवशाली छवि प्रस्तुत करता है। साथियों, ताजमहल का संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। साथियों, ताजमहल केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि प्रेम, कला और भारतीय संस्कृति का अमर प्रतीक है। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में स्थान दिलाते हैं। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी ताजमहल ऐतिहासिक स्थल विषय के बारे में। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है प्रोविजनरी ऑफिसर। पदों की संख्या है 1500। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.bank.in पर विजिट करें। साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: श्रोता, अभी आपने सुना तोची रैना और रितु पाठक की आवाज में मैक्सिमम फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे शब्बीर अहमद ने और संगीत अमजद नदीम का था। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों

0: का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रेखा भारद्वाज की आवाज में डेविड फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे सिद्धार्थ के और संगीत मिक्की मिक्लेरी का।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए स्पेशल 26 फिल्म का गीत, अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल और शबाब साबरी की आवाज में। गीत के बोल लिखे शब्बीर अहमद ने और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए के और सुजैन डिमेलो की आवाज में शकील आजमी का लिखा गीत। संगीत चिरंतन भट्ट का है और फिल्म का नाम है 1920 ईविल रिटर्न।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के अंत में आपने सुना केके और सुजैन डिमेलो की आवाज में शकील आजमी का लिखा गीत। संगीत दिया था चिरंतन भट्ट ने और फिल्म का नाम था 1920 ईविल रिटर्न। तो श्रोताओं, यहीं समाप्त होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सबसे पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कलाकार होंगी शकुंतला शुक्ला। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मानस प्रवचन। प्रसंग होगा मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा। प्रवचन करता होंगे देवनाथ पाठक। वार्ता सुनिएगा, विषय होगा फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि और समृद्ध किसान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। वार्ताकार होंगे पंकज सिंह पटेल। आज की सीख का विषय होगा जितने के भगत नहीं उतने का मजीरा फूटे। रात 8 बजे रसावतरण कार्यक्रम में सुनिएगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे शिवा सक्सेना, रूप नारायण पाठक, रविशंकर बिलगैया, राम बिहारी सक्सेना और संजू सूर्यम्र ठाकुर। रात 9:15 पर सुनेगा स्पॉटलाइट कार्यक्रम जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 पर सुनेगा रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे उपेंद्र सोनी, दीपक पटेल, रामबाई अहिरवार और डॉक्टर सुधा गगन कनौजी। रात 10 बजे सुनेगा बुंदेली नाटक तुम्हारी ज्ञानवती। रात 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, इसमें हम आपको सुनवाएंगे पंडित निखिल बनर्जी से सितार पर बजाया राग हेम बिहाग। ये तो थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर बुंदेली सुगंध कार्यक्रम में आप सुनेगा बुंदेली वार्ता। विषय होगा खजुराहो के अनछुए पहलू। वार्ताकार होंगे शिव नारायण तिवारी। फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे प्रातः 7:30 पर और रात 8:15 पर। प्रातः 8:30 पर सुनेगा फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन। प्रातः 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगी राधा खरे। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:05 पर रसावतरण कार्यक्रम में आप सुनिएगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे फहीम निजामुद्दीन, अतीक अहमद रहमानी, पंकज विश्वकर्मा और शमीम अहमद। पॉडकास्ट विद आकाशवाणी छतरपुर में सुनिएगा रक्तवीर अमित जैन से रक्तदान के महत्व जागरूकता विषय पर डॉक्टर सविता धमीजा की बातचीत कल प्रातः। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे चंदन दास शाम 5:30 पर।

आपको बता दें पॉडकास्ट विद आकाशवाणी छतरपुर कल शाम 5:30 पर आप सुनेंगे, शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कलाकार होंगी रेखा नामदेव, 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा जिसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हैलो लोकरंजन, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही आज की सीख का विषय होगा तुमने कही हो दंत निपोरी हमने कहे माड़ बोरी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे दिन में 11 बजे, आपकी फरमाइश दिन में 12 बजे और 2:30 पर, संग्रहालय से दिन में 12:30 पर, महिला कार्यक्रम दिन में 1 बजे, लोक संगीत 1:30 पर, सुगम संगीत का समय होगा 1:45, फिल्म संगीत दिन में 2 बजे, सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा। रात 8 बजे सुनेगा कार्यक्रम सुर्खियों में, दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रमों में रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: सरकार ने बैड बीएमएस इपोक डाईआईएन इपोक आईआईएन और लॉसगी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाए गए हैं। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद बीएआरसी को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। इस्पात मंत्रालय इस माह की 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां और संगठन इस दिन इस्पात आयात से संबंधित अपनी समस्याएं चर्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय इस क्विज में भाग लेने के लिए विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 1 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,

0: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी लिखते हैं।
1: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
0: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
0: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं।
1: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
0: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
0: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भू परपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहां से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
0: जी।
1: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर

0: यानी 800-04-05-59 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थी, अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ।
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप, ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था। मामा जी, भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
8: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
6: अच्छा, भोज वृक्ष?
8: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है, इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दोनों लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
6: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
8: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
6: अच्छा,
8: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है, हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
6: ये किस भाषा में है?
8: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने।

0: ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हम हमारे देश के इतिहास

में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो उस दिन यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। जहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह,
0: हाँ तो आसिफ खान अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपच्छा ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ।

0: डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
2: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवानी के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
2: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
0: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वो राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मोहलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा?
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करे कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी

0: रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
1: देखो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
2: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
3: पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे, उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी, तभी
4: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
5: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
4: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है।
5: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
6: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
5: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
6: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
5: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
6: रानी माँ मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
7: श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज कलाकार हैं शकुंतला शुक्ला। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए इनसे सुनिए ये दादरा।

0: लोकधारा कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं शकुंतला शुक्ला। कार्यक्रम में लीजिए इनसे सुनिए ये गारी।

श्रोताओं, भी आपने सुनी शकुंतला शुक्ला की आवाज में ये गारी। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं शकुंतला शुक्ला। कार्यक्रम में लीजिए इनसे सुनिए ये दादरा।

स्वतः अभी आपने सुना शकुंतला शुक्ला से ये दादरा। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं शकुंतला शुक्ला। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए शकुंतला शुक्ला से ये गारी।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी शकुंतला शुक्ला की आवाज में ये गारी बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं शकुंतला शुक्ला। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं शकुंतला शुक्ला की आवाज में ये गैलहाई।

श्रोता, अभी आपने सुना शकुंतला शुक्ला की आवाज में ये गैलहाई लोकगीत। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं शकुंतला शुक्ला। कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनिए शकुंतला शुक्ला की आवाज में ये गारी।

श्रोता अभी आपने सुनी शकुंतला शुक्ला की आवाज में ये गारी। इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। इसमें आज कलाकार थी शकुंतला शुक्ला। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 446.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। गुमशुदा व्यक्ति का नाम संकेत शाक्यवार, पिता का नाम श्री सुमंत शाक्यवार, निवासी देसी रसोई के पीछे जालौन रोड उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश। इनकी उम्र 16 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, लंबा चेहरा, लंबे बाल, आंख नाक गोल है। यह दिनांक 3 जून 2026 से अपने निवास से देसी रसोई के पीछे जालौन रोड उरई जिला जालौन से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना होने पर कृपया मोबाइल नंबर 9935418175 या फिर

9 7 9 3 1 1 4 0 1 6 या फिर 9 4 5 4 4 0 3 5 9 9 पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9 9 3 5 4 1 8 1 7 5 9 7 9 3 1 1 4 0 1 6 या फिर 9 4 5 4 4 0 3 5 9 9 पर संपर्क कर सकते हैं। एक और सूचना सुनिए। गुमशुदा व्यक्ति का नाम आरती देवी, पत्नी नीरज कुमार, निवासी मोहल्ला सुशील नगर उरई, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन। इनकी उम्र लगभग 36 साल, रंग गोरा, लंबा चेहरा, बाल लंबे, कद लगभग 5 फीट, आंखें नाक कान गोल हैं, ये सूट पहने हुए हैं। ये दिनांक 2 जून 2026 सुबह 10 बजे अपने घर मोहल्ला सुशील नगर उरई से इंडियन बैंक जिला परिषद की कहकर निकली, इसके बाद अपने घर वापस नहीं आई। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर कृपया मोबाइल नंबर 9 4 7 3 7 5 3 3 0 8 या फिर 9 9 3 6 8 1 5 6 4 0 या फिर 7 4 0 8 3 9 0 1 6 4 पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9 4 7 3 7 5 3 3 0 8 9 9 3 6 8 1 5 6 4 0 या फिर 7 4 0 8 3 9 0 1 6 4 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 होने वाले हैं प्रादेशिक समाचार। कुछ ही समय में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की, सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की, 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित, 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे, जिसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब

0: 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीजीसीएमई ओएसटी सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉ यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में खरीफ फसलों, मानसून की स्थिति और अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि देशभर में बारिश की कमी की आशंका वाले 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है, जिनमें से 210 जिले अब भी बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। बैठक में बताया गया कि 2 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मानसून आगे बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कॉन्टिंजेंसी प्लान की समीक्षा करने और किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। इन पदों की पूर्ति 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की योजना है। भोपाल में जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में आज अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। यह भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के लिए पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके लिए विद्यालय 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। जिला स्तरीय क्विज 7 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक जिले की विजेता टीमों को प्रदेश के पर्यटन बोर्ड द्वारा निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद यानी बार्क को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के तहत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बैट बीएमएस इपोक आईओएन और लॉसिगी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि आधार एप्लीकेशन पर ईमेल आईडी निःशुल्क अपडेट की सुविधा 1 जुलाई से शुरू होने के बाद पहले 2 दिनों में 2.5 लाख से अधिक ईमेल अपडेट हुए हैं। UIDAI के अनुसार यह सेवा 6 महीने की अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध है और इससे आधार केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने नए आधार ऐप से मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, वहीं लगभग 10 लाख लोगों ने अपना पता भी अपडेट किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए 24 घंटे चलने वाली महिला हेल्पलाइन 1-4-4-9-0 संचालित कर रहा है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन हिंसा और उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर महिलाएं शिकायत के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। हेल्पलाइन एक बार पुनः सुन लें 1-4-4-9-0। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये यात्रा 57 दिनों तक चलकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जत्थे में कुल 4,822 श्रद्धालु जम्मू से रवाना

हुए, जिसमें 2510 श्रद्धालु ननवान और 2312 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सिहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने दो शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम हाथियों और आधुनिक तकनीक की मदद से 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 9 दिन की देरी से आया मानसून कल उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना है। धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। इंग्लैंड ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार की रात को सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 40 रन से हराया। अब रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं दूसरी तरफ BCCI ने भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया है। ये दो मैचों की श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना के कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम 2 CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। सिंगरौली के चितरंगी में विकसित भारत जीराम जी योजना का शुभारंभ राज्य मंत्री राधा सिंह ने कार्यशाला की शुरुआत से किया। खंडवा जिला अस्पताल में OPD पंजीयन को आसान बनाने के लिए अब ई रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की गई है। आगरमालवा नगर पालिका ने कंपनी गार्डन में नीम, पीपल और बरगद के 111 पौधों का रोपण किया। पन्ना में राज्य खेल अकादमियों के लिए 12 से 18 वर्ष तक के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। मंदसौर में स्टॉप डायरिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के क्लोरीनेशन और पानी की जांच का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। देवास ITI परिसर में 7 जुलाई को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए नागरिकों से दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील की है। सीहोर के स्कूली बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोजित 3 दिवसीय उमंग हेल्थ एंड वेलनेस प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। सागर खेल परिसर के मैदान पर मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के तीसरे चरण की च्वाइस फिलिंग की शुरुआत हो गई है, जिसमें पहले से पंजीकृत अभिभावक 8 जुलाई तक च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। नीमच के जावत सिविल अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर सर्पदंश का इलाज और एंटी स्नेक वेनम 24 घंटे मुफ्त उपलब्ध है। और कटनी में रूक रूक कर हुई बारिश के बाद नगर निगम के अमले ने नालियों की सफाई कर जल भराव की स्थिति को संभाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की। सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की। 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित। 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन खो नंदनी बहन
1: और किस्सू भैया के राम राम
0: राम राम
1: राम राम नंदनी बहन। और देखो चौमासो शुरू होगा
0: बिल्कुल,
1: देखो कितनी उमदा झमाझम बिल्कुल झमाझम वर्षा हो रही। अब हमारे पंचन खां ध्यान रखने अपनो तो ध्यान रखने ही रखने हैं, लेकिन संगे संगे उन्हें अपने जो ढोर बछेरू है उनकी सेवा समार और उनकी देख रेख करवो ऐसे चौमासे में बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और देखो अपने भैया बहन को पशुओं की देखभाल के संगे संगे उनको देखो टीकाकरण सुई कराना है।
1: बिल्कुल है? देखो काहे टीकाकरण से हमारे जो पशुओं में केव प्रकार की रोग बाधाएं होती ना तो उनसे मुक्त बने रात और स्वस्थ बने रात।
0: काहे के अपने पशुओं में कई बीमारी हो जाती है, जैसे गलघोंटू है, लंगड़ा बुखार है, खुरपका मुहपका, तो इनके लाने देखो अपन इको टीकाकरण कराने हैं।
1: बिल्कुल,
0: बस सात से पहला अपन खा टीका लगवाने।
1: बिल्कुल, टीका से केव प्रकार की जो व्याधियां होती जो पशुओं में पैदा नहीं होती। अच्छा इन्हें एक काम और करने के हमारे जो ढोर बछेरू हैं हमारे पंचन के भी ध्यान रखें कि जौन टपरा में या जौन छपरा में या जौन घर के नीचे बंधे हैं तो वह देख ले कि ऐसा तो नहीं है कि पानी बरसे और भैया जांगन तांगन से चुंगत होए।
0: बिल्कुल, और साफ सफाई को ध्यान रख में जो नहीं के गोबर डरो हो।
1: बिल्कुल, अपन देखते हैं कि चौमासे में कहा है कि ढोर बछेरू आए पेशाब कर दी जांगन तांगन बहात है तो ऊ को ढाल जैसो बना देवे जिसे अगर भी पेशाब करें तो बाहर निकल जाए जी में भी सूखे में बैठे।
0: बिल्कुल, तो देखो अपने भैया बहन को अपने पशुओं की देखभाल करत रहने हैं। अब जैसे अपन टीकाकरण की बात कर रहे थे किसी भैया, तो जैसे अपने भैया बहन सोचे हो कि जो लंगड़ा बुखार का है और खुरपका मुहपका जो का है, तो देखो अपने भैया बहन को इसके बारे में भी बता दूं।
1: बिल्कुल, जो का है एक छोटे पशुओं में होते है जी में सूजन और अपने जो पशु है वे लंगड़ा से लंगड़ान से लगा
0: और खुरपका जो हो तो मुहपका जो वायरस देखो वायरस रोग आए देखो एक दूसरे से दूसरे में फैलाते हैं जिसे देखो मुंह और पैरन में छाले पर जाते हैं। इसे देखो जब बीमारी हो जाते हैं इसे जौन पशु में जब बीमारी हो
1: तो
0: दूसरे पशुओं से अलग रखो चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो कितनी उम्दा जानकारी अपन ने पंचन दई है। पंच जरूर ई पे अमल करें और अपने ढोर बछेरू का स्वस्थ रखें
0: और टीकाकरण जरूर करावें।
1: बिल्कुल, तो आज है देखो शुक्रवार और आज अपने पंचन लेके चलते हैं अपन मानस प्रवचन कोद
0: और मानस प्रवचन को प्रसंग है मुनि सुमित
1: विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा प्रवचन करता है देवनाथ पाठक जी। तो अपन सुनाते हैं और पंच सुनाते हैं।
2: वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम

0: राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरतागृज राम राम श्री राम राम रण कर्कस राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम। मानस के प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का प्रसंग है विश्वामित्र जी का दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांगना।
1: विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहिं विपिन शुभ आ

गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे मुनि विश्वामित्र जी, महाज्ञानी मुनि वन में एक शुभ आश्रम में रहते थे। वन में जहाँ जहाँ ऋषि मुनि तपस्या यज्ञ करते थे, योग साधना करते थे, परंतु मारीच और स्वबाहु राक्षसों को लेकर इतना उपद्रव करते थे कि उनके अत्याचार से ऋषि मुनि जप तप यज्ञ भी नहीं कर पाते थे। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब गादी के पुत्र मुनि विश्वामित्र जी को ये चिंता लगी, वे सोचने लगे कि इन भयानक राक्षसों को अब बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता है। उन्होंने विचार किया कि प्रभु श्री राम ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया है। ऐसा सोचने लगे, उन्हीं को हम क्यों न लेकर के आवें। और विश्वामित्र जी

मुनि विश्वामित्र जी ने सोचा किसी बहाने से उनके पास जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों राजकुमारों श्री राम और लक्ष्मण को ले आऊंगा। इस प्रकार मन में विचार करते हुए उन्होंने तनक भी देर न लगाई और सरयू मैया के जल में स्नान करते हुए स्नान करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के दरवाजे पहुंच गए।

0: चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को जब विश्वामित्र मुनि के आने की खबर मिली तब वे ब्राह्मणों के समाज को लेकर उनसे मिलने गए और उन्होंने सम्मान सहित लाकर के प्रणाम किया और उनके चरणों को धोकर प्रसन्नता के साथ अपने आसन पर बैठाया और फिर चारों राजकुमारों को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। मुनि विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम करवाया। जैसे ही मुनि ने श्री राम को देखा, उनकी छवि को देख करके विश्वामित्र जी अपने देह की भी सुध भूल गए। तब महाराज दशरथ जी ने हर्षित होकर कहा, हे मुनिवर, आपने आज बड़ी कृपा की है, इस प्रकार तो आपने कभी ऐसी कृपा नहीं की। मुनिवर, आपको धन्य है, आपको धन्य है। इस प्रकार से दशरथ जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं।
1: के ही कारण

अयोध्या के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने कहा, हे मुनिवर, आपका आगमन किस कारण से हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में तनक भी देर न लगाऊंगा। तब मुनि विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, राक्षसों के समूह हमें बहुत सताते हैं, यज्ञ जप तप कुछ भी नहीं करने देते, इसलिए तुमसे मैं कुछ मांगने आया हूँ। मांगने? बोले, हाँ राजन, मैं मांगने आया हूँ। क्या? छोटे भाई लक्ष्मण सहित हमें राम को दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर हम सुरक्षित हो जाएं और वन में सभी ऋषि मुनि निर्भय होकर जप तप और यज्ञ कर सकें। हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़ दो, तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को समझाया, लेकिन दशरथ जी ने कहा कि हे मुनिवर, चौथे पन पायऊं।

महाराज दशरथ जी का शरीर कांपने लगा और वे हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, ये पुत्र मैंने चौथे पन में चारों पाए हैं। आपने मुनिवर विचार नहीं किया, आप पृथ्वी गौ धन संपत्ति खजाना यहाँ तक कि देह से प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता, उसे भी मैं एक पल में दे दूंगा। हे मुनिवर, मुझे सभी चारों पुत्र प्रिय हैं, पर राम तो मेरे प्राण हैं, इन्हें न मांगिए। और कहते हैं

हे मुनिवर इनको न मांगिए। तब गुरु वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी ने सारे से कहा कि इनको समझाओ। विश्वामित्र जी ने कहा इशारे से, तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि हे राजन इन्हें दे दो, इसी में कल्याण है, ये विश्वामित्र जी हैं। इस प्रकार से समझाया तब उनका संदेह मिट गया। राजा ने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय

लगाया और समझाया, बेटा राम आज मैं तुम्हें और लक्ष्मण को इनके हाथों में सौंप रहा हूँ, अब ये आज से तुम्हारे माता पिता यही हैं, ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया और मुनि को सौंप दिया। फिर दोनों भाई अपनी माता के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न मन से चले। सौंपे भूपे ऋषि सत बहुविध देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। चरणों में प्रणाम करके मुनिवर के साथ चले। बोलो जय।

0: अब अपने भैया बहन सुन रहे थे मानस प्रवचन। प्रसंग हतो मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, प्रवचन करता हते देवनाथ पाठक जी।
1: बिल्कुल नंदिनी बहन, देखो उम्दा मानस प्रवचन हमारे पंचन ने सुनो और देखो बरसात को चल रहा टेम और अब इस समय हमारे पंच जो है खेती किसानी में जुट गए।
0: बात ही रहते
1: कि पानी गिरे और कबे बोनी हो जाए और देखो कई जगह पानी अच्छो झमाझम को गिर गयो और हमारे जो पंच हैं वे बोनी कर भी में लग गए।
0: बिल्कुल खरीफ की फसल की बोनी अपनी भैया बहन कर रहे हैं। ई में कहा है कि देखो मूंगफली, मूंग, उड़द, तिली, सोयाबीन। अब बात कर रहे हैं अपन सोयाबीन की।
1: बिल्कुल, तो हमारे पंचन से कहवो है कि जो बीज को उपयोग करें वो उम्दा बीज और उन्नत किस्म को बीज बोवे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: इसे कहा होते कि देखो मेहनत तो हमारे पंच करते ही हैं और मेहनत के संगे संगे अगर उन्हें उम्दा बीज ना बेओ तो भैया उन्हें लाभ नहीं होता। तो अच्छो बीज जब वो हैं, उन्नत किस्म वो हैं, तो भैया उन्हें मेहनत के हिसाब से उम्दा लाभ मिले है।
0: बिल्कुल, उन्हें अधिक आमदनी भी हुई है। तो अपन को देखो सोयाबीन की उन्नत किस्म कौन कौन लेने हैं।
1: बिल्कुल,
0: अपन को लेने हैं JS 95-60।
1: बिल्कुल,
0: जब होते ही अच्छी होते जल्दी पक जाते।
1: बिल्कुल, और 80-85 दिन में सूखे और कम पानी में भी हो जाते।
0: और JS 335।
1: बिल्कुल, जब किस्म जो है बिल्कुल 95 दिन में पक के तैयार हो जाते।
0: NRC 136, NRC 268
1: और JS 21 और 72, ये सब उन्नतशील किस्में हैं। और भैया देखो इन किस्मन को अगर हमारे पंच उपयोग करें तो उम्दा फसल उन्हें कम समय में मिल सका थे।
0: बिल्कुल, और जा देखो अपने सबसे ज्यादा अपने भारत में बोई जाते हैं जिसे देखो अपने किसान भैया बहनन को ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो सभी भैया बहनन से यही कहे हैं सोयाबीन की अपन का उन्नत किस्में बनी है।
1: बिल्कुल, तो अब अपन पंचन का लेके चला थे एक वार्ता खुद और सुनवाऊ थे फसल विविधीकरण टिकाऊ कृषि और समृद्ध किसान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पंकज सिंह पटेल जी से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को विशेषकर किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय है फसल विविधीकरण टिकाऊ कृषि एवं समृद्ध किसान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। किसान भाइयों और बहनों, बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित वर्षा और बार बार आने वाले सूखे के कारण लंबे समय से कृषि संबंधित चुनौतियों का सामना करता रहा है। यहाँ अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर है। वर्षा का समय और मात्रा दोनों अनिश्चित रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसान केवल एक या दो पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहते हैं तो मौसम की प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण उत्पादन और आय दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए समय की मांग है कि हम अपनी खेती में फसल विविधीकरण अपनाएं। फसल विविधीकरण का अर्थ है किसान एक ही फसल पर निर्भर रहकर ना रहकर विभिन्न प्रकार की फसलों, बागवानी, पशुपालन, कृषि, वानिकी तथा अन्य सहायक गतिविधियों को अपनाकर अपनी आय को स्रोतों में विविधता लाए। इससे जोखिम कम होता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और किसानों की आय में स्थिरता आती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी को देखते हुए यहाँ फसल विविधीकरण की अपार संभावनाएं हैं। पारंपरिक रूप से गेहूं और धान जैसी फसलों पर अधिक निर्भरता रही है, लेकिन बदलते मौसम और सीमित जल संसाधनों को देखते हुए अब ऐसी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है जो कम पानी

में अच्छी पैदावार दे और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाए। मोटे अनाज जिन्हें आज श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है, बुंदेलखंड की परिस्थितियों के लिए अत्यंत उप और ज्वार बाजरा कोदो कुटकी सावा और रागी जैसी फसलों कम वर्षा और कम उर्वरक भूमि में भी अच्छी उपज देती हैं। इन फसलों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी बाजार में मांग भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए किसान भाइयों को इन फसलों को अपनी खेती का हिस्सा बनाना चाहिए। ये फसलें न केवल सूखा सहन करने की क्षमता रखती हैं, बल्कि इनमें रोग और कीटों का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे उत्पादन लागत कम आती है। श्री अन्न में कैल्शियम, आयरन, फाइबर तथा अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए आज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार द्वारा भी अन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे अन्न इनके विपणन और मूल संवर्धन की संभावनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में किसान इन फसलों के माध्यम से कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दलहनी फसलें, इसी प्रकार दलहनी फसलें जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द और मसूर न केवल कम पानी में अच्छी पैदावार देती हैं, बल्कि ये मिट्टी में नत्रजन की मात्रा बढ़ाकर उसकी उर्वरता में भी सुधार करती हैं। दलहनी फसलें किसानों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत बन सकती हैं और परिवार के पोषण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दलहनी फसलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे अगली फसल को भी लाभ मिलता है। इन फसलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण ये मानव पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देश में दालों की लगातार बढ़ती मांग के कारण किसानों को इनके अच्छे दाम भी प्राप्त होते हैं। फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है तथा खेती अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनती है। अगला है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों में सरसों, तिल, अलसी और मूंगफली जैसी फसलें बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। इनकी खेती से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकता है। वर्तमान समय में खाद्य तेलों की मांग निरंतर बढ़ रही है, जिसके कारण तिलहनी फसलों का आर्थिक महत्व भी बढ़ा है। सरसों और तिल जैसी फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में भी अच्छी उपज देती हैं तथा इनकी बाजार में स्थायी मांग बनी रहती है। मूंगफली और अलसी जैसी फसलें किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं। इन फसलों के उत्पादन के साथ साथ तेल निष्कर्षण, प्रसंस्करण तथा मूल संवर्धन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार और आय के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए फसल विविधीकरण के अंतर्गत तिलहनी फसलों को शामिल करना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। किसान भाइयों और बहनों, केवल फसल उत्पादन तक सीमित रहने के बजाय यदि हम कृषि को अन्य गतिविधियों से जोड़ दें तो आय में और अधिक वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण के लिए फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियां अपनाई जा सकती हैं। इसके यदि किसी वर्ष फसल उत्पादन कम हो जाए तो अन्य स्रोतों जैसे आय प्राप्त होती है और आर्थिक जोखिम कम होता है। फसल एवं सब्जी उत्पादन की संभावनाएं, बुंदेलखंड क्षेत्र में फल एवं सब्जी उत्पादन की भी अच्छी संभावनाएं हैं। अमरूद, आंवला, बेर, नींबू, पपीता और सहजन जैसे फलदार पौधे कम पानी में भी अच्छे परिणाम देते हैं। इसी प्रकार टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों की खेती किसान कम क्षेत्र में भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सब्जी उत्पादन से नियमित नगद आय प्राप्त होती है और परिवार के पोषण स्तर में भी सुधार होता है। इसके अलावा फलदार पौधों की खेती किसानों को दीर्घकालीन और स्थायी आय का स्रोत प्राप्त होता है। आंवला, अमरूद और बेर जैसे फल बाजार में अच्छी कीमतें दिलाते हैं तथा इनके प्रसंस्करण द्वारा मुरब्बा, जैम, जूस, अचार जैसे मूल संवर्धित उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं। वहीं सब्जियां की खेती से किसानों को पूरे वर्ष नियमित आय प्राप्त होती है और कम समय में अधिक उत्पादन लेकर लाभ कमाया जा सकता है। परिवार की पोषण सुरक्षा दृष्टि से भी फल और सब्जियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज तथा अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि किसान फल सब्जी उत्पादन को वैज्ञानिक तकनीकों, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के साथ अपनाए तो कम पानी की स्थिति में भी बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला है कृषि वानिकी। आज के समय में कृषि वानिकी अर्थात खेती की मेड़ों पर पेड़ लगाना भी एक लाभकारी विकल्प बनकर उभरा है। नीम, करंज, सहजन,
शीशम, सागौन, फलदार पौधों को

0: खेत की मेड़ों पर लगाकर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है। कृषि तकनीक प्रणाली के से खेतों में जैव विविधता बढ़ती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद मिलती है। पेड़ों की जड़ें वर्षा जल को भूमि में संचित करने में सहायक होती है, जिससे भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही पेड़ों के से लकड़ी, ईंधन, चारा, फल तथा अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत बनते हैं। सहजन जैसे पौधे पोषण और अन्य दोनों आय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि शीशम और सागौन जैसे वृक्ष भविष्य में मूल्यवान लकड़ी प्रदान करते हैं। इस प्रकार कृषि वानिकी न केवल जलवायु परिवर्तन और सूखे जैसी परिस्थितियों से निपटने में सहायक है, बल्कि यह किसानों के लिए दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण साधन है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है, कभी सूखा, कभी अत्यधिक वर्षा और कभी लंबे समय तक वर्षा न होने जैसी समस्याएं किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में फसल विविधीकरण किसानों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यदि एक फसल प्रभावित हो जाए तो दूसरी फसल या सहायक गतिविधियां नुकसान की भरपाई करने में सहायक करती हैं। इसके साथ ही किसानों को सूखा सहन करने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे जल संरक्षण की तकनीक को अपनाना चाहिए। खेत तालाब मेड़बंदी, वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे तकनीकें पानी की बचत करने के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। मल्चिंग और जैविक पदार्थों के उपयोग से मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे फसलों को सूखे की स्थिति में भी लाभ मिलता है। यदि हम अपनी खेती को विविध और संतुलित बनाएंगे तो न केवल हमारी आय में वृद्धि होगी, बल्कि हमारी खेती अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और जलवायु परिवर्तन के प्रति सक्षम भी बनेगी। बुंदेलखंड की परिस्थितियों को देखते हुए फसल विविधीकरण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि समय की आवश्यकता है। यदि मार्ग किसानों की समृद्धि, पोषण, सुरक्षा और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। किसान भाई और बहनें अपनी परिस्थितियों के अनुसार फसल विविधीकरण को अपनाकर अपनी खेती को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने का प्रयास करेंगे।
1: अब अपन सुन रहे थे वार्ता फसल विविधीकरण टिकाऊ कृषि और समृद्ध किसान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। वार्ताकार हते पंकज सिंह पटेल जी।
2: बिल्कुल नंदनी बहन, कितनी उम्दा वार्ता हमारे पंचन ने सुनी है और जरूर उनको लाभ ले हैं। और देखो बरसात को चल रहा है मौसम और ऐसे समय में हमारे पंचन खा अपने स्वास्थ्य को जरूर ध्यान रखने।
1: बिल्कुल, मौसमी बीमारियों से अपने भैया बहनों को बच के रहने हैं। इनमें देखो कई तरह की बीमारियां होती हैं, खास तौर से देखो अपन को मच्छरों से बचाव करने हैं। इनमें देखो डेंगू मच्छर काटत है तो देखो डेंगू बुखार हो जात, और साफ सफाई को भी ध्यान रखना है कसु भैया।
2: और एक बात को और ध्यान रखना है नंदनी बहन, हम पंचन से कहे हैं कि देखो ई बरसात के मौसम में बाहर को तो खावे को बहुत परहेज करें। क्यों भी कहा होते कि देखो बाहर दुनिया भरे की माछियां आछियां आके खावे पीवे वाली चीजें पे बैठती और उन्हें दूषित कर देती, और वही चीज अपन ने खाई तो भैया अपन बीमार हो जाते।
1: बिल्कुल, तो देखो अपन को बाहर को खाना नहीं है, ज्यादा तलो भोजन नहीं खाना है, अपन को देखो पानी भी उबाल के नहीं है तो वो अच्छी बात
2: बिल्कुल
1: है।
2: और अगर हमारे पंच कोनो तरह का तरह तरह से अगर समझे कि शरीर में कमजोरी आ रही या बीमारी सी लग रही तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनो इलाज करावे, और इलाज खा ढीले में न लेवे, इलाज पूर्णता करवावे और उम्दा पूरा इलाज मतलब हर प्रकार की जांच पड़ताल करके ही इलाज करवा ले।
1: काहे के देखो बरसात के समय में सर्दी है, खांसी, बुखार, ज्यादा उल्टी हो तो दस्त हो कछु भैया बहन को, तो देखो जो हो गए तो अपन इलाज करा भी जरूर।
2: बिल्कुल, और देखो बरसात पानी में हमारे पंच जो है बाहर न निकले, ज्यादा घूमे फिरे ना।
1: बिल्कुल, पानी बरस रहा हो तो उन्हें भींज बहना, भींज भी सभी बचने हैं।
2: बिल्कुल,
1: हमेशा देखो साफ सफाई को ध्यान रखना।
2: देखो
1: खाना खावे से पहले अपन देखो साफ सफाई जरूर।
2: बिल्कुल, और देखो नंदनी बहन बरसात को चल रहा टेम तो अपन एक बरसात गीत सुनाते हैं देवी सिंह राजपूत जी से,
1: तो लो अपने भैया बहन सुने।

0: और किस्तु भैया देखो हाँ, कैसे सुनो अपने भैया बहनों ने जो लोकगीत सुनो बरसात गीत
1: बिल्कुल
0: जी खो गा रहे थे भैया देवी सिंह राजपूत जू
1: बिल्कुल नंदनी बहन। और देखो अब हो रही है बेरा आज की सीख की, विषय है जितने के भगत नहीं उतने के मंजीरा फूटे। केवी को मतलब है
0: एक देखो बुंदेली कहावत
1: बिल्कुल केवी को मतलब है कि अपन खां लाभ से ज्यादा नुकसान हो जाओ। जैसे मान लो अपन ने कोनो काम करो उमे जितने संसाधन लगने बेबी काम के निभाए और जित तो लाभ होने तो वो भी निभाओ
0: यानी ज्यादा नुकसान होगा
1: बिल्कुल। क्यों भी अपन देखते हैं कि कोनू काम करते हैं तो उमे अपन की लागत लग जाती इतनी और पतो लोगो के व्यवसाय हुए या कोनू चीज हुए वो ना चली तो पतो लोगो नुकसान होगा
0: यानी मुनाफा कम हो जाता
1: बिल्कुल मुनाफा है बिल्कुल घट जाता और ना के बराबर हो। सो ऐसी जगह पे कई जात के भैया जितने के भगत नहीं उतने के मंजीरा फूट गए हैं। और देखो भैया अब लेके चलते हैं पंचना फिर से एक मनोरंजन कूद और सुनो आउत है एक चेतावनी जी ये गा रहे हैं सुरेंद्र सिंह परमार व साथी। तो अपन सुनते हैं और पंच सुनते हैं।

0: अबे अपने भैया बहन सुन रहे थे चेतावनी सुरेंद्र सिंह परमार बासातियन की गाई भाई।
1: बिल्कुल, और देखो अब घड़ी टुकटुका रही है और अब बता दें पंचना काल के कार्यक्रम।
0: कल अपने भैया बहन सुने ग्राम सभा में हेलो लोकरंजन कार्यक्रम, श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम, प्रस्तुति हो है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी।
1: बिल्कुल, और संगे हुए आज की सीख विषय हुए तुम न करियो दंत ने पूरी, हम न कहे माड़ो बोरी, और देखो अपनो तुपनो बतका हुए, तब तक किलाने पंचन से लेते अनुमति। पंचो
0: राम।

0: अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रसावतरण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं शिवा सक्सेना, रूप नारायण पाठक, रविशंकर बिलगैया, राम बिहारी सक्सेना और संजू सूर्यम ठाकुर।
1: नमस्कार, मैं सभी कवियों के साथ आप सभी छतरपुर आकाशवाणी के श्रोताओं को नमस्कार प्रणाम करता हूं और आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करता हूं। साथ में हमारे कवि मित्र रहेंगे श्रीमती शिवा सक्सेना और रूप नारायण पाठक अकेला जी, बुंदेली संगार गीत पढ़ते हैं ये। हमारे साथ में रविशंकर बिरगैया पृथ्वीपुर से आप सभी को अच्छे गीत सुनाएंगे, राम बिहारी सक्सेना जी जो कि माँ का गीत पढ़ेंगे और मैं स्वयं कवि संजू सूर्यम ठाकुर आपके बीच में उपस्थित हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए, छतरपुर आकाशवाणी पर हम सभी जुड़ते हैं। और सरस्वती वंदना के लिए सबसे पहले मैं शिवा सक्सेना जी से आग्रह करता हूँ कि वे आज के इस सुंदर से कार्यक्रम का शुभारम्भ करें। आए शिवा सक्सेना जी।
2: धन्यवाद। सरस्वती माँ का एक गीत। माँ सरस्वती विद्या प्रदायिनी, स्वर को गुंजित कर देना। माँ सरस्वती विद्या प्रदायिनी, स्वर को गुंजित कर देना। ज्ञान दीप की ज्योति जला, जीवन आलोकित कर देना। वीणा की लय में प्रेम पले, मन का अंधियारा मिट जाए। वीणा की लय में प्रेम पले, मन का अंधियारा मिट जाए। माँ अपनी कृपा की वर्षा से, बुद्धि को विकसित कर देना। माँ सरस्वती विद्या प्रदायिनी, स्वर को गुंजित कर देना। शब्दों में ऐसी शक्ति भरो, माँ भाव स्वयं ही बह आए। शब्दों में ऐसी शक्ति भरो, माँ भाव स्वयं ही बह आए। मेरी हर एक रचना में माँ तेरा ही दर्शन हो जाए। जले जो जगमग हो, अज्ञान तमस सब हर लेना। एक दीप जले जो जगमग हो, सूने मन के कागज पर बस। भावों की सरगम अर्पित हो, जीवन के पथ पर हे माता। पग धूलि तुम्हारी मिल जाए, जीवन के पथ पर हे माता। पग धूल तुम्हारी मिल जाए। हे हंस वाहिनी।

0: अनुग्रह से जीवन को उज्जवल कर देना, माँ अपनी कृपा की वर्षा से बुद्धि को विकसित कर देना।
1: बहुत सुंदर।
0: संगीत साधना बन जाए, हर सुर में तेरा नाम रहे। संगीत साधना बन जाए, हर सुर में तेरा नाम रहे। हर राग में तेरी महिमा हो, हर ताल में तेरा धाम रहे। हर राग में तेरी महिमा हो, हर ताल में तेरा धाम रहे। अज्ञान भवर में घिर जाऊं, तुम दीपक के समझल जाना। अज्ञान भवर में घिर जाऊं, तुम दीपक के समझल जाना। जड़ता के घने कुहासे को तुम ज्ञान सूर्य से हर लेना। माँ अपनी कृपा की वर्षा से बुद्धि को विकसित कर देना। माँ अपनी कृपा की वर्षा से बुद्धि को विकसित कर देना।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: अच्छा शुभारंभ हुआ, माँ की अच्छी वंदना हुई। आइए मैं द्वितीय पायदान पर रूप नारायण पाठक जी अकेला को आमंत्रित करता हूँ और वे बुंदेली गीत पढ़ेंगे और ये क्षेत्र बुंदेलखंड है, तो बुंदेली गीत का स्वागत करते हैं रूप नारायण पाठक। हम अभी रूप नारायण पाठक जी को सुनेंगे और मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। रूप नारायण पाठक जी बुंदेली गीतों को लेकर आए हैं, आइए उनका स्वागत करें। रूप नारायण पाठक
3: साथियों, नई पीढ़ी को अपनी प्राचीन धरोहर बुंदेली श्रृंगार के बारे में परिचित कराते हुए मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ।

0: बहुत सुंदर, क्या बात है।
1: बाहें भरा बाजू बंद पहरे ऊपर कसे बजुल्ला है हथ फूल हरीरी चुरियां पहरे मुदरी छल्ला।

0: लचकारे।
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत सुंदर।
0: मानो आई अप्सरा कोनऊ, मानो आई अप्सरा कोनऊ, छोड़ इंद्र दरबार।
2: क्या बात है।
0: फूल टीका माथे पे बूंदा यजब बहार, कि सोहत कान

0: जब बहार
1: बहुत सुंदर
0: कड़ा पे जिना लच्छा पावन झांझन की झनकारें पाऊं जीभ पे पाऊं पोस संग दो दो।

0: गली के भटक जात गैला रे रूप नारायण गोरी कड़ गई मोह पे घुंघटा डा शीश फूल टीका माथे पे बूंदा यजब
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत क्या कहना बहुत सुंदर।
2: अभी आप रूप नारायण जी को सुन रहे थे। इसी कड़ी में अब हम आपके बीच में रविशंकर बिलगैया जो पृथ्वीपुर से हैं और वो आंखों की भाषा पर एक सुंदर गीत पढ़ेंगे। बिहारी लाल जी का दोहा उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। आंखों की जैसी भाषा रहती है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैन की शोभा।
1: बहुत बढ़िया
2: ऐसी कविता कहने जा रहे हैं बिलगैया।
1: आंखों की भाषा हमने ये गीत लिखा है, सुनिए। कि आंखें हैं अनमोल खजाना, आंखें हैं अनमोल खजाना, इनका कोई मोल नहीं। एक पलवे पर सारी सुख हो तो भी इनकी तोल नहीं। कि आंखें हैं अनमोल खजाना, इनका

वह तीनों की अपनी अपनी भाषा है। आंखें ओंठ जुबा तीनों की अपनी अपनी भाषा है। बिन बोले सब कुछ कह देना आंखों की परिभाषा है कि बिन बोले सब कुछ कह देना आंखों की परिभाषा है। दुनिया वाले प्रथम दृष्टि में आंखों से पढ़ लेते हैं। दुनिया वाले प्रथम दृष्टि में आंखों से पढ़ ले हैं और परस्पर अंतर मन के भावों को गढ़ लेते हैं और परस्पर अंतर मन के

है। अब ललचाई चमकीली आंखें, अरे ललचाई चमकीली आंखें जटिल भाव दर्शाती हैं। वो अपनों को धोखा देने का कूट रहस्य छुपाती हैं कि अपनों को धोखा देने का कूट रहस्य छुपाती हैं। और तिरछी नजर कटीले नैना, ये तिरछी नजर कटीले नैना।

था। और भक्ति मार्ग में सबसे वादक आंखों को ही माना था, आंखों को ही माना था। सो आंखों से मत गिरना चाहे, आसमान से गिर जाना। ये आंखों से मत गिरना चाहे, आसमान से गिर जाना। अगर भरोसा

0: नहीं।
1: अब हम आपको राम बिहारी सक्सेना राम जी को सुनेंगे और ये माँ पर कविता सुनाएंगे। माँ के सम्मान में एक माँ का छोटा सा मुक्तक मैं पढ़ता हूँ।
0: जी स्वागत है।
1: खून में सारी गिजाएं माँ की होती है।
0: स्वागत
1: है। के बाद तो सब ही अताएं माँ की है।
0: स्वागत है।
1: वही रहमत बरसती है जहाँ माँ की इताअत है, बलाएं भाग जाती शब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
1: माँ की होती है। आइए राम बिहारी सक्सेना,
2: ये माँ को समर्पित है। धारा गर्भ पयोधर सींचे मन वलिष्ठ तन शुभ्र किया। धारा गर्भ पयोधर सींचे मन वलिष्ठ तन शुभ्र किया।

सारा भूख प्यास और कष्ट सहे प्रसव वेदना सह कर उसने जन्म दिया शुभ नयन वहे। प्रसव वेदना सह कर उसने

0: हो प्रसन्न आशीष दिया। छिनका बेटा उसको दो राहे पर खड़ा किया।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
0: खिला पुत्र को जूठन खाया, खिला पुत्र को जूठन खाया, नाना भांति उपाय किए, मांगा सुत ने।

ही सुत वधु ने ललकार दिया, छीन उसी का बेटा उसको दो राहे पर खड़ा किया, छीन उसी का बेटा उसको दो राहे पर खड़ा किया, प्राण दिए तन पाला पोसा, सुख संपत्ति भी वार दिया, प्राण दिए तन पाला पोसा, सुख संपत्ति भी वार दिया, पढ़ा लिखा

0: आवश्यकता निकली जब उसकी निज स्वार्थ को अड़ा दिया, छीन उसी का बेटा उसको दो राहे पर खड़ा किया। जैसी माँ तेरी है बहना, जैसी माँ तेरी है बहना, वैसी पति की माँ होती।
1: बहुत सुंदर।
0: सैसव काल पयोधर सींचे, बसन बदलती मल धोती।
1: बहुत सुंदर।
0: सैसव काल पयोधर सींचे, बसन बदलती मल धोती। वो माँ जिसने कष्ट सहन कर पाल पोस कर बड़ा किया, छीन उसी का बेटा उसको दो राहे पर खड़ा किया। छीन उसी का बेटा उसको दो राहे पर खड़ा किया। सास तुम्हारी भी है माता, सास तुम्हारी भी है माता, पति सुहाग श्रे

जो भू पर ना लाती उसको ना जलता सौभाग्य दिया। अपनी माता जैसी माँ से निज सुत को ही लड़ा दिया। अपनी माता जैसी माँ से निज सुत को ही लड़ा दिया। छीन उसी

0: जैसे माँ ने पाला तुमको पति में ज्यो स्नेह भरा, जैसे माँ ने पाला तुमको पति में ज्यो स्नेह भरा, उसी भांति शिशु सी माँ है अब, उसी भांति शिशु सी माँ है अब, उससे है घर हरा भरा, उससे है घर भरा भरा, वाणी अमृत सी बोलो बस प्रेम सुधारस पान किया, वाणी अमृत सी बोलो बस प्रेम सुधारस पान किया, छीन उसी का बेटा उसको दोराहे पर खड़ा किया, धारा गर्भ पयोधर सींचे मन बलिष्ठ तन शुभ्र किया, छीन उसी का बेटा उसको दोराहे पर खड़ा किया।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आप श्री राम बिहारी सक्सेना राम से माँ पर ये कविता सुन रहे थे, और इसी क्रम में हमारे अपने बीच में संजू सूर्याम ठाकुर पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो भी अपना काव्य पाठ करने का।
2: मैं आप सभी के बीच में हनुमान जी के मातृत्व प्रेम को कविता के रूप में कहना चाहता हूँ।
1: बहुत सुंदर।
2: एक बार अचानक हनुमत ने श्री जनक नंदिनी से पूछा,
1: क्या बात,
2: मस्तक में लाल सिंदूर है माँ, इसलिए लगाया जाता है।
1: बहुत जाता है, बहुत अच्छा।
2: मैं देख रहा हूँ बार बार मन में उत्साह जा, मैं देख रहा हूँ बार बार मन में उत्सुकता जाग रही, जो इसे लगाते हैं उसको क्या लाभ बताया जाता।
1: बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात।
2: प्रस्तुत करता हूँ। तुम भी तो है माँ, निज मस्तक में पूर लगाए रहती हो, क्या पूजा कोई जप तप है, क्यों भेदन इसका कहती हो। मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, तुम माता हो,
1: क्या बात है।

0: इससे मिलता वह पुण्य कमाना चाहता हूँ।
1: बहुत अच्छा।
0: वह पुण्य कमाना चाहता हूँ, मैं भी अपने निज मस्तक पर सिंदूर लगाना।
1: बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया।
0: सिंदूर लगाना चाहता हूँ, कुछ तो इसका व्रत होगा ही, क्यों इसे सजाया जाता है। एक बार अचानक हनुमत ने श्री जनक नंदिनी से पूछा, मस्तक में लाल सिंदूर है माँ, किस लिए लगाया जाता है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: माँ ने जब बात सुनी, माँ ने हनुमत की बात सुनी, बेभावुक होकर फिर बोली, सिंदूर लगाने के क्या गुण हैं, सारी बातें माने
1: खोली। बहुत अच्छा, बहुत।
0: सिंदूर लगाने से हनुमत श्री राम का तेज निखरता है।
1: बहुत सुंदर।
0: सिंदूर लगाने से हनुमत श्री राम का तेज निखरता है, दीर्घायु राम जी होते हैं, शौर्य पराक्रम बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर।

0: हम तो पथ के अनुगामी।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: सदियों के सत्य की रेखा है, वेदों में सुनाया जाता है, वेदों में सुनाया जाता है। कुवार अचानक हनुमत ने श्री जनक ने

0: आता है।
1: बात आगे बढ़ी तब माँ ने कहा, माँ ने, माँ की बात सुनी, हनुमान जी बोले, हनुमत ने माँ की बात सुनी, भंडार गृह की ओर गए, कोना कोना बेछा लिए इस छोर गए,
0: छोर गए, क्या बात,
1: सिंदूर थाल ले हाथों में, बेरोम रोम में लगा रहे, मस्तक पर मुख पर हाथों में, बेठौर ठौर में
0: सजा रहे, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह,
1: सजा
0: रहे,
1: बेठौर ठौर में सजा रहे, हो गया बदन सब लाल लाल, लालिमा छा गई अंबर में, कौतूहलता से नाच नाच, सियाराम देखते कड़ कड़ में, सियाराम देखते कड़ कड़ में, सिंदूर उड़ाते बार बार, जो होली में उड़ाया जाता है,
0: क्या बात है,
1: मस्तक पर लाल सिंदूर है माँ
0: लगाया जाता है,
1: हो गया लाल तन मन सारा, तब मे माता की ओर गए,
0: क्या बात है,
1: तब मे माता की ओर गए, तब मे माता की ओर चले, उगते

0: समीप माँ ने हनुमत को जब देखा, सोचा मन ही मन ये सब क्या है। हनुमत ने खींची क्या रेखा, माँ ने हंस कर पूछा, बेटा ये कैसा रंग चढ़ाया है।
1: क्या बात है,
0: ये कैसा रंग चढ़ाया है। अपने तन के सब अंगों में काहे
1: सिंदूर लगाया है। क्या बात है, क्या बात है।
0: काहे सिंदूर लगाया है। तुम लाल हुए हो लाल लाल, जो मेहंदी कुरचाया जाता है। मस्तक में लाल सिंदूर है माँ, किस लिए लगाया जाता है। हनुमत बोले, माता सुन लो, ये सुवैभव आयु बढ़ाती हो। सिंदूर एक कण मस्तक पर जब

0: है तो अमर प्रभु हो
1: जाएंगे।
0: क्या बात है, हम दास रहेंगे सदियों तक, चरणों की धूल उठा
1: जाएंगे।
0: माथे पर हाथ रहेगा भी स्नेह आपका
1: पाऊंगा,
0: मैं माता और पिता प्रभु की सेवा का वचन निभाऊंगा। जो प्रभु की सेवा करता है स्नेह लुटाया जाता है, मस्तक पर लाल सिंदूर है माँ किसलिए लगाया जाता है, मस्तक पर लाल सिंदूर है माँ किसलिए लगाया जाता है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने अभी भाई संजू सूर्याम ठाकुर द्वारा हनुमान जी के ऊपर ये गीत अपना प्रस्तुत किया। और अब हम द्वितीय कड़ी में चलते हैं और हमारे बीच में श्रीमती शिखा सेवा सक्सेना के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं कि वो अपना काव्य पाठ करें।
2: धन्यवाद। मेरा जो काव्य पाठ है उसके पहले दो पंक्तियां, साहित्य मेरा विषय है और दो पंक्तियां इस कविता पर, कविता का जो सृजन है अंतरात्मा से कहां से आता है। कल्पनाएं विचरण करती, कल्पनाएं विचरण करती, मन चेतन होकर भर आता।
1: बहुत सुंदर।
2: कल्पनाएं विचरण करती, मन चेतन हो भर आता है, कलम हृदय का मिलन हुआ, चिंतन कविता बन जाता है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: और इसके बाद जो मेरा साहित्य है, साहित्य पर मैंने जो लिखा है, साहित्य नहीं केवल वर्णन, साहित्य नहीं केवल वर्णन, यह भाव भरा संसार।
1: हाँ।
2: साहित्य नहीं

0: केवल वर्णन, यह भाव भरा संसार है, यह तो अंतस का दर्पण है और विश्लेषण का सार है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: मनोकल्प उड़ते नभ में, मनोकल्प उड़ते नभ में जब सत्य धरातल रहता है, मनोकल्प उड़ते नभ में जब सत्य धरातल रहता है, यह मानव मन की कोमलता का नेह भरा उपहार है। साहित्य नहीं केवल वर्णन, यह भावों का विस्तार है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: यह कबीर दास की वह वाणी, यह कबीर दास की वह वाणी जो सत्य सुधा सम बह जाए, यह कबीर दास की वह वाणी जो सत्य सुधा सम बह जाए, यह मुक्ति बोध की वह रचना जो मूक वेदना कह जाए।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: यह अंधियारे पथ में बीजक सा, यह अंधियारे पथ में बीजक सा ज्ञान मार्ग का द्वार है। साहित्य नहीं केवल वर्णन, यह भावों का विस्तार है। कलम जहाँ निष्पक्ष रहे, कलम जहाँ निष्पक्ष रहे, अन्याय स्वयं झुक जाता है। कलम जहाँ निष्पक्ष रहे, अन्याय स्वयं झुक जाता है। साहित्य वही जो मानव को मानव होना सिखलाता है। साहित्य वही जो मानव को मानव होना सिखलाता है। यह जयशंकर की करुणा है, यह जयशंकर की करुणा है, यही हिंदी का श्रृंगार है। साहित्य नहीं केवल वर्णन, यह भावों का विस्तार। जो शब्द शब्द से हृदय छुए, जो शब्द शब्द से हृदय छुए, उस युग का सच्चा दर्पण है। जो शब्द शब्द से हृदय छुए, उस युग का सच्चा दर्पण है। यह तम का अंत कराता है, यह संस्कृति का अभिनंदन है। यह स्पंदन चेतनता का है, यह स्पंदन चेतनता का है, संवेद भरा उद्गार है। साहित्य नहीं केवल वर्णन, यह भावों का विस्तार है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: साहित्य प्रखर वह ज्योति है, साहित्य प्रखर वह ज्योति है जो कालिदास बनाती, साहित्य प्रखर वह ज्योति है जो कालिदास बनाती है। यह पंत निराला सूरदास या दिनकर भी कहलाती, यह पंत निराला सूरदास या दिनकर भी कहलाती है। यह तुलसी की चौपाई है, यह तुलसी की चौपाई है और मीरा का आधार है। साहित्य नहीं केवल वर्णन, यह भावों का विस्तार
1: है। यह भावों का, बहुत सुंदर।
0: यह अभिव्यक्ति में प्रेमचंद, यह अभिव्यक्ति में प्रेमचंद, यही बाण भट्ट की वाणी, यही अभिव्यक्ति में प्रेमचंद, यही बाण भट्ट की वाणी है। यह सृजन वही कर पाया है जिसकी आंखों में पानी है, यह सृजन वही कर पाया है जिसकी आंखों में पानी है। यह खंड काव्य, यह महाकाव्य, यही खंड काव्य, यही महाकाव्य, यही रश्मि रथी की धार है। साहित्य नहीं केवल वर्णन, यह भावों का विस्तार है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा।
3: कौरव दल का सेना पति बन।

0: अनि भी सामने कुरुपति को समझा करके
1: बहुत सुंदर बहुत बढ़िया
0: जननी जौन जगत में जायो कहूं सपथ को खा करके
1: बहुत अच्छा।
0: सांतनु का सुत नहीं कहाऊं आऊं जो रक्त लजा करके
1: बहुत अच्छा।
0: कि यस मन

0: मार भगाऊं।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: कि बाण कमान पे तान कान तक, बाण कमान पे तान कान तक भीषण सर संधान करूं।
1: बहुत अच्छा।
0: ठनी ठान जो सूर सान की, आन बान का
1: ध्यान करूं।
2: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया।
0: कि जान मान जो ठान ठान ली, जान मान जो ठान ठान ली, उसका अगर न मान करूं, है असार संसार बीच धिक्कार, न क्षत्रिय मौत मरूं।
1: बहुत बढ़िया।
0: कीच उली

0: चंदन सहित पांडु नंदन यदु नंदन मार भगाऊंगा। धनुष धनंजय का प्रचंड कर खंड खंड छिति डारूंगा।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: धनुष धनंजय का प्रचंड कर खंड खंड छिति डारूंगा। काल ब्याल सम सर कराल तक हरि अर्जुन को मारूंगा।
1: क्या बात है।
0: कि बीन बीन कर खंड तीन क्षण क्षत्रिय आज पछारूंगा। नचत भूत बैताल ताल दे लाशों बीच निहारूंगा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: कि प्यासी काली खप्पर खाली लारिपु रक्त पिलाऊंगा।
1: क्या बात।
0: प्यासी
1: है।
0: काली खप्पर खाली लारिपु रक्त पिलाऊंगा। चंदन सहित

0: ఈగా రొండె ముండె అరి గజి బితుండె కట్టె ఝుండె ఝుండె గిరిజా
1: క్యా బాత్ హై క్యా బాత్ హై క్యా బాత్
0: రొండె ముండె అరి గజి బితుండె కట్టె ఝుండె ఝుండె గిరిజాయేగా డోల్ ఉఠేగీ ధరాయ ఆజ్ యహ దిగ్గజ భీ హిల్ జాయేగా భీషమ్ నహీ అకేలా రణ సే బినా విజయ కే ఆయేగా కి చక్రత చక్ర చక్ర ధారీ కే కర్ మే ఆజ్ గహాఊ
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर
0: सहत पांडु नंदन यद नंदन
1: बहुत
0: गाऊंगा।
2: ये वीरों की भूमि छत्रसाल की भूमि पर बहुत सुंदर ओजस्वी कविता सुनी। आइए मैं आगे रविशंकर बिलगैया जी को आवाज देता हूँ।
1: मैं कुछ दिव्यांग लोग होते हैं जो उनकी पीड़ा वहन कर रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, हमने लिखा है कि दिव्यांग और बहरा हूँ मैं, दिव्यांग और मैं बहरा हूँ मैं, किंतु उपेक्षित नहीं समझना, मैं भी ईश्वर की रचना हूँ, मुझे अपाहिज नहीं समझना, मुझको कमतर नहीं आंकना, किस्मत से टकराया हूँ, मुझको कमतर नहीं आंकना, किस्मत से टकराया हूँ, जीवन जीने की चाहत में मौत से लड़कर आया हूँ, के जीवन जीने की चाहत में मौत से लड़कर आया हूँ, पैर नहीं तो बिन बैसाखी हाथों से चल सकता हूँ, पैर नहीं तो बिन बैसाखी हाथों से चल सकता हूँ, और हौसलों की ताकत से मंजिल को तय कर सकता हूँ, और हौसलों की ताकत से मंजिल तय कर सकता हूँ, पैरों से मैं पकड़ तूलिका सुंदर चित्र बना सकता हूँ, और दुनिया की हर एक दौड़ में पुरस्कार को पा सकता हूँ, कि दुनिया की हर एक दौड़ में पुरस्कार को पा सकता हूँ, नेत्रहीन मत समझो मुझको, दिव्यांग कह रहा है कि नेत्रहीन मत समझो मुझको, खुद की राह बना सकता हूँ, मुझे बोझ ना समझे दुनिया सबका बोझ उठा सकता हूँ, मुझे बोझ ना समझे दुनिया सबका बोझ उठा सकता हूँ, आंख बंद करके संतों ने स्वर्ग लोक का विजन किया, अंतर मन के नेत्रों से ही सूर्यदास ने सृजन किया, सूर्य

0: चयन किया। बहरा हूँ पर सुन सकता हूँ दुनिया की हर पीड़ा को, बहरा हूँ पर सुन सकता हूँ प्रतिभा का मोहताज नहीं हूँ, सब जैसा कर सकता हूँ हाथ नहीं तो पैरों से भी किस्मत को लिख सकता हूँ, हाथ नहीं तो पैरों से भी किस्मत को लिख सकता हूँ, संघर्षों की गोद पला हूँ जज्बा मन में रखता हूँ, साथ तुम्हारा मिल जाए तो आसमान छू सकता हूँ, साथ तुम्हारा मिल जाए तो आसमान चकता हूँ। सो दिव्यांग और बहरा हूँ मैं किंतु उपेक्षित नहीं समझना, मैं भी ईश्वर की रचना हूँ मुझे अपाहिज नहीं समझना, मुझे अपाहिज नहीं समझना।
1: बहुत सुंदर।
2: दिव्यांगों के हौसले पर जो कविता सुन रहे थे अभी, अब आप फिर से राम बिहारी सक्सेना जी के पास चलते हैं, आइए उनकी पुस्तक पर रचना सुनते हैं।
1: आज के दौर में हम देख रहे हैं कि व्यक्तियों ने पुस्तकों का अध्ययन स्वाध्याय करना बहुत कम कर दिया है। पुस्तक के महत्व को बताती हुई एक कविता, मानवता की यह दीप सिखा, मानवता की यह दीप सिखा, पुस्तक जीवन की संगिनी है, मानव जीवन को राह दिखा, पुस्तक दिग्दर्शन करती है।
3: बहुत सुंदर।
1: मानवता की यह दीप सिखा, पुस्तक जीवन की संगिनी है, मानव जीवन को राह दिखा, पुस्तक दिग्दर्शन करती है। है आदि अंत से रहित ज्ञान, है आदि अंत से रहित ज्ञान, गुण कर्म प्रवृत्ति बने इससे, मिलता है हमको पुस्तक से हुए कपि मानव मानव जिस, मिलता है हमको पुस्तक से हुए कपि मानव मानव इससे, चिरकाल से शोभित करती है सृष्टा के कर कमलों को यह, चिरकाल से शोभित करती है सृष्टा के कर कमलों को यह, है बाग देवी का आभूषण वीणा से झंकृत इसका स्वर, है बाग देवी का आभूषण वीणा से झंकृत इसका स्वर, हमको नित कर्मों का पालन सिखलाती गीता रामायण, वेदों में कर्म कांड अध्ययन सब विद्याओं का अध्यापन, वेदों में कर्म कांड अध्ययन सब विद्याओं का अध्यापन, है आदिकाल के दिव्य सूत्र, है आदिकाल के दिव्य सूत्र, भक्तों के हित प्रभु का वंदन, जब युद्ध महाभारत सा हो तब दिव्य शक्ति का आवाहन, जब युद्ध महाभारत सा हो तब दिव्य शक्ति का आवाहन, है आज हमारे जीवन का हर अंग और ज्योति पुस्तक, अज्ञान अंध के सागर में सीपी का मोती है पुस्तक, अज्ञान अंध के सागर में सीपी का मोती है पुस्तक, है आदि गुरु एकांत गुरु बिन श्रद्धा के भी ज्ञान मिले, है आदि गुरु एकांत गुरु बिन श्रद्धा के भी ज्ञान मिले, पढ़ो किसी भाव से भी इसको फिर भी इसका सत्संग फले, पढ़ो किसी भाव से भी इसको फिर भी इसका सत्संग फले, है चित्रगुप्त की ये पोथी कर्मों का लेखा है इसमें, है धर्मराज की पथ दर्शक प्राणी की आयु है जिस, है धर्मराज की पथ दर्शक प्राणी की आयु है जिस, पुस्तक ही मानव जीवन के सब लक्ष्य पूर्ण कर देती है, पुस्तक ही मानव जीवन के सब लक्ष्य पूर्ण कर देती है, पथ भ्रष्ट हुए नव युवकों को सन्मार्ग ज्ञान भर देती है, पथ भ्रष्ट हुए नव युवकों को सन्मार्ग ज्ञान भर देती, पुस्तक माँ शारदा की वाणी, पुस्तक माँ शारदा की वाणी जिन कृपा जगत में ज्ञान खिला, हुआ यंत्र मानव से यंत्रपति, हुआ यंत्र मानव से यंत्रपति अपने घर में सब ज्ञान मिला, हुआ यंत्र मानव से यंत्रपति अपने घर में सब ज्ञान मिला, कहे राम हृदय मंथन करके पुस्तक के महत्व को पहचानो, कोई भी यदि नहीं है अपना पुस्तक को तुम अपना जानो, कोई भी यदि नहीं है अपना पुस्तक को तुम अपना जानो, यह ज्ञान ज्योति दिखला करके मग तिमिर मिटा उजला करती, जीवन के अंधेरे हर पल को निज दिव्य तेज से है भरती, जीवन के अंधेरे हर पल को निज दिव्य तेज से है भरती, मानवता की यह दीप सिखा पुस्तक जीवन की संगी

0: नहीं है, मानव जीवन को राह दिखा पुस्तक दिग्दर्शन करती है। मानव जीवन को राह दिखा पुस्तक दिग्दर्शन करती है।
1: और मैं रविशंकर बिलगैया आप सबके बीच में उपस्थित रहा हूं, और मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम समापन की ओर ले जा रहे हैं। सुनिए।

0: वजन नफरत को थोड़ा प्यार दो घट जाएगी जलन, ये अभिमान को उतार दो बढ़ जाएगा वजन, नफरत को थोड़ा प्यार दो घट जाएगी जलन। ये चंदा की चांदनी है सूरज की है किरण, ये चंदा की चांदनी है सूरज की है किरण, छोटी सी तेरी जिंदगी क्यों चाहता गगन,
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: क्यों चाहता गगन, सुख ढूंढता फिरता रहा संचय की थी लगन, भटका की ये संसार में केवल मिली थकन, केवल मिली थकन, सो ईश्वर की हर तलाश में निष्फल हुए भजन।
2: आज की गोष्ठी का ही पे समापन होता है, बहुत सुंदर रचनाएं आप सभी ने सुनी। हमारे बीच में शिवा सक्सेना जी, रूप नारायण पाठक जी, रवि शंकर बिलगैया जी, राम बिहारी सक्सेना जी और मैं स्वयं डॉक्टर कुमार सूर्यम आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रसार भारती का आभार।
3: अभी आप सुन रहे थे रसावतरण कार्यक्रम, इसमें आपने सुनी कवि गोष्ठी। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है समाचार संध्या। कुछ ही समय में हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है।

0: नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को

इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में

0: समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला

केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: श्रोता, हम आपको याद करा दें, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे बुंदेली नाटक तुम्हारी ज्ञानवती। रात 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें हम आपको सुनवाएंगे पंडित निखिल बनर्जी से सितार पर बजाया राग हेम बिहाग। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रसावतरण कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुना रहे हैं कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं उपेंद्र सोनी, दीपक पटेल, रामबाई अहिरवार और डॉक्टर सुधा गगन कनौजी। तो आइए सुनते हैं ये कवि गोष्ठी।
1: आज हम सब उपस्थित हैं एक काव्य गोष्ठी के लिए। मैं हूं डॉक्टर सुधा कनौजी और मेरे साथ हैं रामबाई अहिरवाल जी जो शिक्षिका हैं, उपेंद्र सोनी जी कवि और दीपक पटेल जिनका उपनाम दुष्यंत जी है। हम सभी काव्य गोष्ठी के लिए उपस्थित हैं। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम मैं माँ वीणा बादनी के चरणों में कुछ पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ। जय

0: निधि सोडस कलाएं विकासनी, निधि सोडस कलाएं विकासनी, हे त्रिपुर सुंदरी कमलासनी। दो प्रज्ञापुंज पृथ्वी प्रकाशनी, जय मां सरस्वती बर दे बीणा बादनी, जय मां सरस्वती बर दे बीणा बादनी। और इसी के साथ मैं रामबाई जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना पढ़ें।
1: कविता है नारी शक्ति पर, जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर है। मैं समस्त नारी शक्ति का वंदन अभिनंदन करती हूँ, जो कि हमारी भारतीय देश की गौरवशाली सेना भी है और समर्पित है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूँ। समय समय पर नारी ने

0: समय समय पर नारी ने तोड़ा है दुश्मन का गुरूर, इतिहास बयां करूं कैसे, कहता ओपरे संसिंदूर।
1: बहुत बढ़िया।
0: कहता ओपरे संसिंदूर।
1: बहुत बहुत
0: मस्तक के सिंदूर की ताकत, मस्तक के सिंदूर की ताकत, नारी शक्ति बोल रही, नमन करो ये दुनिया वालों, सीमा पर होली खेल रही। नमन करो ये दुनिया वालों, सीमा पर होली खेल रही। चीर रही दुश्मन का सीना, सीने पर गोली झेल रही। इतिहास को लिखने वालों देखो, इतिहास को लिखने वालों देखो, इतिहास की परतें खोल रही।
1: वाह, वाह,
0: जैसे
1: वाह,
0: कि हमारी वीरांगनाएं हैं, हाँ, तो इतिहास की परतें खोल रही। फेंक दिया ममता का आंचल, बासंती रंग घोल रही।
1: और सुंदर
0: आन बान कुर्बान वतन पर, मिट्टी तो अनमोल रही। मिट्टी तो अनमोल रही। धन्यवाद।
1: मिट्टी तो अनमोल रही मिट्टी पर, और मिट्टी की आन बान शान में बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही हैं मैडम ने। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ दीपक पटेल जी को कि वो अपनी रचना पढ़ें। उनकी रचना का शीर्षक है मर्यादा अर्थात राम। राम की मर्यादा का वर्णन करती हुई एक कविता प्रस्तुत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मर्यादा करना हो अगर तो राम जैसी कीजिए,
1: कि
2: मर्यादा करना हो अगर तो राम जैसी कीजिए, पार्थ क्षमा मांगता तो प्राण दान दीजिए।
1: वाह वाह।
2: पार्थ क्षमा मांगता तो प्राण दान दीजिए, प्रेम करना हो अगर तो राधा मीरा जैसा कीजिए।
1: बहुत बढ़िया।
2: प्रेम करना हो अगर तो राधा मीरा जैसा कीजिए, प्रेम अधर मधुर गीत पे अपने पीजिए, पार्थ क्षमा मांगता तो प्राण दान दीजिए। कष्ट कोई नित बध करे, कष्ट कोई नित बध करे तो राम नाम लीजिए, बिनु काम की ये नीतियाँ अब काम अपने लीजिए।
1: बहुत बढ़िया।
2: बिनु काम की ये नीतियाँ काम अपने लीजिए, श्याम धर्म का प्रतीक अब कर्म थाम अपने लीजिए। श्याम धर्म का प्रतीक अब कर्म थाम अपने लीजिए, राम मेरा शौर है तो नाम शौर से ही लीजिए। जब राम मेरा शौर है तो नाम शौर से ही लीजिए, पार्थ क्षमा मांगता तो प्राण दान दीजिए, पार्थ क्षमा मांगता तो प्राण दान दीजिए। हनुमत मेरा प्रतीक अगुणित अतिबल तेज का, जब राम मेरे साथ है तो सेज थाम अपने लीजिए। हनुमत मेरा प्रतीक अगुणित अतिबल तेज का, जब राम मेरे साथ है तो सेज थाम अपने लीजिए। नाम मेरे राम का अब राजनीति में न लीजिए।
1: बहुत बढ़िया, क्या बात।
2: नाम
1: क्या
2: मेरे बात, राम का अब राजनीति में न लीजिए, नीति की है राम ने तो नीति धर्म कीजिए। जब नीति की है राम ने तो नीति धर्म कीजिए, पार्थ क्षमा मांगता तो प्राण दान दीजिए। पुष्प वेल और धरा सब मेरे राम का ही दान है, पुष्प वेल और धरा सब मेरे राम का ही दान है। अधर्म अही का ना चला तो आप जान लीजिए।
1: बहुत बढ़िया।
2: अधर्म अही का ना चला तो आप जान लीजिए, महोदय अधर्म करना हो तो आप गांठ बांध लीजिए। महोदय अधर्म करना हो अगर तो आप गांठ बांध लीजिए, जब राम मेरे साथ है तो सेज थाम अपना लीजिए। मर्यादा करनी हो अगर तो राम जैसी कीजिए, राम जैसी की।
1: बहुत क्या बात है, कितनी शानदार कविता पढ़ी है। राम की मर्यादा, राम की शान में। और अब आगे मैं आमंत्रित करती हूँ उपेंद्र सोनी जी को कि वो अपनी कविता पढ़ें। उनका शीर्षक है अर्धांगिनी, जिसमें शिव पार्वती का संवाद है। तो आपका स्वागत है, आइए।
3: मेरी कविता है शिव और पार्वती के संवाद पर, इसका शीर्षक है अर्धांगी। मैं शमशानों का राही हूँ, तुम महलों की शहजादी हो, मैं काल रात्रि का सन्नाटा, तुम सुबह की आजादी हो। मेरे हिस्से की माटी में बस चिता भस्म की गूंज प्रिय, मेरे हिस्से की माटी में बस चिता भस्म की गूंज प्रिय, तुम कंचन स्वर्ण की मूरत हो, मैं राख भरा एक पुंज प्रिय। इन पथरीली चट्टानों पर तुम कैसे पग टिकाओगी, मुझ जोगी के सन्नाटों में तुम कैसे गीत सुनाओगी। ये सर्प गले के गहने हैं ये कालकूट मेरा प्याला, ये सर्प गले के गहने हैं ये कालकूट मेरा प्यारा। मैं हूँ अंघोरी, मैं हूँ अघोरी, मैं हूँ धुआं, तुम हो पावन ज्योति ज्वाला।
4: बिल्कुल यथार्थ।
3: ये जटा चूटी ये मृक्षाल मेरा तो बस यही जीवन है, पर तुम्हें चाहिए कोमल सा जो रेशम सा उपवन है। अरे लौट जाओ अपने आंगन, अरे लौट जाओ अपने आंगन, यहाँ बस बर्फीली सी रातें हैं, मेरे संग तो बस तन्हाई और सुनने की ही बातें हैं। तब गौरी ने थाम लिया, तब गौरी ने थाम लिया शिव का हाथ बैरागी सा, बोली मेरा तो जग तुम हो, क्या काम मुझे इस दुनिया का। यदि भस्म तुम्हारा चंदन है तो मैं भी अंग लगाऊंगी, अगर जहर तुम्हारी कंठ में है तो मैं भी श्यामल हो जाऊंगी। तुम्हें अगोर जो कहता जग, वो मेरा तो श्रृंगार प्रभु, इस शून्य में ही छिपा हुआ, मेरा सारा संसार प्रभु।
1: बहुत बढ़िया, बहुत
3: कांटे भी सब फूल बनेंगे जो साथ तुम्हारा मिल जाए, सब पत्थर गंगा बोलेंगे जो साथ तुम्हारा मिल जाए।

0: आए और महल वही मेरा,
1: बहुत सुंदर,
0: और महल वही मेरा जहाँ जहाँ साथ तुम्हारा मिल जाए। फिर पासार सा जोगी वो सनह मोम सा पिघल गया, फिर पासार सा जोगी वो सनह मोम सा पिघल गया, कई युगों का सूनापन प्रिय प्रेम की रंग में रंग गया।
1: क्या बात।
0: शिव ने गौरा को स्वीकार किया, अपने हृदय से लगा लिया, सृष्टि के उस वैराग्य ने श्रृंगार को अपना लिया। शिव पूर्ण हुए इस मिट्टी में, शिव पूर्ण हुए इस मिट्टी में, जब गौरा का विश्वास मिला, एक वैरागी तारक को जब उनका ही आधा अंश मिला, उनका ही आधा अंश मिला। धन्यवाद।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: अब मैं दमोह की प्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर सुधा कनौज जी की आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी मधुर वाणी में अपनी कविता का वाचन करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कविता है, मौसम चल रहा है जैसा,
1: घना ने

0: बसते बलम तुम कै परिदेश, धड़की धड़की कै जिया जो मोर, धड़की धड़की कै जिया जो मोर, कितने से आए बदरवा। और ये थी मेरी बुंदेली में रचना, और अब मैं दूसरे राउंड में पुनः आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रामबाई जी को कि वो अपनी दूसरी रचना सुनाएं।
1: धन्यवाद मैडम। मेरी दूसरी कविता है कि जो कि वर्तमान में जेठ मास और अधिमास है, उसमें क्या परेशानी है, प्रस्तुत करती हूँ कविता के माध्यम से। दिन में लगी है आग, रात में रहे हैं जाग, हाय अब जेठ मास तपन बढ़ा रहा। दिन में लगी है आग, रात में रहे हैं जाग, हाय अब जेठ मास तपन बढ़ा रहा। धरती रही जुलस तन में रह बड़ी उबस, धरती रही जुलस तन में बड़ी उबस, सूरज भी क्रोध से आग लगा रहा। दिन में लगी है आग, रात में रहे हैं जग, हाय अब जेठ मास तपन बढ़ा रहा। सूखते हैं वृक्ष पात, पक्षियों पे पड़ी घात, ताप का है वृक्ष पात सभी को सता रहा। कैसा है ये जेठ मास, कहीं अंधे का है वास, कहीं कर हिमपात कहर ढहा रहा। दिन में लगी है आग, रात में रहे हैं जग, हाय अब जेठ मास तपन बढ़ा रहा। सूखने लगे है ताल, गर्मी बनी है काल, बिगड़ा सभी का हाल, धरती फटा रहा। बदला हुआ मिजाज, गिरती कहीं पे गाज, हो रहा है कहीं विनाश सबक सिखा रहा। हो रहा है कहीं विनाश सबक सिखा रहा।
0: जो आदमी आज कर रहा है वो अपने खुद ही विनाश की रचना रच रहा है, उसी पर एक कविता थी कि क्यों गर्मी बढ़ रही है, क्यों ताप बढ़ रहा है। तो और अब आगे मैं आमंत्रित करती हूँ दीपक पटेल जी को कि वो अपनी दूसरी रचना का वाचन करें। स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम। हमारी दूसरी रचना है राधिका स्वामिनी। हरि का ही रूप लिए हरि से ही हारी गई राधिका स्वामिनी।
0: बहुत बढ़िया।
2: हरि का ही रूप लिए हरि से ही हारी गई राधिका स्वामिनी, प्रेम लिए माधव का नाम रटत चली गई स्वामिनी। प्रेम लिए माधव का नाम रटत चली गई स्वामिनी, लोचन मीचत मीचत का न केशव को पुकारा था, पलक न पलट पाई माधव ने निहारा था। लोचन मीचत मीचत का न केशव ने पुकारा था, पलक न पलट पाई माधव ने निहारा था। नाम कृष्ण का लिए रस पीत रही स्वामिनी।
0: बहुत बढ़िया।
2: नाम कृष्ण का लिए रस पीत रही स्वामिनी, प्रेम कृष्ण का लिए ऐसे जीत रही स्वामिनी।
0: बहुत बढ़िया।
2: ऐसे जीत रही स्वामिनी की लाजी सब भूली गई, ऐसे जीत रही।

0: नहीं कि लाजी सब भूली गई, हंसत हंसत लिए नाम मोरे माधव का।
1: बहुत
0: हंसत हंसत लिए नाम मोरे माधव का, रूप लिए हरि का वो हरि मेरी हारी गई। रूप लिए हरि का वो हरि मेरी हारी गई। जब प्रेम हुआ माधव से तो काना काना ही पुकारती, जब प्रेम हुआ माधव से तो काना काना ही पुकारती। टूटत टूटत बनी रही राधिका स्वामिनी की, टूटत टूटत बनी रही राधिका स्वामिनी। प्रेम हुआ माधव को जब ब्रज की दुलारी से,
1: बहुत बढ़िया ब्रज की दुलारी।
0: प्रेम हुआ माधव को जब ब्रज की दुलारी से, माधव मोरे मोहित भये राधिका प्यारी से। माधव मोरे मोहित भये राधिका प्यारी से। जब बात बनी प्रेम की तो दोनों ने निभाया, जब बात बनी प्रेम की तो दोनों ने निभाया था। हंसत हंसत राधा माधव ने रूपी प्रेम रस को बनाया था। हंसत हंसत राधा माधव ने रूपी प्रेम रस को बनाया था। एक दिना मिटी सकल लिए, एक दिना मिटी सकल लिए। माधव राधा को पुकारते, बिनु लोचन लौटाए राधा को निहारते। राधा को निहारते की हरकत हरकत न रही गयी राधिका स्वामिनी। काहे ताकत हो ऐसे कही गई स्वामिनी, काहे ताकत हो ऐसे कही गई स्वामिनी। अखियां धोबत धोबत मेरो कान्हा रोबत रोबत, अखियां धोबत धोबत मेरो कान्हा रोबत रोबत। कहे हम जावत हैं स्वामिनी, हम जावत हैं स्वामिनी। नीति लिखी काल की अपालत हैं हरि स्वामिनी। कृष्ण प्रेम वियोग पर नहीं सोत रही स्वामिनी। कृष्ण मोरे चली गए चाहे रोत रही स्वामिनी। कृष्ण मोरे चली गए चाहे रोत रही स्वामिनी। चाहे रोत रही स्वामिनी की नाते सब तोड़ी, चाहे रोत रही स्वामिनी की नाती सब तोड़ी दे। चाहे रोत रही स्वामिनी, हरि का ही रूप लिए हरि से ही हरि गई राधिका स्वामिनी।
1: राधिका स्वामिनी, राधिका स्वामिनी, बोलिए राधे राधे
0: राधे राधे।
1: और आगे मैं आमंत्रित करती हूँ उपेंद्र जी को कि वो अपनी रचना पढ़ें। और उनकी रचना का शीर्षक है आराध्या। राधा जी के सौंदर्य का वर्णन करती हुई रचना प्रस्तुत है।
2: धन्यवाद मैम। मेरी दूसरी रचना राधा जी उनके सौंदर्य के ऊपर है। प्रस्तुत है मेरी रचना आराधना। नील गगन की ओट छिपाकर जो छिटकी वह चांदनी है। नील गगन की ओट छुपाकर जो छिटकी वह चांदनी है। या मलयज की मंद लहर पर तृती कोई रागनी है। उषा की उस पहली किरण सा मुख पर छाया जो उजियारा। नैनों में जैसे बंद हुआ सजल सिंधु का ध्रुव तारा।
1: अलौकिक सौंदर्य का वर्णन।
2: मृदु अधर वे रक्त कमल से स्मित में मधु का सार भरा। केस पास में उलझ गया जैसे अंबर का ध्रुव तारा। अलकों की वे सघन घटाएं माथे पर कुमकुम की रेख। ठगा सा रह जाता जग सारा अमित रूप का वैभव देख।
1: क्या वैभव पाया
3: बढ़िया, बहुत सुंदर।
2: कंचन कंसा तन दमक रहा सुरभित चंदन की सुगंध सी। तुम मानस की वह लहर प्रिय जो उठती है उर्मिल सी। हृदय कुंज के सूनेपन में तुम बसंत का गान बनी।
3: बढ़िया।
2: सौंदर्य सिंधु की लहरों में तुम ही तो मुस्कान बनी। सौंदर्य सिंधु की लहरों में तुम ही तो मुस्कान बनी। मृदुलज्जा के उन पट में छिप
1: अति सुंदर
2: सुघर रूप मुस्काता है। जैसे कली के भीतर ही कोई मकरंद समाता है।
1: वाह मकरंद समाता।
2: तुम मौन समर्पण की भाषा। तुम ही प्राणों का सार प्रिय इस जीवन के मरुस्थल में। शीतल करुणा की धार प्रिय। धन्यवाद।
3: अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुधा कनौजी जी को अपनी कविता प्रस्तुत करें।
1: धन्यवाद। और इसका शीर्षक है अच्छी नहीं लगती। धुआं उगलती फैक्ट्रियां, बढ़ती गंदी बस्तियां, बढ़ते गगन चुंबी भवन, घटते बाग बगीचे बन, मंदिरों के सामने भिखारी, ओवरलोड ऑटो में सवारी, सड़कों पर होती दुर्घटनाएं, मनुष्य में खत्म होती संवेदनाएं, बाढ़ भूकंप प्राकृतिक आपदाएं, रिश्तों की खत्म होती मर्यादाएं, रेलों में बढ़ती अत्यधिक भीड़, कटते वृक्ष, उजड़ते पंछियों के नीड़, नदियों में बहती गंदगी, बेटियों के संग बढ़ती दरिंदगी, बढ़ते युद्ध की विभीषिका, खड़ा है प्रश्न भी आजीविका, दे रहे हैं संदेश जो विश्व क्रांति का, वो बांटते नोवेल कैसे शांति का। दे रहे हैं संदेश जो विश्व क्रांति का, वो बांटते नोवेल कैसे शांति का। खड़े विकास में बन व्यवधान, ये सारे समस्याएं हैं। खड़े विकास में बन व्यवधान, आओ मिलकर करें निदान।

बड़े विकास पथ हिंदुस्तान, बड़े विकास पथ हिंदुस्तान। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार और आमंत्रित करती हूं आदरणीय रामबाई जी को कि वो अपनी रचना

0: हार हो।
1: बहुत ही सुंदर सावन का गीत प्रस्तुत किया है और आगे मैं आमंत्रित करती हूँ छोटी सी रचना पुनः दीपक पटेल जी पढ़ें।
2: मेरी एक छोटी सी रचना है हुंकार, जो कि युवाओं के लिए आवाज है। रामकृष्ण और परशुराम सब इस माटी में ही जन्मे हैं। रामकृष्ण और परशुराम सब इस माटी में ही जन्मे हैं। राणा तात्या और शिवाजी ऐसे देश प्रेम के मोती भारत में ही पनपे हैं।
1: भारत
2: में ही पनपे हैं। युवा तुम भारत माँ के बेटे हो, तुम भी तो अपनी हुंकार भरो। युवा तुम भारत माँ के बेटे हो, तुम भी तो अपनी हुंकार भरो। अपनी माँ पर आंख उठाने वालों का तुम सदैव संहार करो। जब सूरज शाम को ढलता है तब कई काले चेहरे गोरे होते हैं।
1: बहुत ही बढ़िया।
2: जब सूरज शाम को ढलता है तब कई काले चेहरे गोरे होते हैं। अधरों पर तो राम है होता पर अंदर अंदर सोते हैं। अपने अंदर सोते इस क्षत्रिय को उजियार करो। अपने अंदर सोते इस क्षत्रिय को उजियार करो। तुम भी तो भारत माँ के बेटे हो, तुम भी तो अपनी हुंकार भरो। तुम भी तो भारत माँ के बेटे हो, तुम भी तो अपनी हुंकार भरो। हुंकार हरो वो व्यस्त भरी
1: सीखो कुछ।
2: हुंकार हरो वो व्यश्न भरी, हुंकार करो नवचेतन की। तुम भारत माँ के बेटे हो, तुम सांस भरो नवचेतन की। तुम भारत माँ के बेटे हो, तुम सांस भरो नवचेतन की। जरा देखो उस सीमा पर जाने कितने परिवार बिछड़ कर रोते हैं।
1: बहुत बढ़िया।
2: जरा देखो उस सीमा पर कितने परिवार बिछड़ कर रोते हैं। कितने परिवार बिछड़ कर रोते हैं। जब सूरज कुल का ढलता है,
1: बहुत

0: नहीं, परिवार बिछुड़कर रोते हैं जब सूरज कुल का ढलता है। तुम तो सीमा के भीतर हो फिर क्या रक्त तुम्हारा नहीं उबलता है। तुम तो सीमा के भीतर हो फिर क्या रक्त तुम्हारा नहीं उबलता है। तुम गति भरो अपनी धमनी में, स्पंदन का इतवार न हो। गति भरो अपनी धमनी में, स्पंदन का इतवार न हो। कई गोली चाकू खाली अपने वीरों ने, तुम शपथ भरो उस भारत की। ऐसा फिर एक बार न हो, ऐसा फिर एक बार न हो।
1: बहुत ही शानदार रचना, क्या लिखते हैं, आपकी कलम में जादू है। और आगे मैं आप आमंत्रित करती हूँ।

0: ऐसा फिर एक बार ना हो, ऐसा फिर एक बार ना
1: हो। बहुत ही शानदार रचना, क्या लिखते हैं, आपकी कलम में जादू है। और आगे मैं आप आमंत्रित करती हूँ उपेंद्र जी को, वो अपनी रचना पढ़ें।
2: धन्यवाद मैम। मेरी अगली रचना एक वियोग के है, फिर और फिर मिलने का वादा। कविता का शीर्षक
1: है, स्वागत
2: शीर्षक है, मैं फिर मिलूंगा, मैं फिर मिलूंगा, किसी अनजान मोड़ पर अजनबी की तरह अनजान बनकर। मैं फिर मिलूंगा किसी मोड़ पर अजनबी की तरह अनजान बनकर, या शायद तुम्हारी कल्पना की उड़ान बन, देखूंगा तुम्हें तुम्हारी कविताओं के शब्दों में मिलकर।
0: क्या कहने,
1: बहुत बढ़िया कविताओं के शब्दों।
2: मिलूंगा तुमसे तुम्हारी किसी तस्वीर में बेसुमार जज्बातों की रंग बनकर। मैं फिर मिलूंगा किसी अनजान मोड़ पर अजनबी की तरह अनजान बनकर।
0: क्या बात बढ़िया।
2: सुबह सवेरे तेरे चेहरे पर आती सूरज की किरणों पर सवार हो, आ तुम्हें जगाऊंगा, बनकर ठंडी हवा का झोंका सीने से लग जाऊंगा।
0: क्या बात है।
2: और जो मन हो तो रोक लेना, मैं उस पल में ठहर जाऊंगा। मैं फिर मिलूंगा इस अनजान मोड़ पर अजनबी की तरह अनजान बनकर।
0: क्या बात,
1: शानदार शानदार शानदार,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: डॉक्टर सुधा कनौजी जी, अपनी कविता प्रस्तुत करें।
1: मेरी कविता का शीर्षक है नई दुनिया। देख दुनिया नई, डर गया आदमी, भीड़ बढ़ती गई, मर गया आदमी।

करुणा क्षमा मार डाली दया प्रेम करुणा क्षमा साथ में आसमां पर गया आदमी साथ में आसमां पर गया आदमी। और सुनिए क्या हुआ, गांव मिटते गए बढ़ गए जब नगर, गांव मिटते गए बढ़ गए जब नगर, क्रोध लालच कपट भर गया आदमी, क्रोध लालच कपट भर गया।

0: मंदिरों से मुकुट हर गया आदमी, मंदिरों के मुकुट हर गया आदमी। तो यहीं पर मैं कविता अपनी खत्म करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रामबाई जी को कि वो अपनी एक और रचना पढ़ें।
1: धन्यवाद मैडम, मेरी रचना भक्ति पर है।

0: आशा है कि हम अगली काव्य गोष्ठी में पुनः मिलेंगे। तो आज की हमारी इस गोष्ठी में मैं डॉक्टर सुधा कनौजे और मेरे साथ उपस्थित हैं रामबाई अहरवाल जी, कवियत्री जो एक शिक्षिका भी हैं, और मेरे साथ हैं उपेंद्र सोनी जी जो एक कवि हैं, और दीपक पटेल जी जो कवि हैं। सभी ने अपनी शानदार रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रसावतरण कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुनी कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे उपेंद्र सोनी, दीपक पटेल, रामबाई अहिरवार और डॉक्टर सुधा गगन कनौजे। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं बुंदेली नाटक तुम्हारी ज्ञानवती।

0: क्या बात, क्या बात,
1: धन्यवाद मैडम। और अब मैं आज की काव्य गोष्ठी यहीं पर खत्म करती हूँ, और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और ये हमें अपेक्षा है।

0: ज्ञानवती, जो घूंघटा काय खंडा रहे हो, अभी का उघारो तो। अरे अपन ने अगन देव के सामने 7 जन्म तक संगे रहबे को कौला करो, ऐसे लजे हो तो काम कैसे चले। शरम तो उसे करी जात जीखा कब हूं देखो सुनो ना हो। हम तो तुम्हारे गांव में रोजे आउ जात रहे, कितनी बेर नहीं तुमसे मिले, कितनी बेर नहीं तुम्हें देखो, अब तुमने हमें देखो। भगवान ने हमारी तुम्हारी जोड़ी एक दूसरे के लाने या बनाई हती, सुहामा तुम्हारो ब्याह हो गो। ए ज्ञानवती, अब तुम्हारी कछु बोलो। अच्छा काए, जो तो बताओ। पार साल तुम्हें ख्याल है जब हम अपने दोस्त लखन के ब्याह में तुम्हारे गांव बारात में गए थे, जब राम सिंह कक्का जू के द्वारे आगोनी घली थी और घोड़ा बिचक गयो तो कैसी भगदड़ मची थी।
1: अरे याद है।
0: अरे अरे याद आई हमें, हमारी ओर देख के बोलो ना। ए ए ए हाँ ऐसे देखो, अपने घर में हमें तुम्हें छोड़ के तीसरो तो को है नहीं है, चाहे कितौ ल जा, बात तो तुम्हें हम ही से करने पर है। अच्छा जो बताओ, बा लंबे बारन वाली बिटिया को आहती जीने ब्याह में सबसे ज्यादा मोखा हैरान करो तो।
1: लंबे बारन वाली?
0: अरे हाँ हाँ वही जो ने गाना गाओ तो।
1: अच्छा बा बा हमारी फुआ की बिटिया मीना है, बा बहुत अच्छो गाओ, उनके तो गाना रेडियो में निकलत।
0: अच्छा वैसे एक बात बताएं, गाना तो तुम अच्छो गा लेती।
1: हमसे कहां बनत।
0: झूठी ना बोलो, हमने तुम्हारा गाना सुनवा है और आज सोई तुमसे एक गाना सुनने।
1: साजी हमसे नहीं गाओ बनत।
0: नहीं नहीं आज तुम्हें गाने पर है और हमारा ने गाने पर है।
1: भाई ना बेराजे की मोर।

0: अरे तुम तो बहुत अच्छो गा लेती।
1: देखो हमसे तो तुमने गावा लो, अकेले अब तुम्हें सुई गाने।
0: हम, अरे हमसे कहाँ बनत गाना आना, हम तो ठहरे लठ छाप। हाँ दिवारी अवारी जरूर नाच ले, सो अब दिवारी आ है सो हमाओ नाच देख लियो। अच्छा तुम अपनो जरा हाथ तो बताओ। देखो जे कंगन हम तुम्हारे लाने ले आए कुआ ताल मेला से, कैसे लगे तुम्हें?
1: जो तो बहुत ही नोनो हो, हमें तो बहुत अच्छा। हमने सुई तुम्हारे लाने एक रूमाल बना।
0: अरे वाह अरे वाह, इमे तो बहुत बढ़िया कड़ा।

0: आई कड़ी है और कछु लिखो सोई है।
1: हाँ पढ़ो ना। अरे पढ़ो ना, का लिखो ये रूमाल।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, का है कि हम कैसे पढ़ सके।
1: अरे काहे नहीं पढ़ सकल, तुम को नहीं का छापा।
0: नहीं नहीं नहीं, हमाओ मतलब जो है कि बहुत ही नोनो लिखो ही में।
1: जान गए तुम्हें हमाओ नाम लेवे में शर्म लगा। ई में हमाओ नाम ही तो लिखो है तुम्हारी ज्ञानवती, जो रूमाल हमारी निशानियां है, ईखो जतन से अपने पास संभाल के रखियो। अरे देखो तो भुंसारवा होगा, बातचीत में कैसे रात बीत गई पता ही नहीं चलो।

0: अरे वाह, इमी तो बहुत ही बढ़िया कढ़ाई कड़ी है, कछु लिखो सोई है।
1: हाँ, पढ़ो ना।
0: हम
1: पढ़ो ना, का लिखो ही रुमाल में?
0: नहीं, कहे कि हम कैसे पढ़ सके थे?
1: कहे नहीं पढ़ सका, तुम कौन है उठा चापा हो?
0: हाँ, हम तो अंगूठा छाप ही, मैं तो कछु पढ़ लिख भी नहीं सकत, मैं अक्षरन तक का नहीं चीनत, यही से रुमाल में करो तुमाओ नाम नहीं पढ़ सको। लेकिन नहीं, हम ज्ञानवती से साफ साफ बता देवी, वो हमारे लाने का सोच है, बाप कितनी दुखी हुई है जो जान के कि हम निरक्षर हैं। हाँ हाँ, हम उखा ना बता भी, लेकिन कबलो ना बता भी, आखिर एक ना एक दिन जाबात उजागर हुई जे है, तब का हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं ज्ञानवती से आज ही सब साफ साफ बता दे हूं।

0: साहबान मेहरबान कदरदान, आज आप देखिए मेरे बंदर और बंदरिये की करामात। मेरे करामाती बंदर का नाम है राम प्यारे और बंदरिया का नाम है राम प्यारी। हाँ तो राम प्यारे और राम प्यारी, मजमे का एक चक्कर लगा और बूढ़े बच्चे जवान सभी को सलाम कर। ऐसे बाबा हाँ तो राम प्यारे, तुझे बंदरिया कैसी लगी?
1: अरे वाह सुंदर लगी।
0: तो बता राम प्यारी से ब्याह करेगा?
1: देखो साहबान, शादी पर कैसे झटपट तैयार हो गया।
0: हाँ लेकिन राम प्यारे, बंदरिया पढ़ी लिखी होशियार है, पहले वो तेरी परीक्षा लेगी, अगर कहीं पास हो गया तो तुझसे शादी करेगी, वरना तू कुंवारा ही रहेगा। हाँ तो सबसे पहले तू डांस करके बता। अच्छा ये बता, अगर राम प्यारी मायके चली गई तो तू रोटी कैसे पकाएगा? हाँ कैसे पकाएगा? राम प्यारे, बंदरिया बोलती है जब तू परदेश नौकरी पर जाएगा तो बंदरिया को चिट्ठी लिखेगा कि नहीं?
1: क्या क्या कह रहा है?
0: नहीं
1: क्यों?
0: अच्छा तो तू अंगू

0: अंगूठा छाप है। देखा साहबान, राम प्यारे कैसे अंगूठा दिखा रहा है। अब बोल राम प्यारी, तू शादी करेगी कि नहीं? नहीं। देख राम प्यारे, बंदरिया हाई स्कूल पास है, वो तेरे से शादी नहीं करेगी।
1: बंद करो जो खेल तमाशो, कहूँ और जाके दिखाओ।
2: अरे भाई, तुम तो ऐसे नाराज हो रहे जैसे बंदरिया ने तुमसे मना कर दिया हो शादी करने के लिए।
3: चल राम प्यारे, चल सलाम कर सभी को, कहीं दूसरी जगह मजमा लगाते हैं।
4: क्या बात है, हम कछु दिन से देख रहे तुम कछु परेशान से हो, काय हमसे कछु गलती हो गई का?
5: नहीं तो, ऐसी तो कोनो बात नहीं भैया।
4: कछु बात तो है, आज तुम खेल देखा देखा गुस्सा हो गए और तुमने उखो भगा भी दो।
5: ऐसो है कि ऐसी कोनो बात न थी, मगर जब देखो तब एक ही खेल तो दिखाऊ थे, इसे हमने उखा डांट दो।
4: अरे हाँ, आज मायके से दद्दा की चिट्ठी आई।
5: अच्छा, का लिखो चिट्ठिया में? सभी राजी खुशी तो है ना।
4: जा रही चिट्ठी तुम खुद ही बांच लो।
5: अब का है ज्ञानवती के
4: काय चुप काय हो गए?
5: का है के हम मूड बहुत जोर से पेरा रहो, हम तना आराम करन चाहत, जो लो तुम्हारी बांच लो और तुम्हारी बांच के हमें सुना दो।
4: ले आओ, हम ही बांच दे। लिखो है कि बिटिया ज्ञानवती सदा सुखी रहो, भगवान की कृपा से यहाँ सब राजी खुशी हैं, आशा है कि तुम लोग भी राजी खुशी से होंगे। आगे समाचार यह है कि तुम्हारी माता जी की तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही है।
5: अरे,
4: इसलिए कुछ दिन का समय निकाल कर मायके आ जाओ तो तुम्हारी माता जी की देखभाल ठीक से हो जाएगी। मैं 2-4 दिन में लेने आ रहा हूँ, जमाई बाबू को मेरा चरण छूकर प्रणाम पहुंचे। तुम्हारे दद्दा जगत नारायण। काय तुमाओ का विचार है?
5: काय के लाने?
4: घर जावे के लाने।
5: इमे का विचार करने? अरे माता जी की तबीयत खराब है तो जाने पर है।
4: लेकिन जो है कि कछु ज्यादा दृढ़ के लाने जाने पर है। काय से जब तक मताई को आराम ना लगे तब तक कैसे उद बनत।
5: ठीक है ठीक है, तुम जाओ और हम इतने बने रहे भी।
4: अच्छा, जो तो बताओ कि हम इतने दृढ़ के लाने जा रहे, तुम चिट्ठी पाती लिखत रहो कि नहीं?
5: अरे अगर अगर अगर हम बंदरा घाई जो के जो जो कह दिए कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो
4: हाँ, सो हम बनरिया गाय ससुराल आवे खिलाने मना कर देवी, मायके में बनी रहेगी।
2: तुम्हें बतावे ला का हुई फसल फिर बाद में बता रहे तो और महंगाई बढ़ने है। सेठ जी का भाव है?
6: 8 रुपये
2: किलो। चल अरे अभी तुम्हारे को नहीं मिल रहे 5 रुपये।
7: झरकुआ हाट में साक्षरता कला मंडली के नाच गाना और नाटक हुए हैं, सो सभी जनों का सूचना दी जात है कि सब जने ज्यादा से ज्यादा गिनती में पधार।

0: गुनिया बाबा, गुनिया बाबा, देखो तो खेत में काम करत करत जो एकदम बरर गाओ और कचा पे निकाल दे मोरे लड़का का बचा लो बाबा जी। मुझे तो लगत है कि इखा जरूर कोनो बारी प्यार ने घेरो है, हम चाहे जैसे भी हो इखा बचा लो बाबा जी।
1: ओछा ओछा ओछा, जय जय कहो हमारे धजला देव की। लियाओ ते छायल में पारो,
0: लियो लियो लियो पार दो।
1: जान गओ, बिल्कुल समझ गओ, पकड़ लो इखा, इखा पकड़ लो, अरे इखा जलजला ने पकड़ लो। काए खेत में काम करते
0: हाँ महाराज
1: करत तो जो करत तो इखा खेत के अंगर जोन पेड़ो लगो है ओ तई जलजला ने पकड़ लो है। जय हो जलजला की, जय हो जलजला देव की। इखा छोड़ो छोड़ो, अरे काय गरीब है हैरान करत है, जाके कौन दुश्मन बेरी खा तंग करो। हो सकत की बकत की गुरु की छूछाई में बुंदा ने बुलाई। ओछा ओछा, जय जय कहो हमारे झलझला देव की। मोड़ा से जाने अनजाने जोन जैसी गलती भाई हो हाँ माफ कर दो जाए और जबाई हो। मैं कछु जानत नहीं हूँ, मैं कछु जानत नहीं हूँ, जो बेरी मानत नहीं है, जो बेरी मानत नहीं है, दूसरे के झारे ठीक हो जाए, मोरे झारे बेखुन रह जाए। अच्छा जय हो जलजला बाबा की। ना छोड़ो ना छोड़ो, बिल्कुल ना छोड़ो, आखिर का चाने बुकरा चाने बुकरा मिल है, कुकरा चाने कुकरा मिल है, नारियल चाने अरे नारियल मिल है। देख संतोषिया
0: हमारा,
1: देख देख देख देख तोखा जो सब लग है काय चढ़ा दे है।
0: हाँ महाराज, चढ़ाए भी चढ़ाए भी की जिंदगी के लाने कछु भी कर भी, हम आप ही की रक्षा करो पापा जी।
1: अच्छा तो अब जा और जो सब ले आ, अच्छा जय बोलो झलझला देव की।
0: हे भगवान, हे राम, अब का करिए कहाँ जाइए, बकरा दे दो नारियल चढ़ा दो, अरे झाड़ा फूकी सब कछु करा लई, अकेले जो मोड़ा ठीक नहीं भाओ, हम का करिए।
2: उल्लू बन रहे हरदम ठग रहे, लेकिन बात

0: अगर संतोषिया पढ़ी लिखी होती तो वह दुनिया के पास न जाकर किसी डॉक्टर के पास जाती और उससे अपने लड़के का इलाज करवाती। आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागिए तभी सवेरा। जो लोग किन्हीं कारणों से अक्षर ज्ञान नहीं कर सके हैं, वो गांव में चलने वाली साक्षरता की कक्षाओं में आए, पढ़ाई लिखाई सीखें, अपनी जिंदगी को और भी खुशहाल बनाएं।
1: अच्छा जो तो बताओ कि हम इतने नल खिलाने जा रहे, तुम चिट्ठी पाती लिखत रहे हो कि नहीं?
2: अगर हम ऊ बंदरा घाई कह देंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो
1: सो हम सोई बंदरिया घाई ससुराल आवे के लाने मना कर दे और माय के मई बनी रहे भी।
0: तभी सवेरा। जो लोग किन्हीं कारणों से अक्षर ज्ञान नहीं कर सके हैं, वो गांव में चलने वाली साक्षरता की कक्षाओं में आए, पढ़ाई लिखाई सीख कर अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाए।
2: जो अच्छा मौका है ज्ञानवती मायके में है, सो तब तक हमें पढ़बो लिखबो सीख लो चाहिए। लेकिन लेकिन व्यवस्था में लोग बाग का कहें, लेकिन हमें लोग बागन से कहा लेने देने, हमें तो जिंदगी ज्ञानवती के संज्ञा बिताने। नहीं नहीं नहीं, चाहे कछु भी होए, हमें तो पढ़ने हैं। काय बाबूजी, आदमी कितने दिन में पढ़बो लिखबो सीख सकत?
0: देखो भैया, अगर तुम रोज एक घंटा भी पढ़ाई लिखाई के लिए समय निकाल लोगे तो 6 महीने में आसानी से सब कुछ सीख सकते हो।
2: कहा बाबूजी, 6 महीना में चिट्ठी पत्री सब लिख ले भी?
0: तुम चिट्ठी पत्री की बात कर रहे हो? अरे 6 महीने में तुम अखबार, रामायण सभी कुछ पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो।
2: लेकिन बाबूजी, ये जो मौड़ा मोड़ी पढ़ भी लिख भी जात ना, ये तो बहुत ही टेम लगा दे।
0: अब बच्चन की और बड़ों की पढ़ाई में फर्क होता है। बच्चों को तो कलम पकड़ने में ही बहुत समय लगता है।
2: हाँ, अच्छा बात तो है,
0: लेकिन सयानों के साथ ऐसा नहीं है।
2: हाँ हाँ, जो तो है बाबूजी, बिल्कुल है।
0: अच्छा देखो, हम अभी तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना सिखाते
2: हैं। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
0: ये बताओ, ये तस्वीर किस चीज की है?
2: जे अरे जे तो मकान है, मकान।
0: बिल्कुल ठीक पहचाना। अच्छा, हमने इसके नीचे अक्षर से लिख दिया मकान, मा का ना मिला के हमने लिख दिया मकान।
2: अच्छा अच्छा,
0: अब देखो ये है माँ।
2: अच्छा, ये माँ,
0: इसके बाद का,
2: का,
0: और अंत में है ना,
2: ना।
0: ठीक है।
2: हाँ हाँ,
0: अब इन तीनों को मिलाकर क्या हो गया?
2: इन तीनों को मिलाकर माँ का ना, माँ का ना, माँ मकान, मकान हो गया बाबूजी।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, अगर बीच में से ये मकान लिखा है ना, इसके बीच में से अगर का हटा दे तो फिर क्या बचेगा?
2: बीच में से का हटा दे, माँ का न, माँ का हटा दे अपन है तो माँ, माँ का, मन, मन, मन बाबूजी, मन, मन बन गो, मन,
0: मन। हाँ, माँ हाँ, ना हाँ, मन,
2: मन, मन।
0: अच्छा, अब ये बताओ हाँ, कि अगर शुरू को माँ हटा दे तो क्या बनेगा?
2: जो पहले लगा जो ना, आपने सबसे पहले बताओ तो मकान को माँ हटा दे, पहले आपने हटाओ तो का, अब का आ जाए तो का और ना, का न, कान, कान बाबूजी,
0: कान।
2: हाँ हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक पढ़ा। अब देखो है बिल्कुल आसान तरीका।
2: सो तो है बाबूजी, अब तो हम बहुत जल्दी पढ़ लिख ले अभी।

मेरे स्वामी सादर चरण स्पर्श मायके में आए हुए छः महीने बीत गए।

0: मैंने आपको को कई पत्र डाले, परंतु एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या कारण है? मुझे आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। यहाँ सब समाचार ठीक है? सर ठीक है, सब समाचार वहाँ सभी राजी खुशी हैं। माता जी अब ठीक हैं। दद्दा हमको भेजने एकादशी तक आएंगे। बाकी सब कुशल मंगल है। तुम्हारी ज्ञानवती। अरे वाह, आहा हा हा हा हा, अरे जो चिट्ठिया तो हमने खुदैया मांझ ली। हमें तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा। अब हम ज्ञानवती से शर्मा भी नहीं, ना तो उसे अब कोनो शर्मा भी की जरूरत आए। अब हम उसे आंखन से आंखें मिला के बात कर भी। तुम्हारी ज्ञानवती।
1: काहे भादों की गई फागुन में लौटी हो? पूरे 6 महीना लगा दे। अच्छा जो तो बताओ कि अम्मा की तबीयत अब कैसी है?
2: ठीक है।
1: अब कछु अपनी बताओ, दिन कैसे कटे?
2: तुम्हें उसे का लेना देने?
1: ऐसो लगत है कि तुम हमसे बहुत ही नाराज हो।
2: नाराज ना हुई तो काय खुशी हुई है? कितने दिन हो गए तुमने हमारी कछु खबर लई, मर गए कि जिंदा है?
1: अरे रे रे, ऐसी अशुभ बातें नहीं करने पड़ती।
2: हमने तुम्हें 6 महीना में कम से कम 6 ठैया चिट्ठी लिखी, फिर तुमने एको को जवाब दो?
1: नहीं, सो तो है, सो तो है। देखो तुम्हारो नाराज हो वो भी बाजेबा है, हमें तुम्हारी चिट्ठियन को जवाब दो चाहिए। तो
2: फिर उत्तर काय नहीं दो?
1: देखो ऐसो है, अब सही बताइए, हमारे तुम्हारे बीच में देखो भगवान साक्षी है।
2: हाँ है।
1: सही बात तो जा है कि हमें तो काधन में लो शर्म लगत।
2: शर्म कैसी? हम आई सुन, सही सही बताओ का बात है।
1: तो सुन लो। तो सुन भी लाने तैयार भी हो जाओ।
2: बिल्कुल तैयार है, बताओ का बात है।
1: तो ज्ञानवती, हम अब तक अनपढ़ हते, अब तुम्हें ही बताओ कि अनपढ़ आदमी खा चिट्ठी पढ़बो और उको उत्तर देबो कैसे आ है?
2: अरे काय खा मस्करी कर?
1: जब मस्करी नहीं, सही बता रहो। अकेले जो भी सही आए कि ई 6 महीना में हमने पढ़बो लिखबो सब सीख लो, और जो जो देखो जो देखो जो आयु को सबूत।
2: अरे जो का है? अच्छा का लिखो ही में। प्रमाणित किया जाता है कि श्री आसाराम तनय श्री बलभद्र प्रसाद निवासी धर्मपुर। ने पढ़ाई लिखाई के जन अभियान में भाग लेकर पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। समिति उन्हें शुभकामनाएं देती है। हस्ताक्षर जिलाधिकारी।
1: अच्छा
2: देखा। तो ई को जो मतलब भाव कि तुम सही में अब तक?
1: हाँ हाँ, सही में अब तक हम निरक्षर रहते।
2: मतलब
1: तुम्हें तुम्हें ध्यान है जब ब्याह के आई थी हमारे घरे, और जो जो जो रूमाल है जो तुमने हमें भेंटा करो तो, और जो पूछो तो कि ई पे का लिखो है, हम ही रूमाल पे कढ़े अक्षरन खा चीने नहीं पाउते। अरे वाह, इमे तो बहुत बढ़िया कढ़ाई कड़ी है। कछु लिखो सोई है?
2: हाँ, पढ़ो ना। पढ़ो ना, का लिखो रूमाल में?
1: नहीं नहीं, कहा है कि हम कैसे पढ़ सके?
2: काहे नहीं पढ़ सकत? काहे तुम कौन उठा छापा?
1: ओई दिना से हमारे दिल में एक बोझ सो रखो रहो, और अब जाके जो बोझ उतर गो। ये रुमाल में तुम्हारे प्रेम के धागे से जे अक्षर आज हमें बहुत ही नोने लग रहे। अब हम इन अक्षरन खा पूरे विश्वास के साथ पढ़ सकैत। ई में लिखो है तुम्हारी ज्ञानवती। तुम्हारी ज्ञानवती, तुम्हारी ज्ञानवती, तुम्हारी ज्ञानवती, तुम्हारी ज्ञानवती।

0: तुम्हारी ज्ञानवती।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे बुंदेली नाटक तुम्हारी ज्ञानवती। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित निखिल बनर्जी से सितार पर बजाया राग हेम बिहाग।

तो अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुना पंडित निखिल बनर्जी से सितार पर बजाया राग हेम बिहाग। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार कुछ ही समय में हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में

0: Jan-Lennard Struff of Germany beat Daniil Medvedev. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा भी यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।